ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शक संवत 1948 के श्रावण माह की छठी तिथि, तदनुसार दिनांक 28 जुलाई 2026, वार मंगलवार, सुबह के 5:57 होने को हैं। हमारे आज के कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी बीकानेर का ये ठुला मारू चैनल है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। बिहार के गृह विभाग ने आश्वासन दिया है कि वे 26 जुलाई को शाम 6 बजे से पहले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकी, आपराधिक शिकायतें और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया तुरंत शुरू करेगा। आधिकारिक बयान के अनुसार समय सीमा से पहले दर्ज मामलों के संबंध में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे से पुनः शुरू होगी। कल नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मॉनसून सत्र के लगातार 6 दिन भी नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी वापस लेने की विपक्ष की मांग के कारण कल संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के बीच कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे।
2: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मीन तो इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है, तो कांग्रेस की हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम अलॉटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोर जोर से कहते हैं कि आप बोलिए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित इक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला है। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए

0: लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को जांच दल में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर शामिल करने का निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह में पहली स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें ये दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताया है और कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। इकाई ने नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की सलाह दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेइचिंग में चीन के उप विदेश मंत्री हुआ चेंगिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी की दृष्टि को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बताया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनुस की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हो गए हैं। पहले एक दिन के लिए निर्धारित ये चुनाव अब आज से 10 अगस्त तक 3 चरणों में होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की शर्मिला धनकर ने महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 5वें दिन के अंत तक भारत के पदकों की संख्या 10 हो गई है जिसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आज का विचार। विषय है उचित और अनुचित और वाचक स्वर होंगे डॉक्टर छगन मोहता के।
2: व्यक्ति मिला वह मेरा पुराना परिचित, मेरे छोटे भाई का साथी और उसी के उम्र का है। बातचीत के चलते सिलसिले में कहने लगा कि बहुत वर्ष पहले आपकी बातें सुनता था, वे अच्छी लगती थी। आप अखबार पढ़कर सुनाते थे। राष्ट्रीय आंदोलन और देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत के साथ चलने वाली संघर्ष की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। गांधी जी की तो बात ही छोड़िए, उनके नेतृत्व में चलने वाले मोतीलाल जी नेहरू, जवाहरलाल जी, महामना मालवीय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, इस तरह के दिग्गज नेताओं के त्याग, कष्ट, प्रतिभा और ओजस्वितापूर्ण व्यक्तित्व तथा चरित्र की गाथाएं सुन सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। आंखें प्रेम और श्रद्धापूर्ण हर्षातिरेक के आंसुओं से गीली हो जाती थी। उन दिनों कोई साधु महात्मा या धार्मिक व्याख्याता, मठाधीश या पंडित धर्म अधर्म पाप पुण्य आदि के विषय में बातें करता तो लगता कि ये लोग बड़े स्वार्थी और पाखंडी है। भारत माता बुलाने की जंजीरों में जकड़ी हुई है और ये लोग पुरानी बातें जिनका वर्तमान में कोई मूल्य नहीं रह गया है सुना सुना कर जनता को गुमराह करते हैं। उस समय में रूढ़ियों की कट्टरता और अंधविश्वासों के क्षेत्र में बुरी तरह से उनकी छीछा लेकर की जाती थी। नतीजा ये हुआ कि मेरे जैसे लोगों के मन में उन सब पुरानी प्रचलित बातों का तो सर्वथा अवमूल्य रह गया। सब प्रकार के ढंग से घृणा उत्पन्न होने लगी और अंधविश्वासों से चित्त मुक्त हो गया। परंतु इस सब का नतीजा यह भी हुआ कि मन में एक गहरी उलझन पैदा हो गई। देश को आज़ादी मिलने के बाद तथाकथित देशभक्तों और समाज सुधारकों की कथनी और करने का अंतर विरोध उभर उभर कर सामने आने लगा। बार बार मन में ये सवाल उठते हैं कि आखिर पाप और पुण्य, अच्छे और बुरे, उचित और अनुचित की कसौटी क्या है। किस आधार पर जांच कर हम ये निर्णय करें कि अमुक व्यवहार उचित है और अमुक अनुचित, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य, क्या वास्तव में इसकी कोई कसौटी है या कोई कसौटी नहीं है। यदि नहीं तो फिर एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को अच्छा बुरा कहने का प्रयोजन ही क्या है। नैतिकता या अनैतिकता की चर्चा बहुत होती है मगर उसका कोई मानदंड तो हो, कसौटी क्या है। उसने कहा, हम आपकी बातें सुनते रहे और वे अच्छी लगती रही है और उस जमाने में

0: तो भी रहे परंतु अब तो ये सब गड्डमगड लगता है। उसकी बात वास्तव में स्तब्ध करने वाली थी, खासतौर से इसलिए कि वह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा नहीं, सीधा साधा आदमी है, साधारण तौर से अपनी घर गृहस्थी चलाता है, सोने चांदी की दुकान करता है और मुझसे पूछता है कि ये जो सोने चांदी के गहने मैं बेचता हूँ उनमें यदि लोग प्रचलित अनुपात से कुछ अधिक मात्रा में तांबा जस्ता आदि का खोट मिला दूंगा तो क्या यह अनुचित होगा? सब लोग ऐसा ही तो करते हैं, मैं भी यदि ऐसा करने लगूं तो रोटी कुछ चिकनी चुपड़ी मिलने लगेगी और रहन सहन का स्तर कुछ ऊंचा हो जाएगा। स्तर की ऊंचाई के आधार पर ही लोगों की नजरों में सम्मानित हो सकता हूं। उसका यह प्रश्न नहीं बल्कि एक चुनौती है जो सही उत्तर मांगती है।
1: अभी आपने सुना आज का विचार, विषय था उचित और अनुचित, वाचक स्वर थे डॉक्टर छगन मोहता के। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर का ठोला मारू चैनल। सुबह के 6:10 होने को हैं। अब आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। भक्ति संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना के साथ।

गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत सुनिए सीमा मिश्रा और साथियों की आवाज में।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आकाशवाणी बीकानेर का ये ठोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे रामचरित मानस कान। आज आप सुनिए बालकांड दोहा संख्या 280 से दोहा संख्या 282 की अंतिम चौपाई तक। गायन किया है श्रीकांत और रविंद्र सेठ ने और संगीतकार हैं सतीश भाटिया।
1: एपिसोड 102

श्रीराम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

आपने सुना रामचरित मानस गान, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। अब आप सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात। 7:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुनेगा कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कहानी, विषय होगा गिरगिट और कहानीकार होंगी पूर्णिमा मित्रा। 8:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा, श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम। वाचक स्वर होंगी श्रीमती मधु शर्मा के। 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। 9:30 पर आप सुन सकेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

सवेरे 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गीत नई फिल्मों से। 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत, और इस समय आप सुनेंगे फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत सुबह 11 बजे। दोपहर 12:10 पर आप सुनेंगे संधि कार्यक्रम, और 12:40 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

दोपहर 1:05 पर महिला श्रोताओं का कार्यक्रम होगा घर आंगन। 2:30 पर आप सुन सकेंगी फिल्म संगीत।

हमारी संध्याकालीन सभा में आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। 6:05 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 7:00 ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्रामीण जगत और 7:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम संसद समीक्षा। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 8:30 पर लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोक संगीत। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ठुला मारू चैनल है। सुबह के 6:44 हुए हैं। अब आप सुनिए अगला कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे लघु वार्ता, विषय है बाजरे की फसल में पौध संरक्षण। वाचक स्वर होंगे श्री सत्यनारायण शर्मा के।
1: किसान भाई राम राम। आज अपन बात करा बाजरे की फसल में पौध संरक्षण। बाजरो जिको है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में खेती की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलों में से एक है। दुनिया भर लाखों लोगों रो मुख्य भोजन जिको है बाजरो है सा। और ये बाजरे में सब तरह का पोषक तत्व जिका अपने मिल जाया करें। किसी भी अन्य फसल की तरह बाजरे की फसल में भी कई तरह के कीट बीमारियां और पर्यावरण जिका पर्यावरणीय उतार चढ़ाव प्रति संवेदनशील बाजरे फसल भी है सा। एक सफल फसल सुनिश्चित करने सारू अपने उचित पौध संरक्षण का उपाय जिका वह लागू करना चाहिए। सगलों में पहला बात करा अपा एकीकृत कीट प्रबंधन। बाजरे फसल में भी कई तरह का कीट जिका है वह लाग्या करे और बिया ने नियंत्रण करने सारू अपने कई तरह का उपाय जिका है वह करना चाहिए। जहाँ फसल चक्र अपनाणो बीरे सागे सागे अपा फसल चक्र सागे सागे अपा समय पर बुआई करनो है या अपा जैविक नियंत्रण विधियां जिकी अपना सका हाँ या मित्र कीटाणु जिको मित्र कीट है या मित्र कीड़ा है बिहारो अपा उपयोग जो है वो कर सका। रोग प्रबंधन। बाजरे की फसल में भी कई तरह की बीमारियां जिकी है बाजरे की फसल ने प्रभावित करे जिकर में डाउन फफूंदी स्मर्ट ब्लास्ट और एरगोट्स जिकी बीमारियां लाग्या करे। ई बीमारियां से निपटन सारू उचित जिको है निवारक उपाय अपने करनो चाहिए जिके में प्रमाणित रोग मुक्त बीजान उपयोग करनो फसल चक्र अपनाणो और चौखी तरह उचित खल उचित क्षेत्र में उचित जल निकासी जिकी है क्षेत्र में अपने सुनिश्चित करनी चाहिए। खेती स्वस्थता जिकी है वह बनाने रखनी है और यदि फफूंद ज़्यादा लाग जाए बीमारियां ज़्यादा लाग जाए तो अपने उचित फफूंद नाशक का उपयोग भी करना चाहिए। जिका भी कीटनाशक है बिहारों प्रयोग जिको अपने विवेकपूर्ण और ज्यां कृषि जिका जानकार अपने दिशा निर्देश है बिहार अनुसार जिको अपने करना चाहिए। बीर बात करा अपा पोषक तत्व प्रबंधन। एक स्वस्थ फसल जिकी है बीमें कीट और बीमारी जिको है वो होया करे बीरे सारू अपाने कही है पर्याप्त पोषक तत्व प्रबंधन जिको है करना चाहिए। पर्याप्त पोषक तत्व प्रबंधन सारू अपा प्राकृतिक जिको है रक्षा तंत्र फसल जिको है वो बना सका। मिट्टी परीक्षण जिको है बगैर सारू करार अपने सही मात्रा में जैविक और अकार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग जिको है वो करना चाहिए। ज्या अपने मिट्टी परीक्षण अनुसार अपने सलाह देवे। जल प्रबंधन जिको है बाजरे की फसल सुरक्षा खातर उचित सिंचाई जिकी व्यवस्था भी जरूरी है सा। बिया तो बाजरे जिकी फसल है बीर महीने अपने कही है कि सिंचाई री और पानी री जिकी है पर्याप्त मात्रा। बाजरे की फसल सुरक्षा सारू और बडवार सारू अपने उचित सिंचाई प्रबंधन भी जरूरी है। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण जल प्रबंधन बाजरे की फसल सुरक्षा सारू उचित सिंचाई प्रबंधन जरूरी है सा। विभिन्न तरह का जिका सिंचाई रा विधियां हैं बियान माध्यमों अपने पर्याप्त सिंचाई देनी चाहिए। घणो पानी देने से जिकी है खरपतवार की बढ़ोतरी हो जाए रोग पनप जाए तो इरे सारू संतुलन बनाणो और जल बराबरी स्थितियों भी बचनो महत्वपूर्ण है। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार पोषक तत्व है धूप और पानी जैसा आवश्यक संसाधन है बिहार उपयोग

0: पकड़ लें और बाजरे की जेकी फसल है बिहारी बटवाल।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम खेती की बातें। कार्यक्रम में आज आपने सुनी बाजरे की फसल में पौध संरक्षण। वाचक स्वर थे श्री सत्यनारायण शर्मा के। आकाशवाणी विकने का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए सुनिए लोक भजन।

0: उक्ताः याचनाः शृणोति स्म। एतन्मध्ये उत्तरप्रदेशस्य विशेष न्यायालयेन कथित राममन्दिर दान चौर्य प्रकरणे सर्वेषाम् अष्टाभियुक्तानां न्यायिकाभिरक्षायाः अवधिः चतुर्दश दिनानि यावत् वर्धितः। भारतीय भारोत्तोलिका ज्ञानेश्वरी यादवः ह्यः ग्लास्गो नगरे आयोजितेषु राष्ट्रमण्डल क्रीडासु महिलानां 53 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी च ज्ञानेश्वरी यादवं रजत पदक प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दितवन्तः। अधुना भारतस्य पदकतालिकायाम् एकं स्वर्णपदकं, त्रीणि रजतपदकानि, एकं कांस्यपदकञ्च एवम् आहत्य 5 पदकानि सन्ति इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 7 बजे हैं और आप सुनेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात।

सुप्रभात। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुप्रभात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, बातचीत रोज होती है और बातचीत करने से मन हल्का होता है और ज्ञान भी बढ़ता है। जीवन में हमेशा कर्म की महानता होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया कर्म की महत्ता का था कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए और कर्म जो स्वच्छ हो, अनुकूल हो, प्रकृति से प्रेरित हो और उसमें अध्यात्म की शक्ति हो। जब व्यक्ति को उच्च शिखर पर पहुंचना होता है तो उसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति हमेशा उच्च और अच्छे कर्म करे और साथ अध्यात्म के जरिए उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर से कृपा प्राप्त करे, तो व्यक्ति जल्द ही उच्च शिखर पर पहुंचकर अपनी महत्वाकांक्षाएं, मनोकामनाएं और जीवन की आधारभूत सुविधाओं को जल्द से जल्द पूरित कर सकता है। सुबह की शुरुआत है, आप सबके साथ ये जरूरी है कि हर व्यक्ति अपना श्रेष्ठ कर्म करे। अगर उसे जो पाना है उसके लिए निरंतर लगातार प्रयासरत रहे और न टूटने तक, जब तक कि उसका अधिकतम न पाले, तब तक उसे कर्म करते रहना चाहिए। जिस दिन उस परमपिता परमात्मा परमेश्वर की कृपा होगी तो वही कर्म आपको उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारु चैनल की प्रस्तुति।
1: श्रोताओं, प्रत्येक दिन कुछ खास लेकर आता है, नई सुबह पुराने रात के अंधकार को चीर कर एक नई किरण के साथ एक नई सुबह की शुरुआत करती है। प्रकृति वास्तव में अनमोल है, जब प्रकृति चाहती है तो वो कुछ भी कर जाती है। हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं, उसने हमें बनाया है, हमने उसे नहीं। लेकिन ज़रूरी है कि हम उस प्रकृति का संरक्षण करें, उस प्रकृति को सहेजें। हमारे पूर्वजों ने हमेशा इस मरुधरा में, हमें कम संसाधनों में भी प्रकृति का

सम्मान करना सिखाया है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को सहेजने के लिए उसे धर्म से जोड़ा। उन्होंने हमें सिखाया कि प्रत्येक जीव निर्जीव जो भी चीज हमें प्रकृति से मिली है उसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि पेड़ों की पूजा करनी चाहिए ताकि वो संरक्षित रहें और उसके कारण हम संरक्षित रहें। चाहे पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, खेजड़ी का वृक्ष हो, जो भी जहां पर भी है, उन्होंने हमें ये बताया कि वास्तव में ये अनमोल है, हमें इसे सहेजना चाहिए। उन्होंने हमें पशु पक्षियों की पूजा करनी सिखाई। आज ये दिवस है तो गाय की पूजा करो, आज ये दिवस है तो गधे की पूजा करो, आज ये दिवस है तो आप उस पशु पक्षी की पूजा करो। वास्तव में वो ये जानते थे कि प्रकृति का क्या महत्व है, लेकिन हम अज्ञानवश उन सब धारणाओं को रूढ़िवादी मानकर धीरे धीरे छोड़ चुके हैं या छोड़ते जा रहे हैं। वास्तव में उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म के जरिए हम प्रकृति को बचा सकते हैं और प्रकृति हमारा जीवन बचाने के लिए जरूरी है। आज हम कहते हैं वृक्ष लगाओ, प्रकृति बचाओ। उन्होंने हमें बताया कि वृक्ष सहेजना ही वास्तव में प्रकृति बचाना है, वन्य जीवों को बचाना ही प्रकृति बचाना है। तो वास्तव में अगर हम अपने जीवन को, इस धरती को और पूरी प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो हमें आधुनिकता के साथ वही पुरानी परंपराओं को जोड़कर चलना होगा, तभी हम इस प्रकृति को उसी रूप में सहेज सकते हैं जैसा वो चाहते थे। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी पुरानी परंपराओं को, जो हमारे पूर्वज हमें सौगात के रूप में देकर गए, उन्हें अपने साथ रखें और नई परंपराओं को उससे जोड़कर कुछ नया कर अपनी प्रकृति को बचाएं और इस पूरी पृथ्वी को, अपने जीवन को सहेज कर रखें। क्योंकि प्रकृति जब तक हमारे साथ है वो सुरक्षित है, तब तक हम सुरक्षित हैं और हमारी सेहत भी उसी से सुरक्षित है। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है तो हम ये संकल्प लेते हैं कि हम हमारी प्रकृति की हमेशा सुरक्षा करेंगे। उसके साथ आज है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो वास्तव में हमारे लीवर को यानी कि यकृत को नुकसान पहुंचाने वाली एक गंभीर बीमारी है और इसे बचने का उपाय है हम हमेशा साफ और उबला हुआ पानी पिए, बाहर के खुले और दूषित खाने से बचें और सबसे जरूरी बात, हमारे बच्चों को समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। उसके अलावा अगर शरीर में लगातार पीलिए का या कमजोरी का लक्षण दिखे तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। हमेशा सजग रहें, स्वस्थ रहें और बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई न लें। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये बेहद रोमांटिक और खूबसूरत गीत, आपकी सुबह की खूबसूरत शुरुआत के लिए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आप सुन रहे हैं ढोला मारू चैनल। श्रोताओं, अब हम बात करते हैं एक ऐसे खतरे की जो सीधे आपके मोबाइल फोन के जरिए आपके बैंक खाते पर वार करता है, आपकी निजी जिंदगी पर वार करता है। जी हां, आज के इस डिजिटल दौर में साइबर सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारा मोबाइल फोन वास्तव में हमेशा हमसे जुड़ा रहता है, सुबह से लेकर रात तक, उठने से लेकर सोने के बाद तक। और साइबर अपराधी कई बार कॉल करके डराते हैं कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आपकी लॉटरी लगी है। इसलिए हमेशा याद रखें कि कोई भी बैंक फोन पर कभी भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं करना चाहता, फिर आपका ओटीपी हो, एटीएम पिन हो या आपका पासवर्ड हो। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा कि व्हाट्सएप पर आने वाले किसी भी अनजान या फ्री गिफ्ट वाले लिंक पर क्लिक न करें। उसके अलावा अगर कभी आपके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। श्रोताओं, जरूरी है कि हम तकनीक का उपयोग सावधानी के साथ करें। बिना जानकारी के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें, बिना जानकारी के कोई भी ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड न करें। उसके अलावा जितना हो सके अपनी निजी जानकारी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साझा ना करें, क्योंकि कई बार हम अपनी नियमित जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा करते हैं, जिससे कई बार कुछ ऐसी जानकारियां कुछ ऐसे लोगों के पास चली जाती हैं जो वास्तव में गलत होते हैं, और वो निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि कहीं से कुछ ऐसा प्राप्त हो जिससे कि आपको हानि की जा सके। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा सतर्क रहें, सजग रहें और बचाव की मुद्रा में हमेशा अपने आप को रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हमेशा ही हम ये चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें और अपना बचाव करते रहें। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। वास्तव में जरूरी है कि हम अपना, अपनी प्रकृति का, अपनी सेहत का और धन का पूर्ण ख्याल रखें, और उसके लिए जरूरी है कि हम रोज अपने आप को अपडेट करें, अपने आसपास जो घट रहा है उसे सहेजें, कोशिश करें कि जितना हो सके उतना याद रखें। कुछ बातें बहुत जरूरी होती हैं जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं और उन छोटी छोटी बातों को याद नहीं रखते। वास्तव में जरूरी है कि हम हर छोटी से छोटी बात को याद रखें। नहीं, आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी छोटी बातें हम कैसे याद रखें। वास्तव में जरूरी है कि हम उसका नियमित अभ्यास करें। हमारे समृद्ध साहित्य ने, ग्रंथों ने हमें ये ताकत दी है कि हम कुछ भी कर पाने के लिए सक्षम हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी स्वयं की ताकत बढ़ाएं, नियमित अभ्यास करें और अपने आप को और समृद्ध करें और सक्षम करें।

हमेशा ये कोशिश करें कि वास्तव में जो घट रहा है वो क्या है, वो क्यों है और वो कैसे है। जब हम हमेशा इन तीन सवालों पर उसके उत्तर जोड़ने प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे तो फिर हम वास्तव में कुछ भी गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बात के लिए ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि जो घट रहा है वो क्यों है, जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो क्यों हो रहा है। अगर हम इन तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो जीवन में कभी भी हम गलत नहीं कर सकते, और जो

प्राप्त करना चाहते हैं वो आप ज़रूर प्राप्त करेंगे। तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आज का नया दिन हमारे जीवन में, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और तरक्की लेकर आएगा। लेकिन ये समय जो मैं रोज कहता हूं कि निरंतर गतिशील है, गतिमान है, किसी के लिए नहीं रुकता, वो आज तक किसी के लिए नहीं रुका है, चाहे वो कोई भी हो। हमें समय के साथ चलना होता है और आज ये घड़ी, ये समय हमें कह रहा है कि आपसे विदा लेनी होगी। आप सुनते रहिए आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल। मनोरंजन का ये शानदार सफर आगे भी जारी रहेगा और आपसे यूं ही बातचीत का दौर हम निरंतर करते रहेंगे। लेकिन आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम सुप्रभात। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की शानदार आवाज से। इस खूबसूरत से गीत को किशोर कुमार ने गाया है फिल्म जमीर में। इस गीत को अपने शब्दों से सजाया है साहिर लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है सपन चक्रवर्ती ने। तो लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें।

जिस तरह शाम का हो गुमा सुबह पे, जिस तरह शाम का हो गुमा जुल्फों में एक चेहरा कुछ जाहिर।

आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में फिल्म तीन देवियों से गीत। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था एस टी बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारो चैनल से फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी की फिल्म यकीन से। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत बद किया है शंकर

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

आपने सुना हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम था आरजू। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म धर्म कर्म से। आवाजें हैं मुकेश की।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 8 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुनेंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: रंगुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉर्ट पुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1, इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
4: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष

0: से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान, सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश

0: सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे, अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माही, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं, जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मॉनसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
2: हम बहुत खुश है हमारे देश के लिए मेडल लाके। हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
0: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रतीक्षित चंद्र घटनाओं में से एक नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात।

0: Skyroot Aerospace founders after Vikram-1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those jailed under various charges. NDA Parliamentary Party to hold its weekly Mangal Milans meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination and the Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in the women's short put event at the Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मिनीवेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 8:30 हो चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सौरभ। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कहानी, विषय है गिरगिट और कहानीकार है पूर्णिमा मित्रा।
2: पर नजर पड़ती सोनाली चौंक गई। घबराई सी वह खिड़की के पार देखने लगी। सिंदूरी सांझ डरावने अंधेरे में बदल चुकी थी। यह देख उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह अनमनी सी सावित्री जी से बोली, अरे इतना अंधेरा हो गया, आपकी कविताएं सुनते हुए शाम कब रात में बदल गई पता ही नहीं चला। अरे भाई, फिर तो तुम बन ली बड़ी साहित्यकार। 20 साल पहले अर्पणा और मैं पंडित जीवनलाल मिश्रा से सितार सीखा करती थी। एक दिन मैंने उसका परिचय चमनलाल चकोर से क्या करा दिया। फिर तो अर्पणा हर वक्त चकोर की चकोरी बनकर हर जगह उनके साथ कार्यक्रमों में नजर आने लगी। सविता जी ने जलन भरे स्वर में कहा, सविता जी माँ घर में अकेली है, उसने दबे स्वर में कहा। तो क्या तुम्हारी माँ दूध पीती बच्ची है जो अंधेरे से डर जाएगी? अरे मेरी तनु भी तुम्हारी उम्र की है, पर उसे तो घर गृहस्थी के झमेले से फुर्सत ही नहीं। तुम तो छड़ी छंटो, तुम्हें किस बात की फिक्र? सविता जी ने अपनी कविताओं की भूरी बदरंग डायरी बंद करते हुए ताना मारा। फिर सोनाली को टीवी का स्विच ऑन करने का इशारा किया, फिर रिमोट कंट्रोलर लेकर बैठ गई। जैसे ही टीवी ऑन हुआ, सविता जी अपना मनचाहा सीरियल देखकर बच्चों जैसी उत्सुकता से टीवी देखने लगी। सोनाली का मन अपनी माँ की मनोस्थिति की कल्पना करके ग्लानि में डूबने लगा। इतने में बैंगनी रंग की कमीज और काली लेगिंग पहने एक पक्के सांवले रंग की थुलथुली पोड़ा वहां आ पहुंची। सोनाली को सवालिया नजरों से देखते हुए सविता जी से ठसके से बोली, लो मेम साहब, ये खीरा और प्याज इन्हें कतर दो। हाँ, आटा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, अब रोटियां कैसे बनाऊं? यह सुनते ही सविता जी की त्योरियां चढ़ गई। वह झुंझलाते हुए बोली, सुबह मणिराम से पिसवा लेती, वो तो खाने में चावल देखकर मेरी जान खा लेंगे, आप ही उनको कह देती। हम दोनों तो आपके यहाँ नौकरी करते हैं, मणिराम की मालकिन आप हैं, मैं तो उनकी चरणों की दासी हूँ। दो टूक जवाब देकर वह महिला वापस जाने को मुड़ी तो सोनाली को सुनाते हुए सविता जी घबराई आवाज में कह उठी, अब रात को रोटी न देकर ये तो सिर आसमान में उठा लेंगे, हे भगवान। सोनाली से बात करते करते इतना टाइम वेस्ट हो गया। वैसे भी स्कूल में मैडमों की निगरानी रखते रखते मेरा सिर चकराने लगता है। सोनम, तू मेरे लिए तो चावल बना दे। सोनम, तुम परथन वाले आटे से रोटियां बना लो। परथन के लिए मैदा या चावल के आटे का इस्तेमाल कर लो, और ये लो 2 नींबू। सोनाली ने अपने हैंडबैग से 2 नींबू सोनम को देने के लिए निकाले। समस्या का समाधान यूं आसानी से होते देख सविता जी की बुझी बुझी आंखें चमक उठी। वे सोनम को उल्हाना देने के अंदाज में बोली, इसे कहते हैं सुगड़ाई। तुम 3 बड़े बड़े बच्चों की माँ होकर भी सोनाली से बुद्धि के मामले में बहुत पीछे हो, वरना अब तक 2 कप चाय ही बना देती। आपने मुझे चाय बनाने को कहा ही कहाँ था? अगर मेरी बुद्धि इन जैसे तेज होती तो मैं लोगों के घर खाना बनाने का काम थोड़ी करती। सोनम ने अपने जालीदार बैंगनी दुपट्टे को झटकते हुए कहा और रसोई घर की तरफ चल दी। सविता सोनाली को लक्ष्य करके बोली, चिंता मत करो, ये तो आती ही होंगे। मणिराम इनकी फैक्ट्री में कार रखने जाएगा तो तुम्हें भी तुम्हारे घर में ड्रॉप कर देगा। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि इनके कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डलवाने हैं, ये तो आते ही मुझ पर चिल्लाने लग जाएंगे। बाप रे, साहित्य नाम की चीज ही ऐसी है, इसमें टाइम का पता ही नहीं लगता, कहकर वे जोर जोर से हांफने लगी। सोनाली मन ही मन सोचने लगी, साहित्य नहीं, आपके दूसरों को पकड़कर कविता सुनाने की बीमारी। पर उनकी हालत पर तरस खाकर बोली, सोनम से कहकर भूषण जी के कपड़े धुलवा लीजिए, आपने ही मुझे आज स्कूल में नौकरी देने की बात करने के लिए बुलाया था, उस विषय में तो आपने अभी तक बात ही नहीं की, मेरे जाने का समय भी हो गया। सविता जी ने सोनाली को टकराने के अंदाज में कहा, इस साल तो स्कूल में नए टीचर को तनख्वाह देने का बजट ही कहाँ है। हाँ, तुम अगर फ्री में स्कूल में पढ़ा

चाहो तो मोस्ट वेलकम। कल सवेरे 7 बजे मेन रोड पर खड़ी रहना, हमारी स्कूल वैन वहां से तुम्हें पिकअप कर लेगी। सोनाली अनमनी सी बाहर जाने के लिए सोफे से उठ खड़ी हुई। इतने में 6 फुट लंबे 70 वर्षीय भूषण जी ने बैठक में प्रवेश किया। उसने उन्हें नमस्ते किया, लेकिन भूषण जी ने उसे नजरअंदाज करते हुए सविता जी के हाथ से रिमोट कंट्रोलर खींचकर अपने हाथ में लेते हुए बोले, इतना ध्यान अपनी स्कूल की व्यवस्था सुधारने में लगाती है तो छात्रों की संख्या यूं नहीं घटती। तू स्कूल में जाती है फिर भी? अरे मेरा फेवरेट सीरियल तो देखने दो, बस एक ही तो देखती हूँ। सविता जी बच्चों की तरह मचल उठी। शुक्र मना, तेरी जैसी अनटेंड औरत को मैंने स्कूल खोलकर प्रिंसिपल के पोस्ट पर लगा दिया, वरना तुझे कोई पूछता तक नहीं। सोफे में बैठते भूषण जी ने सविता जी को ताना मारते हुए कहा। सोनाली ने कनखियों से सविता जी के सांवले चकोर चेहरे की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले गर्व की छाया तैर रही थी, वहां अपमान की कालिका की गहरी छाई झांक रही थी। उनकी छोटी छोटी भूरी आंखों में अपमानित होने की पीड़ा साफ झलक रही थी। सोनाली को एकाएक अपने पिता इंद्रनाथ का सौम्य चेहरा नजर आने लगा। वे सभी स्त्रियों का बेहद सम्मान करते थे। माँ की बड़ी बड़ी गलतियों पर भी उन्होंने माँ को बाहर वालों के सामने तो क्या, बच्चों के सामने भी भला बुरा नहीं कहा। जब तनु स्कूल में पढ़ती थी तब तो सभी के सामने अपने पिता के बड़े कसीदे पढ़ती थी। शायद पैतृक हवेली के बल पर कायम रुतबे को पचा न पाने की क्षमता के कारण भूषण जी का दर्प ऐसे हास्यास्पद प्रदर्शन करता है, ये सोचकर वह मन ही मन मुस्काई। तभी उसके कानों में आवाज आई, अरे मैडम जी जल्दी से कार में बैठो, पहले से इतना लेट हो गए हैं। बाहर से ड्राइवर की आवाज सुनकर वह अपने दिमाग में चल रहे विचारों की आंधी को परे धकेल वहां से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ गई। मेन गेट खोलकर जैसे ही वह चंद कदम चलकर वहां मौजूद कार में बैठी तो उसकी नजर हवेली के परकोटे से बाहर झांकते पेड़ों में पड़ी। उसे वे आकृतियां डरावनी सी लगी। उसने सहमकर अपनी नजर सामने की सीट पर बैठी सोनम पर डाली तो वो बड़े मनमोहक अपने नाखूनों में नेल पॉलिश लगा रही थी। मणिराम जैसी ड्राइविंग सीट पर बैठा, सोनम चूक कर बोले, मिल गई मुक्ति, इसीलिए मैं कहती हूँ जहाँ तुम ड्राइवरी करो वहाँ मुझे खाना बनाने के काम पे मत लगाओ, पर तुम्हें तो मुझे बेगारी कराने में बड़ा मजा आता है। ये औरत तो 4,000 महीने में 10,000 का काम कराने पर तुली रहती है। क्यों मैडम जी, मैंने ठीक कहा ना? सोनम की बात अनसुनी करते हुए मणिराम सोनाली से बोला, क्या ये लोग आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, पहले हम इनके पड़ोस में रहते थे, इनकी बेटी तनु मेरे साथ पढ़ती थी, कहकर सोनाली ने अपना सिर बैक सीट पर टिका दिया। इतने में गाड़ी स्टार्ट होते ही सोनम ने मणिराम के बाई कंधे पे अपनी कोहनी डाल दी और बड़े अंदाज में बोली, ये नेल पॉलिश कैसे लग रही है? पता है आज बुढ़िया मेरे होंठों पर बैंगनी लिपस्टिक देखकर चौंक गई थी और यह ड्रेस देखकर जल भून गई थी। बड़ा ज्ञान बगा रही थी कि नेल पॉलिश और लिपस्टिक से कैंसर हो जाता है। ओफो सोनम, तुम भी छोड़ो फालतू की बातें, आज डिनर में क्या क्या सर्व करोगी? मणिराम की आंखों में शरारत के बादल तैरते हुए सोनम सोड़ सी बाला की तरह इटलाते हुए बोली, गर्मा गर्म फुलके और आलू की सब्जी, वाह मजा आ गया, कहकर मणिराम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। सोनाली ने शर्मा कर आंखें बंद कर ली। उसे अपने माता पिता की नीरस जिंदगी याद आने लगी। दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार होते भी अपने स्वार्थी रिश्तेदारों और परिचितों के हाथ की कठपुतली बने रहे। काश वे दोनों भी इन दोनों की तरह एक दूसरे को समय देते, हंसी मजाक करते, पर उसे हमेशा अपनी माँ का चेहरा खींचा ही लगा। माँ के ममत्व रहित व्यवहार की वजह से वह बचपन से एकांत प्रिय हो गई थी। रही सही कसर बड़े भाई ने पूरी कर दी, क्यों ना उसे सविता जैसी औरतों के यहाँ धक्के खाने पड़ते, ये सोचकर उसका जी मिचलाने लगा। उसने घबराकर अपना सिर खुली सिड़की की तरफ टिका दिया। रास्ते में दुकानों की जगमगाहट से उसके मन की निराशा छटने लगी। जैसी कार अम्बेडकर सर्किल की तरफ पहुंची तो एकाएक उसकी नजर बेदिल फ्री होम्यो क्लिनिक में पड़ी। उसका मन एक घटना की याद करके कसेला उठा। पिछले ही साल की तो बात है, वह पड़ोस में शर्मा जी के आउट हाउस में रहने वाली शारदा का चेकअप कराने वहां गई थी। बीमार शारदा का चेप के दवाइयों की पुड़िया बांधते समय डॉक्टर कमला रानी ने पेशवरा ढंग से अपनी फीस मांगी तो शारदा चौंक गई। कमला रानी ने बड़ी बेफिक्री से कहा, नीचे लिखी लाइन नहीं पड़ी, मैं 5 साल से छोटे बच्चों का निःशुल्क इलाज करती हूँ, ये रुपए तो मैं चैरिटी में देती हूँ। ये सुनकर शारदा रुआसी होटी। सोनाली का दिल पिघल गया। वह अपने पास से 20 रुपए निकालकर बोली, फिलहाल ये रखें, बाकी के रुपए अगले हफ्ते मैं दे जाऊंगी। ठीक है, तुम कहीं जॉब करती हो क्या? इस बार कमला रानी ने सोनाली की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, घर में बैठी मक्खियां मारती हैं, इनसे भले तो हम ही हैं, झाड़ू पोछा करके महीने में 2,000 रुपए कमा लेते हैं। उसके कुछ कहने से पहले शारदा ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मेरे कई पेशेंट स्कूल चलाते हैं, तुम अपना बायोडाटा मुझे दे जाना, मैं उनसे कहकर तुम्हें स्कूल में जॉब दिलवा दूंगी। कमरा लारनी ने मिठास भरे स्वर में उसे सांत्वना दी। फिर शारदा पूरे रास्ते उसे नौकरी मिलने की बधाइयां देती रही। दूसरी बार जैसे ही वह उनकी क्लिनिक में बकायदा रुपए और बायोडाटा देने पहुंची तो वे रोब से बोली, अरे तुम्हारा पासपोर्ट साइज

और फुल लेंथ फोटो कहाँ है? सोनाली ने चौंकते हुए बोली, फुल लेंथ फोटो? हाँ भाई, फुल लेंथ फोटो दिखाकर ही तो मैं तुम्हारी शादी की बात तय कर सकूंगी। पर आपने तो मुझे नौकरी दिलाने की बात कही थी, ऐसे कैसे मैं किसी लड़के से बिना अपने घर वालों की रजामंदी के शादी कर सकती हूँ? सोनाली ने हैरानी से कहा। अरे भाई, मेरी परमानेंट पेशेंट लीला जी का इकलौता बेटा है सोमेश, बेचारी की पत्नी मेंटल निकल गई। साल भर के पोते को संभालते संभालते लीला जी डायबिटिक और हार्ट पेशेंट बन गई। डॉक्टर कमला लानी ने नीला की तरफदारी करते हुए कहा। सोनाली ने उनके बकायदा रुपए मेज पर रखे और पूछा, आपने भी अपनी बेटियों की शादी ऐसे ही घरों

0: शातिर हंसी हंसते बोली, वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कल आपके बताए सोमेश ने भी मुझे अपना बच्चा पलवा कर मेंटल करार कर दिया, तो आपको ध्यान है एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह करना गैर कानूनी है, कानून की अवहेलना कानूनी जुर्म है, कहते वो तेजी से बाहर निकल गई। पर उस वक्त कमला रानी के चेहरे पे जो भाव उतरे थे उन्हें याद करके उसकी हंसी छूट गई। आज भी इस घटना को याद करके वो खिलखिलाने लगती है। सोनम ने उसे हंसते हुए देखा तो बोली, किसकी याद आ रही है मैडम जी, हमारी बात का बुरा मत मानना। थोड़ी देर बाद गोगा गेट के चौराहे पर गाड़ी खड़ी करते हुए सोनाली चौंक गई। अरे मनीराम जी, आप मुझे कहाँ ले आए, घर में सब चिंता कर रहे होंगे, वह कसमसाते हुए बोली। मैडम, सोनम यहाँ एक माता जी के यहाँ घर में खाना बनाती है, मैं इसे रोज इस वक्त इसे छोड़ने आता हूँ, यह बात आप सेठानी से कहना मत वरना वो मेरी खाट खड़ी कर देगी, मणिराम गिड़गिड़ाया। अच्छा तो हम चलते हैं, कहकर सोनम इतराते हुए कार से उतर पड़ी। तभी उसकी दृष्टि सड़क के पार दूसरी तरफ खड़ी देवीना पर पड़ी। अरे देवीना दी, आप यहाँ, कार का पिछला दरवाजा खोलकर वो बच्चों की तरह किलक पड़ी। ओहो सोनाली, तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। पसीने से तर बतर दो भारी थैले लेकर सड़क पार कर रहे उसके पास आते हुए देवीना ने उम्मीद भरी आवाज में पूछा, हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, बैठी ना। सोनाली पुलकित उठी। ओफो मैडम, आज तो आप मेरी खाट खड़ी करवा के ही रहोगी, सेठ जी का नेचर आप जानती नहीं, कितना खड़ूस है, मणिराम झल्लाते बोला, तो मैं ही उतर जाती हूँ। कहते वो उतरने लगी तो फिर मनीराम घिघियाते हुए बोला, फिर तो सेठानी जी मेरी खाट खड़ी कर देंगी, अजीब मुसीबत है, चलिए मैडम जी आप भी बैठ जाओ। कार का दरवाजा बंद करते हुए देवीना बोली, किसकी कार में इतनी रात घूम रही हो, मैं तो यह शॉपिंग करने आई थी, भूषण जी की पत्नी सविता जी ने मुझे अपने घर बुलाया था, सोनाली ने बुझे स्वर में उत्तर दिया। फिर तो तुम्हें नौकरी का झांसा भी दिया होगा, अपनी कविताएं और सितार भी सुनाया होगा, देवीना व्यंग भरे अंदाज में कह रही थी कि मणिराम ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अपने पैरों के पास पड़े पॉलीथीन के बैग को सड़क पर उछाल दिया। जब देखो सेठानी मुझे अपने घर का बेकार माल देकर अपने आप को दानवीर समझती है, मणिराम बुदबुदाया। तो देवीना हंसते हुए बोली, ये बुनबुनाने की बीमारी भी भैया जी क्या आपने भूषण से सीखी है, आपको क्या बताएं, सेठानी ने अपने घर में सूखाए मटर और फ्रोजन टमाटर मेरे मत्थे मंड दिए, सोनम को इस बात का पता चलता तो वो मेरी खाट खड़ी कर देती, मणिराम अपनी परेशानी का खुलासा करते हुए बोला। हाँ सोनाली, तुम ध्यान से सुनो, तुम ऐसे गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोगों के झांसे में पड़कर अपना समय और मत खराब करना। इन लोगों ने मुझे भी अपने स्कूल में सितार सिखाने के लिए रखा था, पर जिस दिन सविता जी का मन सितार सीखने से ऊब गया उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। ऐसा ही मेरे पिताजी के साथ भूषण जी ने किया था, बिना पेंशन की नौकरी से रिटायर्ड होकर पापा जब नौकरी तलाश रहे थे इन्होंने प्रेम से बुलाया, पर देवीना अतीत की बातें याद करके भावुक उठी, और मैडम जी काम करवाकर उन्हें पगार भी नहीं दिया होगा, इसीलिए तो मैंने ड्राइवर यूनियन के मार्फत इनके यहाँ नौकरी की, मणिराम अपनी चतुराई पर गर्व महसूस करते हुए चहका। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ सोनाली, कोई व्यावसायिक ट्रेनिंग ले लो, प्रतियोगिता परीक्षा में पास होने के लिए जी जान लगा दो, वरना पूरी जिंदगी ऐसे लोगों के झांसे में पड़कर बर्बाद हो जाओगी, देवीना ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा। पर दीदी, घर में पिताजी के गुजरने के बाद हम पर जो गुजरी है वो आपको क्या बताऊं, घर पे सारे दिन माँ मुझे ही अपराधी मानती रहती है, हर चीज का मिथ्या दोषारोपण करती फिरती है, भाई लोग भी माँ का ही साथ देते हैं, कहते सोनाली की आंखें छलक उठी। हर इंसान को अपनी अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है सोनाली, अरे पगली, माँ को मानसिक बीमार समझकर उन्हें माफ कर दो, एक बार पूरे मन से अपना करियर संवारने की दिशा में ध्यान तो दो, देवीना ने सोनाली को हौसला बंधाते हुए कहा। तो सोनाली ने अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस की, जीवन संग्राम में उसने जीतने का प्रण कर लिया।
1: अभी आपने सुनी कहानी, विषय था गिरगिट और कहानीकार थी पूर्णिमा मित्रा।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान,
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
2: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
3: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
2: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
3: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुना।

0: आएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। 8:45 हुए हैं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। वाचक स्वर होंगे श्रीमती मधु शर्मा के, प्रस्तुति रहेगी श्री रेवंत राम लेगा की, और इस कार्यक्रम का संयोजन किया है श्री अमित सिंह ने। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
3: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
4: रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस अंक में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, 23 जुलाई 1927 को एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC ने बॉम्बे यानी मुंबई स्टेशन से देश का पहला संगठित रेडियो प्रसारण आरंभ किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1930 में इस ट्रांसमीटर को अपने नियंत्रण में लेकर इसका नाम भारतीय राज्य प्रसारण सेवा रख दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 8 जून 1936 को इसका नाम परिवर्तन करके ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR कर दिया गया था, और फिर वर्ष 1956 में राष्ट्रीय प्रसारण के लिए आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। श्रोताओं, हाल ही में 23 जुलाई को हमने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया था। यह दिवस देश के विकास, सूचना व शिक्षा के प्रसार, मनोरंजन और सांस्कृतिक संरक्षण में रेडियो व मीडिया प्रसारण के योगदान को याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। श्रोताओं, आकाशवाणी का ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रोताओं, बीकानेर में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम होते रहते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक कार्यक्रम में ले जाएंगे जहां पुराने श्रोता और आकाशवाणी से जुड़े श्री मुकेश पोपली की यादें और अनुभव आपको सुनवाएंगे। अपनी बात का आरंभ आपने एक पत्रिका का जिक्र करते हुए कहा।
5: हम लोगों ने एक पत्रिका का विमोचन किया था और वो पत्रिका है ये युवा रंग। इसको क्यों निकाला गया वो एक कहानी बिल्कुल अलग है, लेकिन इसमें विषय आकाशवाणी, दूरदर्शन और साहित्य, ये तीनों रखे गए। ये हमने 1986 की होली पे निकाली थी और इसमें मैं, कुलदीप जनसेवी और संदीप गग्गड़ इस पत्रिका के कर्ता धर्ता थे। सभी श्रोता और उनसे अलग भी नाम वो इस पत्रिका में मौजूद हैं कि आप तो आकाशवाणी से जुड़े हुए हो, जुड़ा हुआ तो मैं भी हूँ वो कह रहे थे, लेकिन नाम आपके पास होंगे क्योंकि आप एक श्रोता भी रहे हो। तो मैंने उनको बहुत सारे नाम भेजे थे और वो नाम कुछ तो दिल में थे ही और कुछ इस किताब में से भी भेजे थे। इसमें श्याम बिहानी जी का भी और अब्दुल अजीज मैनन जो साथ में थे इनके, उनका भी एक आलेख है, उसमें बीकानेर का परिचय दिया हुआ है। मैं सिर्फ आउटलाइंस ही बताऊंगा आपको। इसमें लालचंद सुथार का नाम है, उत्तम भटनागर, प्रकाश राठी दड़ीबा से, माणक चंद बारिया बीकानेर से, संगीता झा, प्रकाश चंद्र खत्री, कुशाल चंद लखोटिया, दीप सिंह जी, ये टीटी कॉलेज में हुआ करते थे, कविता सहगल की दो कविताएं हैं, अनिरुद्ध सिंह उम्मट, इनके मकान में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी किराएदार के रूप में भी रहे थे और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, एलसी शहजादा आज यहाँ पर मौजूद देखा मैंने उनको, अब्दुल जब्बार, शंकरलाल रंगा, असगर अली पंजाबगीर, राजेंद्र कुमार बजाज, राजेंद्र मालू चंचल, ये डूंगरगढ़ के हैं, एस मंजूर हसन कादरी, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं।
4: आकाशवाणी से जुड़ी इस पत्रिका में श्रोताओं के प्रश्न होते और जवाब देते श्री मुकेश पोपली।
5: इसमें इसको पत्रिका को आकर्षक बनाने के लिए हमने एक सवाल जवाब भी शुरू किया था, तो उसमें जालंधर शहर की निशा जैन को उनके प्रश्न पर हमने 21 रुपए का गिफ्ट चेक उस समय भेजा था। उनका प्रश्न मैं आपके सामने जरूर पढ़ूंगा, ये सारे जवाब मैंने ही दिए थे। स्वांत सुखाय की भावना से प्रेरित आज मनुष्य संघर्षरत है, किंतु

0: जितनी विषमताएं वह झेलता है उतना ही टूटकर बिखर जाता है। क्यों? जवाब दिया कि क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। किसी भी मनुष्य को अपना काम पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। कहा भी गया है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा तुझसे पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष होने की चर्चा भी आपने अपने अनुभवों में की।
0: आकाशवाणी का 90 वर्ष का जो आपने अभी महेश जी ने बताया, आप यदि सुबह 6 बजे से कुछ पहले नींद से जागकर अपना रेडियो खोलते हैं तो एक पीप और उसके बाद एक संकेत ध्वनि सुनाई देती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इस आधुनिक और कंप्यूटर युग में भी इसी ध्वनि को सुनकर अनेक लोग अपनी दिनचर्या प्रारंभ करते हैं।

0: यही संकेत ध्वनि बहुत सी फिल्मों में भी सुनाई देती रही है। मेरे को ध्यान आ रहा है कि अमोल पालेकर की एक दो फिल्मों में ऐसा हुआ था। इस ध्वनि के उपरांत उद्घोषक बोलते हैं वंदे मातरम और फिर वंदे मातरम का गीत शुरू हो जाता है। जी हाँ श्रोताओं, बात हो रही है आकाशवाणी की। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आकाशवाणी का सूत्र वाक्य है और ये अपने उद्देश्य में सफल भी रहा है।
1: श्री पोपले ने 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की चर्चा की, वहीं आकाशवाणी बीकानेर के स्थापना दिवस की भी बात रखी।
0: भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई, जिसमें सबसे पहले मुंबई से 23 जुलाई और कलकत्ता से 26 अगस्त 1927 को प्रसारण शुरू हुआ। वर्ष 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस अर्थात भारतीय प्रसारण सेवा के रूप में इसे 1 अप्रैल 1930 को सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। 8 जून 1936 को इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जिसका श्रेय लायनेल फिल्डन, उस समय अंग्रेजों का राज था, उनको जाता है, जो रेडियो के पहले कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग थे। सबसे पहले शॉर्टवेव ट्रांसमीटर आकाशवाणी दिल्ली के लिए 1937 के अंत में लगाया गया।
1: श्रोताओं, 1938 में हुई एक घटना का वृत्तांत बताते हुए क्या कहा आपने सुनिए।
0: वर्ष 1938 में जब अन्य केंद्रों पर शॉर्टवेव ट्रांसमीटर लगाए गए तो उद्घाटन समारोह हेतु महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने आकाशवाणी नाम से एक बंगाली भाषा में कविता भी लिखकर भेजी। ऑल इंडिया रेडियो के लिए यही नाम बाद में छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत के सुझाव पर वर्ष 1957 में अपनाया गया। इस बीच में मैं आकाशवाणी बीकानेर के, क्योंकि यहाँ सब हम लोग जुड़े हुए हैं, 29 अप्रैल 1959 को आकाशवाणी बीकानेर की स्थापना हुई थी।
1: आप स्वयं आकाशवाणी से कब और कैसे जुड़े सुनिए।
0: मुझे याद है वर्ष 1975 में जब युववाणी प्रारंभ हुआ था तो मैं वैसे ही रेडियो तो सुनता ही था, लेकिन ये कार्यक्रम मेरे लिए एकदम नया था। फिर जब देखा कि लोग अपनी ही बात इस कार्यक्रम में करते हैं और साथ में गाने भी बजाते हैं, कलम में इतनी ताकत थी या नहीं, लेकिन गाने सुनने का तो शौकीन था ही। फिर मेरे को किसी ने बताया तो उस समय रतखाना कॉलोनी में आकाशवाणी का ऑफिस हुआ करता था, मैं अपनी एप्लीकेशन लेके गया तो वहाँ महेंद्र कुमार भट्ट साहब मिले।
1: पहली बार आकाशवाणी गए तब का अनुभव बताते हुए श्री पोपली ने कहा कि मेरा नंबर आने में 1 वर्ष लग गया। आकाशवाणी के पूर्व उद्घोषक श्री गिरधर व्यास, श्री यशपाल सिंह राठौड़ ने आपकी रिकॉर्डिंग की।
0: पहले इस तरह से 1 साल बाद नंबर आता था, हाँ उस समय वॉइस टेस्ट नहीं होता था, तो रिकॉर्डिंग मेरी यशपाल सिंह जी राठौड़ और गिरधर व्यास जी ने करी। मैं यशपाल सिंह जी राठौड़ को हमेशा याद करता हूँ कि थोड़ी बहुत उर्दू का ज्ञान उन्होंने मुझे दिया, क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो उसमें कुछ शायरियाँ थी और उसमें पहला गाना आज तक मुझे याद है, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा।

0: अपनी यादें और अनुभव बताते हुए आपने और क्या क्या कहा, सुनिए।
1: एक कार्यक्रम और होता था श्रोताओं के बीच, मुझे बाकी तो नाम ध्यान नहीं है लेकिन चंद्र जी का नाम ध्यान है, वो भी उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे थे और मैं मुझे भी बुलाया गया था। काव्य पाठ, महिलाओं के लिए वार्ताएं, ये जो भी, और या कहें कि किसानों के लिए, जवानों के लिए और हम सब के मनोरंजन और साहित्य के लिए हम लोग एक बार फिर प्रयासरत हों और ऐसे कार्यक्रमों को एक बार महीने में एक बार या तीन महीने में एक बार ऐसी गति प्रदान करें कि सब वातावरण आकाशवाणीमय हो जाए।
0: श्री पोपली ने आकाशवाणी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा,
1: रेडियो हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है ये मुझे आपको सबको बताने की जरूरत नहीं है। हम रेडियो श्रोता नहीं है, हम रेडियो प्रेमी हैं, रेडियो हमारा जीवन है। मेरे घर में अगर मैं ऊपर हूँ कमरे में तो रेडियो भी चलता है और जब नीचे होता हूँ तो आधुनिक तकनीक वाला, उसमें भी विविध भारती और एफएम गोल्ड और ये सब आते हैं। रेडियो के कारण ही मेरी संगीत में रुचि बनी, जसकरण गोस्वामी जी को मैं यहाँ से नमन करता हूँ, और गीतों से प्रेम हुआ, प्यार हुआ कि 9वीं क्लास का मैं छात्र था, स्कूल सादुल स्कूल 12 बजे ख़त्म हो जाता था, तिलक राज जी हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे, तो वहाँ से लेकर मेरे घर की दूरी पठानों के मोहल्ले में सिर्फ 5 या 7-8 मिनट लगते होंगे, लेकिन बीच में एक रेलवे फाटक था, तो हम पिछली गली से वहाँ से जाते थे और लगभग मैं तेज़ कदमों से चलता हुआ ही जाता था। तो अगर गाड़ी नहीं जा रही है तो वहाँ पे बीच में एक जगह है छोटी सी, आज भी वहाँ का बहुत इस्तेमाल होता है, तो मैं वहाँ से पहुँचकर घर पहुँच जाता था। मम्मी गरम गरम फुलके बनाती थी और मेरा टाइम होता था 12:30 बजे रेडियो सुनने का। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि आकाशवाणी के कारण हम लोग रेडियो से जुड़े, संगीत से जुड़े और साहित्य से भी जुड़े। जब नवतरंग प्रस्तुत किया तो उसमें कुछ न कुछ साहित्यिक पुट ही था। मेरे मित्र मेरे पास आते, कॉलेज में मैं बदनाम हो चुका था कि और कुछ है चाहे नहीं है, नोटिस बोर्ड पे ये सूचना जरूर है कि आज शाम को या कल शाम को मुकेश पोपली का नवतरंग कार्यक्रम, क्योंकि वो रविवार को आता था तो शनिवार या शुक्रवार को हम लगा देते थे।
0: तो श्रोताओं, आज हमने बीकानेर में आकाशवाणी के 90 वर्ष होने के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम में अपने अनुभव और यादों को रखने वाले पूर्व श्रोता श्री मुकेश पोपली को सुना। श्रोताओं, आकाशवाणी की यादों और अनुभव हमें जहां भी मिलेंगे हम आपके लिए उन्हें इस कार्यक्रम यानी रेडियो का सफरनामा के जरिए लाते रहेंगे। अब इस अंक का समय पूर्णता की ओर है। संयोजन था श्री अमित सिंह का, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की, वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। वाचक स्वर थे श्रीमती मधु शर्मा के और प्रस्तुत थी श्री रेवंत राम लेघा की और संयोजन किया था अमित सिंह ने। 9 बजने को हैं, अब आप हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जमा राशि में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों के प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके साथ ही शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं भारतीय हाई जंपर सर्वेश कुशारे ने स्कॉट्सटाउन स्टेडियम में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में रजत पदक पर कब्जा जमाया। इसके अलावा भारोत्तोलक वल्लूरी अजया बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव ने एक एक रजत पदक हासिल किया। राज्य में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3,85,00,000 से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार इन खातों में 24,610 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है और जमा राशि के मामले में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में 2,19,00,000 से अधिक महिलाओं के जनधन खाते हैं जो कुल खातों का 57% है। योजना के तहत 2,87,00,000 से अधिक रुपए डेबिट कार्ड भी जारी किए गए हैं। जनधन खाता धारकों को दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट सुविधा और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धौलपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बे में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। फूलपुर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत सरकारी अस्पतालों की क्लेम निस्तारण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार क्लेम रिव्यू कमेटी अब संबंधित अस्पतालों में पहुंचकर मामलों की सुनवाई कर रही है, जिससे लंबित क्लेम का तेजी से निस्तारण हो रहा है। अब तक 98,000 से अधिक अपीलों में से लगभग 72% मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। साथ ही 19,61,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। गौरतलब है कि इससे अस्पतालों को समय पर भुगतान मिलेगा और मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जा सकेगा। प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ सीजन 2026 के लिए 31 जुलाई तक बीमा करा सकते हैं। वहीं रबी 2026-27 सीजन के लिए ये आवेदन 31 दिसंबर तक किए जा सकते हैं। किसान किसी भी नजदीकी बैंक शाखा, केंद्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, डाकघर या CAC के माध्यम से ये बीमा करा सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल या अधिकृत बीमा एजेंट के माध्यम से भी बीमा कराया जा सकता है। खरीफ मौसम में बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोठ, तिल, कपास और मूंगफली सहित 14 फसलें अधिसूचित की गई हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले फसल खराबे से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को खरीफ और रबी दो फसल मौसमों के लिए प्रदेश में लागू किया है। जयपुर को हरा भरा और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सहकारिता विभाग की ओर से सहकार वन विकसित किया जा रहा है। विभाग के सचिव समित शर्मा ने बताया कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लिए 88 बीघा भूमि उपलब्ध कराई है। लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये सहकार वन पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता का केंद्र बनेगा।
1: बेसिकली एक एनवायरमेंटल सेंटर होगा जहाँ पे फ्रूट ट्रीज लगेंगे, जहाँ

0: लोग जा सकेंगे, जहाँ पे वाटर बॉडी होगी, बच्चों के लिए स्थान होगा, पास में जो फॉरेस्ट की भी लैंड है तो वाइल्ड लाइफ के लिए भी स्थान होगा। तो जयपुर में एक ऐसा शांत प्राकृतिक सुरम्य रमणीय स्थल विकसित करने का प्रयास है, जहाँ पे कि क्षेत्रवासी जा सकें, वहाँ पे अपने बच्चों को ले जा सकें, वॉकिंग ट्रैक भी होगा, अपने स्वास्थ्य में भी सुधार करें, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े और जयपुर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके, जयपुर की लंग्स की तरह वो एक्ट करे, लंग्स की तरह काम करे।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने को कहा है। कल जयपुर में शासन सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन, संबंधित उद्योग संघों, सीईटीपी संचालन समितियों को इसके निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जोजुड़ी सहित अन्य नदियों में उद्योगों का प्रदूषित पानी नहीं जाने देने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। बैठक सीईटीपी संयंत्रों के प्रभावी संचालन, रखरखाव और प्रदूषित पानी के वैज्ञानिक निस्तारण पर भी जोर दिया गया। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं की बेहतर देखभाल और सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि उच्च जोखिम वाली गर्भवतियों की नियमित निगरानी, समय पर जांच, परामर्श और उपचार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अगले एक महीने में संभावित प्रसव वाली महिलाओं की समय रहते चिकित्सकीय जांच कराने के निर्देश दिए। श्रीमती राठौर ने 104 एम्बुलेंस सेवा की गुणवत्ता की रैंडम जांच कर फीडबैक लेने तथा कमियों का तत्काल समाधान करने को भी कहा। उन्होंने गंभीर एनीमिया और चांदीपुर वायरस की स्क्रीनिंग पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। स्वायत्त शासन सचिव ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन 15 अगस्त से 28 सितंबर तक किए जा सकते हैं। अभ्यर्थी की पात्रता की शर्तें वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये भर्ती राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स 2022 के तहत की जाएगी। पात्र अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। राजस्थान ने अंगदान शपथ अभियान में देश में पहला स्थान हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग के स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो की संयुक्त निदेशक डॉ. चित्रा सिंह ने बताया कि अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सोटो और शिक्षा चिकित्सा निदेशालय की ओर से राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 1,17,000 से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली है। और अब मौसम। पूर्वी भारत के ऊपर बने नए तंत्र के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के आसार हैं। आज भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर सहित सभी पूर्वी जिलों में रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ इलाकों में गरज के साथ मध्यम से कहीं कहीं तेज मेघ पड़ सकता है। वहीं प्रदेश के बाकी हिस्सों में छिटपुट स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात होने के आसार हैं। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में बारिश बढ़ने और कहीं कहीं भारी बरसात होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की पैरा शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जमा राशि में राजस्थान देश में चौथे स्थान पर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने जोधपुर, पाली, बालोतरा और आसपास के क्षेत्रों में नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। और प्रदेश के नगरीय निकायों में 24,752 संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी

विकर्ण का ये ठोला मारू चैनल है। 9:10 हुए हैं, अब आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए अब्दुल गनी और साथियों की आवाज में ये लोक गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट।

0: फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

अभी आपने सुना कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मेरे वो 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 9:30 हुए हैं। अब आप

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
0: और राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
0: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
0: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
0: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
0: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
0: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
0: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
2: जी।
0: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
0: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
0: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
0: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
0: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
0: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे

0: ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: और आपको बता दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
0: और यदि NCERT की पाठ्य पुस्तकों का PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए NCERT Books PDF। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना न भूलें।
0: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
1: NCERT की 6वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: नमस्कार श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित।

0: नहीं आता क्या?
1: दीदी वो,
0: हाँ बोलो
1: दीदी,
0: बोलो लता, क्या बात है?
2: नई नई आई अध्यापिका उमा देवी को समझ में नहीं आ पा रहा था कि लता क्यों साधारण से साधारण सवाल का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती? उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
3: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते बहन जी।
6: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते
8: दीदी।
9: नमस्ते बहन जी।
10: नमस्ते शिखा।
0: अरे दीदी जी, आप आइए आइए।
11: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते, यहाँ बैठिए
11: जी,
0: यहाँ। आज कैसे गरीबों के घर आपने।
11: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप, मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
0: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
11: हाँ ये तो है।
0: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
11: राम राम दादा।
12: हाँ,
11: कैसे हैं आप?
12: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत तो ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
11: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
12: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
11: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
12: अच्छी? और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
11: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ बैठो मेरे पास।
1: जी दीदी।
12: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
11: जी।
2: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी मां भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
11: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
13: दीदी लता। दीदी लता।
11: लता?
14: जी दीदी।
11: क्या ये लता?
14: जी दीदी।
11: अरे नहीं।
14: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
11: अच्छा,
14: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
11: अच्छा
14: जी दीदी।
11: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?
3: दीदी, इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता।
2: दीदी, ये तो एकदम बुद्धू है।
4: दीदी दीदी, ये तो हमेशा चुप बैठी रहती है।
0: चुप चुप हो जाओ तुम सब, मैं लता से पूछ रही हूँ, लता ही जवाब देगी। हाँ लता, बताओ बेटा, तुम्हें जो मैं पढ़ाती हूँ

0: स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भारी सभा में अपनी बेटी को चार चार इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वारी पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
2: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो, मैं पगली नहीं हूँ।
1: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है ठीक।
3: नमस्ते दादा।
1: नमस्ते नमस्ते।
3: क्या बातें हो रही है बेटी से।
1: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
3: हाँ दादा, और खास कर लता।
1: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
3: और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
1: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इस पे हमने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
3: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं।
1: हाँ बिल्कुल।
3: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, कर सकता है भला।
1: नहीं जी नहीं।
3: तो दादा अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
1: पर बहन जी मैं क्या करूं, देखो इसकी किताबें वर्दी।
3: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
1: वो तो बहन जी।
3: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा।
1: वो
3: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
1: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है
3: दादा। कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
1: है?
3: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
1: हो
3: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
1: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
3: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
1: जी
3: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
1: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
3: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।
0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।

0: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
1: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है
0: भाई।
1: अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
2: हाँ हाँ,
1: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
2: अच्छा,
1: उसके सचमुच के बाल हैं।
2: ओहो,
1: और एक कंघी भी है।
2: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
1: ठीक है।
0: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
2: ठीक है आ जाना।
0: अच्छा
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ,
0: मैं भी आ जाऊँ लता।
1: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
3: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता

चुकी है। आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 8448440632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारुक चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम में अब आप सुनिए मोहित चौहान की आवाज में फिल्म दिल तो बच्चा है जी फिल्म से गीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेना के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल

आकाशवाणी बिकानेर का ये ढोला भरू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई से। आवाज है मोहित चौहान की।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आपने सुना अरमान मलिक की आवाज़ में फिल्म हेट स्टोरी 2-3 से गीत। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत जावेद अली की आवाज़ में फिल्म प्यार है तो है से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ।

0: उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म धड़क 2 से गीत।

अभी आपने सुना अरमाल मलिक और श्रद्धा कपूर की आवाज में फिल्म बागी से गीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत विशाल भारद्वाज और किरण की आवाज में।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। सुबह के 11 बजे हैं, अब आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर से गीत। इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आप सुन रहे थे मुकेश मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। ये फिल्म थी श्री 420। ओली जब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है सफ़र फिल्म से। स्वर है मुकेश का।

मुकेश को आप सुन रहे थे फिल्म सफर में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

जोहरा अम्बाला वाली और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे जिन्नत फिल्म का गीत। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने पालकी फिल्म से लिया है। स्वर है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के।

मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर को आप सुन रहे थे पाल की फिल्म में। फिल्म संगीत आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लाजवंती फिल्म से लिया है। आवाजें हैं आशा भोंसले और मन्ना डे की।

0: ओले तो आन मिले हम धूम से बैठे मिलते हैं शबनम तुम तो हमारे हम है तुम्हारे ऐसे न मिलते चांद सितारे
1: बाप हमें नाम

0: बाजी एक बार बताना, सब कुछ कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ, बिल्कुल

0: मामा जी ने जीत तो आओ ये दुनिया है कौन बताओ टुक टुक हमको ताक रही है बैठी तनख्वाह काट रही है
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ना ना यूँ ताना मत

गीता दत्त और साथियों को आप सुन रहे थे प्यासा फिल्म में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं बूट पॉलिश फिल्म का गीत, आवाज़ें हैं मन्ना डे और साथियों की।

Lapa ke japak,

0: मन्ना डे और साथियों की आवाजों में ये था बूट पॉलिश फिल्म का गीत। लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोंसले को। फिल्म का नाम है दर्पण।
1: अरे जल गई जल गई जल...

किशोर कुमार के साथ ये आवाज थी आशा भोंसले की और ये फिल्म थी दर्पण। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है

0: एस डी बर्मन के गाए तलाश फिल्म के इस गीत के साथ ही भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 12 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ को 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सर्वेश कुशारे, वल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक जीतने तथा शिल्पा शायला और बिंदिया रानी देवी को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप 2026 जीतने पर अनाहत सिंह की भी सराहना की। अध्यक्ष ने देश का नाम रोशन करने वाले सभी एथलीटों के साथ साथ कोच और उनके परिवार के सदस्यों को भी बधाई दी। बाद में श्री बिरला के प्रश्नकाल शुरू करने के प्रयास पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया ताकि सार्थक संवाद हो।
2: आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो,

0: में गतिरोध नहीं होना चाहिए, पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा होती है।
1: राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला। दिन में 11 बजे सदन के शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने विधेयक सदन के पटल पर रखे। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन के शून्यकाल शुरू करने पर विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हैं। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से संसद सत्र के दौरान ये बैठकें पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि हब एंड स्पोक मॉडल से वर्ष 2030 तक लगभग 4 लाख रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। श्री नायडू ने कहा कि सेवा के शुरू होने से अमृतसर से यात्री अब दिल्ली के रास्ते दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और पेरिस सहित लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेंगे। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने हब एंड स्पोक उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिन्हा ने कहा कि मॉडल भारत के विमानन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। मध्य प्रदेश के भोपाल में नव विकसित निषादपुरा रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज शाम इसका उद्घाटन करेंगे। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ जबलपुर एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का ठहराव भी अब निषादपुरा रेलवे स्टेशन पर होगा। आंध्र प्रदेश के चल्लूरू में कल देर रात एक सड़क दुर्घटना में 8 वर्षीय बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 13 अन्य घायल हो गए। चल्लूरू के पास रुके हुए वाहन पर विशाखापट्टनम से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मामूली बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 63 अंक बढ़कर 76,899 जबकि निफ्टी 24 अंक बढ़कर 24,020 पर कारोबार कर रहा था। भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारो चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़। लीजिए अब सुनिए हमारे शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। समय रहेगा रात 10 बजे।

शाम 7 बजे हमारे ग्रामीण श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत, जिसमें आज चर्चा होगी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर और चर्चा होगी नीम एक लाभ अनेक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा पशु स्वास्थ्य जांच शिविरों का लाभ उठाएं। इसके अलावा लोकगीत भी सुनवाए जाएंगे।

युवा साथियों के लिए कार्यक्रम होता है युववाणी शाम 5:05 पर। आज प्रस्तुत करेंगे सुमन बिश्नोई और दिशा भाटी। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा ऊर्जा के अपव्यय को रोकें। लघु जानकारी होगी विश्व हेपेटाइटिस दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य भी है जरूरी, एनसीसी विषय पर भी जानकारी दी जाएगी और इसके अलावा होगा क्विज टाइम और रोजगार समाचार।

से थोड़ी देर बाद होगा हमारा जयपुर से आमेर चैनल से हम रिले करेंगे सिंधी कार्यक्रम। घर आंगन कार्यक्रम का समय रहेगा 1:05। इसे प्रस्तुत करेंगे संतोष चारण और सुरभि बोहरा। आज चर्चा होगी इस कार्यक्रम में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, पर्यावरण का संरक्षण, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, योग और प्राणायाम को अपनाएं और इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना पर भी चर्चा होगी। ये थी हमारे शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

0: शयूं खणी आवां जो पंहिंजो सिंधी प्रोग्राम सभिनी ॿुधंदड़नि खे सीमा हीरानीअ जो नमस्कार। अॼु जे प्रोग्राम में तव्हीं ॿुधंदा अदबी मैगज़ीन मेहरान, जंहिंमें अॼु तव्हीं ॿुधंदा डॉक्टर कमला गोकलाणीअ खां वार्ता, हरी हिमताणीअ खां कहाणी ऐं लक्ष्मण दुबे खां कविता पाठ। पेश आहे हीअ वार्ता, वार्ताकार आहे डॉक्टर कमला गोकलाणी।
1: शाहनि जो शाह, भिटाई घोट, सिंध जी आत्मा, राखो दुआगू, सिंधियुनि जो शान शाह लतीफ़, सचपच असां सभिनी वास्ते फ़ख्र जो बाहिस आहे, जंहिंखे डॉक्टर सोरले ऐं ट्रंप दुनिया जे महान कवियुनि शेक्सपियर, गेटे, वर्ड्सवर्थ सां भेट कंदे आलमी कवि साबित कयो। शाह जे बैतनि खे आयतुनि जो मुक़ामु हासिलु आहे। शाह जी समूरियुनि लोक कहाणियुनि में आत्मा ऐं परमात्मा जे मेलाप जी तमसील समायल आहे। शाह ते खोजना कंदे अनेक ग्रंथनि जी रचना कई वई आहे। मुंहिंजो अॼु जो विषय आहे शाह जूं सूरमियूं या नायकाऊं यानी हीरोइंस। प्रोफेसर नारायण दास बंबाणीअ शाह जूं सूरमियूं सिरे सां आलमाणो किताबु लिखियो आहे, त प्रोफेसर पोपटी हीरानंदाणीअ शाह जे शहर में स्त्री मज़मून लिखियो आहे। मूं शाह जा नारी किरदार ऐं नूरीअ जो न्याज़ जुदा नमूने पेश कया आहिनि, त सिंध में हर हिकु सूरमीअ ते आलमनि लासानी रचनाऊं लिखियूं आहिनि। शाह जी अज़मत में कवियुनि कविता जे रूप में अक़ीदत जा फूल पेश कया आहिनि। मां अवल सूरमियुनि सां वास्तेदार के सिटूं पेश करियां थी। लेखराज अज़ीज़ लिखियो,

शायरीअ खे जंहिं कयो इल्हाम सो ही शाह आ, शायरीअ जो जंहिं मथे कयो नाम सो ही शाह आ। थी कॾहिं मूं मल उॾाए काम थो नित काक जा, रूह में राणो रखी थिए थो मोहबत में फना। थी ससी डोरे थो डूंगर ऐं पुनल जा पेचरा, मारुई वांगुरु वतन लाइ थो करे वाका वॾा। व्याह खणी खो हाक पंता जे उतर जे आसरे, साहुतिन सामुंडियुनि लाइ थो संदसि ॾाढो सिके। हरे दिलगीर लिखियो, बैज़ मूमल बणी मारीअ मां निहारे वेठो, बैज़ सुहिणी बणी दरिया खे करे पार लतीफ़, बैज़ नूरी बणी नीज़ारी ऐं निवृत थो करे, बैज़ लीला थी गिने हार जो आज़ार लतीफ़। नारंदास बंबाणी लिखियो, शाह जे सूरमियुनि जी कुर्बानी बेनज़ीर ऐं सहन शक्ति इबरतनाक आहे। हूअ इरादे जी पकी आहे ऐं कौल ते क़ाइम रहे थी। हुन जे ज़िंदगीअ जी मुराद ॾियणु आहे न वठणु। शाह जे रसाले ते नज़र विझण सां मैलूम थिए थो त हिन सतनि सूरमियुनि जो बयानु कयो आहे, जेके आहिनि सुहिणी, ससुई, लीला, मूमल, नूरी, मारुई ऐं सोरठ। हिन मुख़्तसिर वार्ता में सभिनी ते मुकमिल रोशनी विझणु मुमकिन कोन्हे। हर हिक ते जुदा जुदा ग्रंथ लिखिजी सघे थो, पर एतिरो तय आहे त उन्हनि जी झलक, महज़ झलक अवसि पसाए सघिबी। जेकॾहिं असीं संस्कृत ऐं हिंदी साहित्य जे नायका भेद खे खणूं त के मुख्य सूरमियूं हिन रीत उभरी बीहंदियूं। अभिसारिका, जा आधी राति जो महबूब सां मिलणु वञे, सा आहे सुहिणी जो दरिया जे धड़कनि कुननि जे कड़कनि खां न डिॼी, लोक लॼा खां बेख़बर बणी मेहर सां मिलणु वञे थी। मुग्धा, जा हार सिंगार करे महबूब खे मोहींदी हुजे, सा आहे मूमल जा राणे खे रिझाए थी। वटिस जे व्याह से वढिया, संदसि नेणनि में मिजाज़ जा इल्मास आहिनि, जिन वटि मणिया आहिनि तिन खे तीर हणे थी। प्रोषित भरता, जंहिंजो पति विदेश वियो हुजे, से आहिनि सुर सामुंडी जूं वणजारियूं, जिन जा वर अचण शर्त वञण जूं ॻाल्हियूं था कनि, मिलण साण मोकिलाइण जा साया था कनि। वणजारी सस खे तोड़े माउ खे विरलाप कंदे ॾोरा पाथी ॾिए। विप्र लब्धा, जंहिंखे पतीअ वटां दोखो मिलियो हुजे, सा आहे ससुई, जंहिंखे जंहिंजे पुनल खे ॾेर भॼाए विया। हूअ ऋण पट भिटकी जबल जूं जाड़ू सही पुनूअ खे पाइण लाइ भिटकी रही आहे। वासक सजा, जा पंहिंजे प्रीतम खे दोखो ॾिए, उहा आहे लीला, जंहिं मणे ते मोहिजी चने सर सां दोखेबाज़ी कई ऐं लीला में ई कलह तरता, जा घरू झगड़ा करे पतीअ खां विछड़ी वञे ऐं खंडिता, जंहिंखे पतीअ वटां ॾुहाग मिले वारा रूप अची वञनि था। माननी, जेका पतीअ सां माणा करे रुसी वञे, तंहिंजी हल्की झलक सुर मूमल राणे में पसाई अथसि। तोड़े माणा कंदसि किन सां चवंदे ज़िक्र कयो अथसि। सतनि सूरमियुनि खां सवाइ सुर सामुंडी जे वणजारियुनि जे अंदर जे उधमनि जो जेको सोज़ भरियो बयानु शाह कयो आहे, सो कंहिं औरत रचनाकार जे कलम मां बि हूंद इज़हार न पाए सघे। हाणे सिलसिलेवार सूरमियुनि जो मुख़्तसिर बयानु कजे थो। मूंखे शाह जे सूरमियुनि मां सिंध जी सीता मारुई बेहद मुतासिर कंदी आहे। मारुईअ लाइ 11 दास्तान आहिनि। हूअ मलीर जी ॼावल खेत सां मङियल आहे, पर उमिरि खेसि ज़ोरीअ भॼाए उमिरि कोट वठी थो वञे। ज़ोर जबर धड़कन ऐं लालचुनि जे वस न थी मारुई सत ते क़ाइमु रहे थी। हूअ थर जा खूह, ॻोठाणा मेवा, ॾुथ ॾौरा, पका पेरूं, मञर माछियूं यादि करे थी। जेतोणीकि आम कहाणीअ में ॾम मंझिसि शक कंदो हो, पर अज़ीम शाइर शाह ईअं न ॾेखारियो आहे। हुन मारुईअ खे बुलंद किरदारु साबित कयो आहे। हूअ मरण बैदि बि मलीर जे मिटीअ में मण मोकिलण लाइ उमर खे नीज़ारी थी करे वाझाए वतन खे, जे सारे ॾियां साह, बुत मुंहिंजो बंद में कैदम करी जाह, पर ॾेहाणी प्रिय रे धारम धरी जाह, थधी वसाइजांइ थरन जी मिटी मुई मथाह, जे पोयों थिए पसाह त निजाए मण मली रॾे। मारुअड़नि खां सवाइ

ऐं शालू ऐं पटोला नथी पाए। लोईअ खे चती हणी हार सिंगार करण बिना वेहे थी। ॾाॾाणनि जी लोई लाहींदे लॼु मरे थी। पटोला पवारणियूं मूर न मथे कनि, जे लाख रताऊं लोयूं त सालुआ सुहनि। उन इलाइचूं अगरी बखमल बाफ़तन, सखर भाया सूमरा खथे खां खुंबनि। जा ॾिन में ॾाॾाणनि सा लाहींदे लॼु मरां। मूल मशहूर कहाणीअ में डम राम मिसल मारूअ जी अग्नि परीक्षा वरिती हुई। बाहि में लोह जी शीख साड़े उहा मारूअ खे हथ में झलण लाइ चयो ऐं लहस न अचण ते संदसि पाकीज़गीअ खे तस्लीम कयो। पर शाह उहो हिसो कढी छॾियो आहे ऐं अहिड़ी असराइते नमूने जो पाठक शाह जे कहाणीअ में ई खोइजी वियो आहे। ससी सालिक बणी पुनूअ जे तलाश में पंहिंजी हयाती कुर्बान करे थी। संदसि शादी माइटनि ख़ुशीअ सां पुनूअ सां कराई, पर संदसि ॾेर पुनूअ खे भॼाए वञनि था, जंहिंजे तलाश में डूंगर डोड़े, पहणनि में पेर पिथू करे, जबलनि जूं जाड़ूं सही, अथाह तकलीफ़ूं ॾिसे थी। संजोग जो तमामु घटि वक़्तु घारियो अथसि, सोचे थी, मूं भायो मूं वटि हमेशह हूंदा पिरी। पर पुनूअ खे जॾहिं संदसि भाउर वठी विया त ससीअ खे अहिड़ी निंड अची वई जो पतो ई न पियुसि। उठ बि न रड़िया, शायदि उहे बि ॾेरनि सां डोह में शामिल हुआ। चवे थी, अॻे उठ रड़नि मूं भेरे माठ थी, पलाणींदे पाण में कुझु की न कुठनि, काजा माम मुठनि हिन पिणु हुई हुन सीं। हूअ जबल खे बि चवे थी, डूंगर तूं ॾाढो ॾाढा ॾाढायूं करी, मूं त न अंदरि ईअं वहीं जीअं वण वढे वाढो। सुर कोहारी में हूअ चवे थी, जे मां पंहिंजे दुखी दिलि जी दाह ओरियां त सिज उभरण विसारे छॾे, वण ॿरी वञनि, जबल फाटी पवनि। हक़ीक़त हिन हाल जी जे ज़ाहिर करियां ज़री, लॻे माठ मिरुअनि खे डूंगर पवन दरी, वञनि वण ॿरी ओभर उभरे की न की। सुहिणी मेहर जो किसो आलम आशकार आहे। कुंभर जी धीअ हुई मेहर। संदसि सूंहं जी हाक ॿुधी मथिस मुफ़्तूं थियो। तमसील में हूअ अज़ल खां नातो मञे थी मेहर सां। हूअ हर राति नदीअ में टपी पवे थी, दरिया जे धड़कनि खां डिॼे नथी। हूअ बाग़ी सूरमी आहे, जा साहुरनि निराणनि समाज कंहिंजी बि परवाह न करे कुननि में काहे थी पवे। सूरी आहे सिंगार अॻे ई आशकनि जो, या सूर्य सॾु करे उभी आशकनि खे। सचपच सूर नीह जी सौगात आहिनि, इश्क रांदि नाहे। मेहार सुहिणीअ जा ॿुॾण वक़्तु सॾु ॿुधी दरिया खे बराबरि चयो, तूं कीअं ॿुड़ी सुहिणी, ॿेली मुंहिंजी बांह, दरिया तो ते दाह ॾींदुसि ॾींहं कया मजे। लीला राजाई कुल मां आहे, हुन पलंग तां पेर हेठि न लाथो। चनेसर जी पट राणी हुई, पर मणीअ ते मोहिजी कांध ॾिनाई कोन रूह खे। पोइ पछताव जा लुड़क ॻारे गुनाहनि जो दाग धुअणु चाहियई। अलाह ॾाही मथियां ॾाहियूं ॾुख ॾिसनि, मूंसे मूं पिरियुनि भोराईअ में भाल कया, ऐं मूं वर तूं ई तूं, तो वर वहूं केतिरियूं। औरत जो ज़ेवरनि सां प्यार खेसि केतिरी हद ताईं केराए थो, इन जो लासानी चित्र शाह जी सूरमी लीला मां मिले थो। मूमल बि राजाई ख़ानदान मां हुई। संदसि लासानी सूंहं संस्कृत जे नायकाउनि सां बर मेचे सघिजे थी। जहिड़ा पाननि पन तहिड़ियूं सालूं मथिन सायूं, अत्र ऐं अबीर सीं ताज़ा कयाऊं तन, मड़ हुआ घणो मुश्क सीं चोटा साण चंदन। पर खेसि मज़ाक ॻरी पई जो साण सूमल खे सुम्हारियाई मर्दाने वेस में। राणो ॾिसी कावड़ जी लकुण उते रखी रमंदो रहियो ऐं मूमल संदसि विछोड़े में रुअंदी रही, ॿाॾाईंदी रही, मियां मेंद्रा मोट बख़्श कर पुछायूं, तूं घरनि जो घोट, मूं वर तूं ई हेकिरो। नूरी माछाणी नूरी न्याज़ करे जाम तमाचे जी पट राणी बणी, पेकनि तां महसूल माफ़ करायाई, आपो अहंकार मान समान विसारे निम्रता जी मूर्त बणी त खटे वेही। शाह नूरीअ जी कथा सुखांत ॾेखारी आहे, छो जो खेसि हमेशह इहो अंदेशो हो त किथे जाम मुंहुं न मटे, कांध कावड़ जी न वञे। तूं समो ऐं गंदरी मुंह में ऐबन लख, हिन मुंहिंजे हाल जी तोखे सभु परख, कारण रब अलख मता मांगर मटीअ। नूरीअ शाह जी इहा सलाह बि मञी त

0: त कंबींदे आओ अग्या तोरी दड़ तिखा थई अगई त पाओ न त मणब मोटियो वणन सोरठ शाह सुर जो नालो त सोरठ रखियो आहे पर सॼो फोकस राय ॾियाच ते विधो अथसि उन जो किरदार उभारण जे मोह में शायदि सोरठ ते तवजो न ॾिनी अथसि आख़िर में हूअ पतीअ जे चिता सां सती थी आहे पई झाइ झरोक में कुल मिलाए शाह अहिड़ो कीमियागिर आहे जंहिं सूरमियुनि खे बुलंदी अता करे अमर बणाए छॾियो संदसि समूरियूं सूरमियूं देश काल खां मथे मिसाली किरदार आहिनि क़ाइम दायम आहिनि हर का सिंधियाणी पंहिंजे सुभाउ मूजिबि शाह जे ख़लकियल सूरमीअ जहिड़ी बणजण ते फ़ख़ुरु महसूसु कंदी ऐं जीअं त हाणे अंग्रेज़ी हिंदी उर्दूअ में शाह जो रसालो तर्जुमो थी चुको आहे त ही सूरमियूं आलमी शख़्सियत बणजण जी पिण सलाहियत रखनि थियूं
1: तव्हीं डॉक्टर कमला गोकलाणीअ खां हीअ वार्ता ॿुधी रहिया हुआ हाणे तव्हीं ॿुधंदा कहाणी आस कहाणीकार आहिनि हरी हिमथाणी
2: कहाणीअ जो उनवान आहे आस सत्संग समाप्त थियण ते संगत भंडारे तरफ़ रुख कयो जिन खे जल्दी हुई या बुख खां बेहाल हुआ से तकिड़ो तकिड़ो जिते खाधे जी डिघी टेबल रखियल हुई कतार में वञी बीठा वारे वारे सां थाली कटोरी पे खयाऊं अंगण वॾो हो केतिरा हिते हुते हल्के सीअ में उस जे तिड़के जो आनंद माणे रहिया हुआ कुझु देरि खां पोइ टेबल तरफ़ को एकड़ बेकड़ ॾिसण में थिए आयो नारायण वधी थाली वञी खई हुई त ओॾी महिल शांता बि थाली खणण लाइ अची सहेड़ी हुई नारायण खे ॾिसी उमालक चयईं कमलेश गुज़ारे वियो हां नारायण जे पेरनि हेठां ॼण ज़मीन खिसकी वई कॾहिं गुज़ारे वियो हिन जे दिलि मां ॼण दाह निकिती राति जो ॾहें यारहें धारे अॼु शाम जो चई बजे सर खणंदा नारायण ख़्यालनि में गुमसुम हो जो हिन चयो तव्हांखे ॾाढो यादि कयो हुअई बसि नारायण नारायण ज़बान ते ॿियो को नालो कोन होसि नारायण खे सॾे अचो तव्हांजे घर माण्हू मुको हो पर तव्हां हिते कोन हुआ कॾहिं आया आहियो मां अठ ॾह ॾींहं ॿाहिरि हुउसि राति जो ई त आयो आहियां नवें धारे अलाह तव्हांखे ख़बर न पई आहे न त चवंदे चवंदे शांता ॼण टुॿीअ में पइजी वई नारायण खयल थाली वापसि पर भरो रखी छॾी मुंहिंजसि एतिरी बि ताक़त न हुई जो बीह सघे कुझु विखूं खणी हू खाली कुर्सीअ ते वञी वेठो हो हू हिननि ख़्यालनि में पीड़जी रहियो हो काश खेसि सुध पवे हा त पोयनि पलनि में एतिरो सोचण बि केतिरो ॾुखियो हो रखी रखी खेसि ॼण ॾंग ते लॻा कमलेश खे हू कमल चई सॾींदो हो अॼु उहो कमल दिलि जे दरिया में कुमाइजी वियो हो इहो इतफ़ाक़ हो जो हुन सां संदसि मुलाक़ात थी हुई पाड़े में रहंदड़ मालाई हिकु ॾींहुं खेसि साणस मिलायो हो हीउ मुंहिंजो भेण वियो कमलेश नारायण खे अजब लॻो हो खेसि इहा ई ख़बर हुई त माला माउ पीउ जी अकेली धीउ आहे पोइ अॻिते हली पतो पियो हो त कमल जे शरीक हयात नंदिनी माला जी नंढपिण खां साहेड़ी हुई मैट्रिक ताईं गॾु पढ़ियूं हुयूं नंदिनी शादीअ बैदि गृहस्थ जीवन में अॻिते पढ़ी न सघी हुई माला बीए बैदि बीएड कई हुई ऐं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर हुई सुभाउ जी मलूकड़ी पाड़े में सभु खेसि भाईंदा हुआ ऐं जीवन साथी बि मिलियुसि त पाड़े जो ऐं बैंक में क्लार्क ॼण सोने ते सुहागो कमल जे उन पहिरीं मुलाक़ाती रंग लातो हो निहायती मिलनसार हर दिलि अज़ीज़ सुभाउ जो हिकु समान दिलि ॼण दिलि सां ॻंढिजी वई हुई ख़ूबी इहा त नंदिनीअ में जेका पंहिंजाई हुई त नारायण खे पंहिंजे घर जो भाती करे भाईंदा हुआ अजमेर में नंदिनीअ जो पेको घर हुअण सबबि संदनि अचणु वञणु थींदो हो नारायण बि वक़्ते उल्हासनगर वेंदो हो त हुतां ढेर सिक साव खणी मोटंदो हो कमल उते बिल्डिंग्स कॉन्ट्रेक्टर हो अपार्टमेंट्स या ठेका खेसि मिलंदा हुआ धनी कृपा सां वटि नाणे जा गंज हुआ नंदिनीअ जा हिकु ॿिए पुठियां

0: थिया, ब पुट गुजारे विया त वैराग अची वियो। टिन सालन खन जो पुट नुगरे बुखार में गुजारे वियो त छहन सतन सालन जो बार कार जे फीते हेठां अची वियो हो। नंढड़ी ॼण जीअरे ई मरी वई हुई। बालपण खां ई संदसि विरति भक्ति भाव ॾांहुं हुई। हिन सदा वैरागी वैरागी मन सदा वैरागी वैरागी रहंदो होसि। हाणे त आकी बाकी हूअ सतसंगियाणियुनि जे टोले में हरिद्वार वेही त वापसि कोन मोटी। उते ई तेजस्वी माता जे आश्रम में रही पई। मोह ममता हिन देह जा दुश्मन, मुक्ति खपे मुक्ति मुक्ति, बस इहा रट हुई। कमलेश लाइ ही ॿियो सदमो। संदसि आज़िम निज़ारियुनि मिंथन मेड़ियुनि जो वैरागण ते को असर न थियो। अशांत मन वर वर आश्रम जे दर ते वञी निराश थी मोटियो। लख कख भासण लॻा। हिन खे अहिड़ीअ बीमारीअ घेरियो जो उथण वेहण खां लाचार थी पियो। केर खेसि हथनि खां छिके उथारे त हलण लॻे, न त जहिड़ो पिंड। सॼो कारोबार चौपट थी वियो। वॾो भाउ जेसी जीअरो हो त खेसि ॾिने संदसि हथ सूर न कंदा हुआ। दिलि खोले हुन खे मदद कयई। हू रिटायर्ड थियो त संदसि पुटनि खे रेडीमेड जो दुकानु खोलाए ॾिनई। वहंदड़ दरिया मां निकितो पिए त कुझु पतो बि न थिए पियो। पर हाणे जॾो थियो त संदसि भाइटियो मेड़ी चूंडी पाण ॾांहुं सेरींदो रहियो। चढ़ीअ जो हर को किरीअ जो कोई बि न, इहो हिसाब हो। जॾहिं इहे ख़बरूं नंदिनीअ जे कन ते पयूं त हुन जे मुक्तीअ जो मार्ग मोट खां ई हिन तरफ़ लड़ी आयो हो। नंदिनीअ खे आयल ॾिसी जेका खेसि ख़ुशी थी हुई, तंहिंखे फ़रिश्तनि बि आसमान जे झरोकनि मां लिया पाए ॾिठो हूंदो। हुन नंदिनीअ खे चयो, हाणे हिते न रहिबो, अजमेर हल, उते रहिबो, ज़िंदगीअ जा बाक़ी ॾींहं उते काटबा। कमल जॾहिं पंहिंजो मकान ऐं ॿी जायदाद वग़ैरह विकिणी हमेशह लाइ अजमेर अची थाई को थियो हो, त नारायण खे हिकु दफ़ो न अलाए केतिरा दफ़ा अहिड़ो ख़्यालु आयो हो त कमल अगरि हिते अची रहियो आहे त फ़क़ति संदसि जे करे। ईअं बि वीचारींदो होसि त कमल खां पुछे, पर मुंडा सभु न ॼाताई। हथ जे कंगण खे आसीअ जी कहिड़ी ज़रूरत। ऐं वरी मकान बि वरितो हुअईं त नारायण खां सॾु पंध ते। रोज़ शाम जो पंजे बजे हू नारायण वटि ईंदो हो। कॾहिं नंदिनी बि हूंदी हुई। कुझु ई दूरीअ ते गवर्नमेंट कॉलेज जे पार्क में घुमण लाइ निकिरी वेंदा हुआ। अचण खां अॻु हू फोन कंदो हो। ठीकु पंजे बजे फोन जी घिटी वॼंदी त नारायण खे पुछण जी ज़रूरत न पवंदी हुई। रिसीवर खणंदे ई चवंदो, अचु कमल, मां वेठो आहियां। कॾहिं त नारायण घिटीअ जे मोड़ वटि अची बीहंदो हो, परियां कमल खे ईंदो ॾिसबो हो। लेकिन अॼु शांता खेसि छा ॿुधायो हो? कमल कोन रहियो। एतिरे सोचण ते साह खे छिॿी ते आई, ॼण हिकु अखिन लाइ रुकिजी ते वियो। नारायण जॾहिं कमल जे घर आयो त कमल जे मृतक शरीर भरिसां नंदिनी ऐं ॿियूं ज़ालियूं वेठियूं हुयूं। के मर्द बि हुआ। कमल जूं अखियूं खुलियल हुयूं। नारायण पहिरां धीअ खां बीह कमल ॾांहुं निहारींदो रहियो। यक टक का देर संदसि अखियुनि मां ॿ बूंदू टिपकी आयूं हुयूं। अंदर में कहिड़ा वीचार हुआ जिन जो हिन खे बि पतो न हो। नारायण खे लॻो गोया खेसि ॾिसण जे आस में संदसि अखियूं खुलियल ई रहिजी वियूं हुयूं।
1: तव्हीं हरि हिमथाणीअ खां कहाणी ॿुधी रहिया हुआ। हाणे तव्हीं ॿुधंदा लक्ष्मण दुबे खां कविता पाठ।
2: काव्य पाठ जी शुरूआत हिकड़ी बेत सां करियां थो। शब्दनि जो कमु आहे सॾणु, शब्दनि जो कमु आहे सॾणु, अचणु त तुंहिंजे वस। शब्दनि जो कमु आहे सॾणु, अचणु त तुंहिंजे वस। ख़ामोशी का ॾस तुंहिंजी वाट विसाल जी, ख़ामोशी का ॾस तुंहिंजी वाट विसाल जी।

0: कुछ मिसरा पेश तो करें। जे हुजे हा खेल अखरन जो गजल जोड़े छड़ूं, जे हुजे हा खेल अखरन जो गजल जोड़े छड़ूं, गाल दिल जी आहे चवणी साह तो निकरी वने, गाल दिल जी आहे चवणी साह तो निकरी वने। बिया ब मिसरा, अज मुझे पाछे पिण मुखे साफ चयो, अज मुझे पाछे पिण मुखे साफ चयो, मां तोसा गड हलंदस मगर उजालन में। अज मुझे पाछे पिण मुखे साफ चयो, मां तोसा गड हलंदस मगर उजालन में। एकड़ो शेर मातृ शक्ति के अर्पण तो करया। मुखे न समझ जी जेड़ो तेड़ो, मुखे न समझ जी जेड़ो तेड़ो, मुझे घर में अम्मा भी आए, मुखे न समझ जी जेड़ो तेड़ो, मुझे घर में अम्मा भी आए, मुझे घर में अम्मा भी आए। बमसरा, चंगो थो जो डियो पाण ही विसामी वियो, चंगो थो जो डियो पाण ही विसामी वियो, हवा जे रुख में वरना को अदब हिजाब न हो, चंगो थियो जो डियो पाण ही विसामी वियो, हवा जे रुख में वरना को अदब हिजाब न हो। चार मिसरा, जन चयो जो कुछ चयो बुधनो पयो, जन चयो जो कुछ चयो बुधनो पयो, छा कजे खीसे में इज्जत कान हुई, जन चयो जो कुछ चयो बुधनो पयो, छा कजे खीसे में इज्जत कान हुई। दोस्तों एक वण डिठुम पाड़ा पटियल, दोस्तों एक वण डिठुम पाड़ा पटियल, डिठुम सिंधियन में सिंधियत कान ही, डिठुम सिंधियन में सिंधियत कान ही।
1: अदबी मैगजीन मेहरान में तुम्हें बुधी रहा हुआ लक्ष्मण दुबे खां ही कविता पाठ।
2: मालिक दे त शुक्र कर, न दे त सब्र कर, यार पंहिंजी ज़िंदगीअ में हिननि ॿिनि ॻाल्हियुनि ते अमल कर। अहिड़ी शहाणी लासानी सिंधी क़ौम जे लाइ सिंधी प्रोग्राम आर्तवार, मंगल ऐं विस्पत जे ॾींहुं आकाशवाणी जयपुर अजमेर जे आमिर चैनल तां ॿुधंदा रहो सिंधी प्रोग्राम।
1: हाणे चर्चा करे रहिया आहियूं अॼु जे ॾींहुं ते। 28 जुलाई ते मल्हायो वेंदो आहे विश्व हेपेटाइटिस ॾींहुं। हेपेटाइटिस हिकु लीवर जी बीमारी आहे। लीवर मानव शरीर में सभिनी खां वॾो अंदरूनी अंग आहे ऐं शरीर में केतिरा ई महत्वपूर्ण कार्य कंदो आहे, तॾहिं बि हिन जे स्वास्थ्य जी अक्सर अनदेखी थी वेंदी आहे ऐं उन जे करे केतिरियूं ई बीमारियूं थी वेंदियूं आहिनि। हिन मां हिकड़ी बीमारी आहे हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस यकृत यानी लीवर जी सूजन आहे। ही आमतौर वायरल संक्रमण के कारण थींदी आहे, पर शराब जे दुरुपयोग सां भी ही बीमारी थी वेंदी आहे। हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी आहे ऐं दुनिया भर में केतिरा ही माण्हू हिन सां पीड़ित आहिनि। वक़्त ते इलाज न मिलण जे करे लीवर फेलियर लीवर कैंसर जो भी कारण बणिजी वेंदी आहे। विश्व हेपेटाइटिस ॾींहुं हर साल 28 जुलाई ते हेपेटाइटिस जे प्रति जागरूकता वधाइण लाइ, बीमारीअ जी रोकथाम जे लाइ, परीक्षण ऐं उपचार जे लाइ आवश्यक कदम उठाइण जे बारे में मल्हायो वेंदो आहे। हिन ॾींहुं ते डॉक्टर बारुक ब्लमबर्ग जो जनम ॾींहुं आहे। हिननि हेपेटाइटिस बी जो वायरस जी खोज कई हुई ऐं पहिरियों टीको बि ठाहियो हो। विश्व हेपेटाइटिस ॾींहुं 2026 जो उद्देश्य आहे हेपेटाइटिस जे प्रति ॼाण वधाइण, नियमित जांच खे प्रोत्साहित करण, टीकाकरण खे वधाइण, सभिनी जे लाइ इलाज जी सुविधा सुनिश्चित करण आहे। हेपेटाइटिस ॾींहुं 2026 जो विषय आहे आइए इसे तोड़े। ही वायरल हेपेटाइटिस जे उन्मूलन में बाधा विझण वारी समस्याओं के दूर करण जो आह्वान आहे। ही कार्यक्रम ॼाण वधाईंदो आहे

लाइ लीवर स्वास्थ्य जे संबंधित दाल बोल के सरल बि बणाईंदो आहे। हिन जो लक्ष्य आहे 2030 ताईं वायरल हेपेटाइटिस खे हिकु सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे जे रूप में समाप्त करण। विश्व हेपेटाइटिस ॾींहुं सां गॾोगॾु मल्हायो वेंदो आहे 28 जुलाई ते विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ही ॾींहुं असां सभिनी खे अॼु ऐं अचण वारी पीढ़ियुनि जे लाइ प्राकृतिक जगत जे संरक्षण ऐं सुरक्षा जे प्रति असांजे दायित्व जी यादि ॾियारींदो आहे। हिन ॾींहुं जो उद्देश्य ऐं महत्व आहे प्राकृतिक संसाधननि जी सुरक्षा, पाणी, हवा, मिट्टी, ऊर्जा जहिड़े प्राकृतिक संसाधननि खे बचाइण, लुप्त थियण वारे वणनि ऐं जानवरनि जी प्रजातियुनि जो संरक्षण करण, हिकु सुठे ऐं स्वस्थ समाज जे लाइ पर्यावरण खे सुरक्षित ऐं साओ रखण। हिन ॾींहुं जो उद्देश्य संसार जे हर माण्हू जे लाइ आहे, हू पंहिंजी तरफ़ां प्रकृति जी रक्षा कीअं थो करे सघे। वधीक खां वधीक पेड़ लॻाए करे, प्लास्टिक जो कचरो घटि करे, पाणी ऐं बिजलीअ जो सदुपयोग करे, प्रदूषण खे घटि करे, असां पंहिंजे ऐं पंहिंजे धरतीअ जी रक्षा करे था सघूं। त संसार जे हर हिकु वासिंदे जो ई लक्ष्य हुजणु खपे कि असांखे पंहिंजी धरतीअ खे बचाइणो आहे, तॾहिं असां बि बची सघंदासीं। हिन सां गॾु ई असांजो अॼु जो आदमी मैगज़ीन में रहण सां गॾोगॾु सिंधी प्रोग्राम जो वक़्त बि थी रहियो आहे पूरो। ईंदड़ विस्पत ते वरी हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं सीमा हिरानीअ खे ॾींदा इजाज़त। नमस्कार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 12:40 हुए हैं, अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: ये गीत आर्यन फिल्म से था, आवाजें थी सोनू निगम और श्रेया घोषाल की।
1: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
2: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
1: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
2: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
1: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
2: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
2: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
2: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

शान और सुनिधि चौहान की आवाज थी। ये फिल्म थी तारा रंपम। अब हम आपको सुनवा रहे हैं गुनाह फिल्म का ये गीत। स्वर है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो के।

0: निगम श्रेया घोषाल के गाए टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का जयपुर समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में नारेबाजी की। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वीं राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। अध्यक्ष ने सरकार और विपक्ष से सदन सुचारू रूप से चलाने तथा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने की अपील की। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर विरोध के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज अपने आवास पर आयोजित युवाओं के साथ संवाद सपनों की उड़ान कार्यक्रम में युवाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा देश और प्रदेश का भविष्य हैं तथा उनके आगे बढ़ने से राज्य का विकास होगा। उन्होंने युवाओं से सरकारी नौकरियों के साथ साथ स्टार्टअप्स और स्वरोजगार के अवसरों को भी अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानी दिवस से पहले प्रदेश और जिला स्तर पर कला और संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में नीट परीक्षा में देश भर में तीसरा स्थान हासिल करने वाले राजस्थान के छात्र उपलक्ष्य गोयल ने अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक मामलों पर कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। कार्यक्रम में संसदीय कार्य मंत्री

0: गाराम पटेल सहित प्रदेश भर के युवा मौजूद रहे। जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान में अब 59% से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से जल की सुविधा मिल रही है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार प्रदेश के 1,07,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों में से लगभग 63,00,000 परिवारों तक नल से जलापूर्ति हो रही है। जल शक्ति मंत्रालय मंत्री सीआर पाटिल ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। देश भर में जल जीवन मिशन के तहत अब 15,89,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है, जबकि मिशन शुरू होने के समय ये संख्या केवल 3,23,00,000 थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा एक दो जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश आबू रोड और राशमी में दर्ज की गई। इसके अलावा सवाईमाधोपुर, हिंडौन, माउंट आबू, गंगरार, देवदर और रूपबास में 5 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पशुपालन विभाग ने बारिश के मौसम के दौरान गौशालाओं में मौसमी बीमारी और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। सवाईमाधोपुर के संयुक्त निदेशक डॉ. राजीव गर्ग ने गौशाला संचालकों से जैव सुरक्षा उपायों की पालना सुनिश्चित करने, गौवंश का समय पर टीकाकरण करने और पशुओं को खुले में चरने के लिए नहीं छोड़ने को कहा है। उन्होंने संक्रमण की आशंका वाले क्षेत्रों की नियमित निगरानी करने और गौशालाओं में आने वाले नए गौवंश को निर्धारित अवधि तक क्वारंटीन में रखने के निर्देश भी दिए हैं। कोटा संभाग के सरकारी और निजी विद्यालयों में शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे पर विद्यार्थियों को अंगदान, नेत्रदान, देहदान और स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस पहल के साथ कोटा ऐसा कार्यक्रम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला संभाग बन गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ के विद्यालयों में ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन। प्रस्तुत कर रही है संतोष चारण और सुरभि बोहरा।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: निरोगी काया साची माया, सुखरो पहलो है आधार। योग प्राणायाम अपनावा तो खुशहाल रेवे घर बार।
3: बिल्कुल, आज अपा मैं ना बात करेला एक एड़े विषय री जिन्ने अपनावन सु तन माय ताकत मन माय

0: शांती और जीवन में सगला सुख आए जावे। जीवन में उमंग भरण वाली प्रक्रिया है योग।
1: बिल्कुल, और बिना योग और प्राणायाम आपने शरीर सारू संजीवनी बूटी रो काम करिया करे है। आपने अठे तो सुरभी बेन जगचावी एक कहावत भी है के पहलो सुख निरोगी काया। और जिन रो तन मन निरोग रेवेला तो उन रो हर दिन त्योहार लखावेला, क्योंकि सांस चालेला तो ही आस चालेला। जब प्राणायाम रे सागे आपा आपारी सांसा ने साध लेवा तो मन रो कोला हल भी होले होले होले शांत वे जावे है।
0: बिल्कुल बेना, देखो आज रो बकत जिको है वो भाग दौड़ सु भरियोड़ो है। चिंता, थकान और तनाव ए सगला अपारे माथे में एक बोझ बन जावे है। पर इंडी व्यस्त दिनचर्या मानसू घड़ी एक बकत जे अपा योग प्राणायाम सारू निकाला तो तन मन दोनों हल्का हो जावे। योग रो मतलब खाली आसन लगानो को नहीं हुए, बल्कि इरो मतलब हुए आपरी आत्मा सु जुड़नो, मन ने समझनो और सांसा सागे दोस्ती करनो। और बहना थोड़ो बकत तो आपरे वास्ते निकालनो ही चीज है नी।
1: बिल्कुल, एकदम साफ साची बात है सुरभि बहन। और बिना आपना ऋषि मुनि आ अनमोल विद्या आपने अनेकों वर्षा पहला ही दे दी ही। उवे इंद्रा गुण और महत्व घने मान जानता हा कि योग प्राणायाम खाली कसरत नहीं है, बल्कि जीवन जीने री साची कला है। अब जो देखा हाँ कि जो योग रा तो घने ही प्रकार है, जो ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, वज्रासन, त्रिकोणासन, तो ए इन भांतरा योग करण सु शरीर में लचीलोपन तो आवे ही है। सागे सागे आपा ने जो शरीर है उनमें मजबूती भी मिलिया करे है।
0: हाँ, और बेना जद प्राणायाम री बाता करा तो अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी, उज्जाई और नाड़ी शोधन ए घणा ही महताऊ और प्रसिद्ध प्राणायाम है। अनुलोम विलोम सु सांसा संतुलित रहवे, मन में शांति हुए और तनाव कम हुए। भ्रामरी प्राणायाम सु बेना मन री शांति रे सागे सागे एकाग्रता में भी वृद्धि हुई है, जिकी अपारे विद्यार्थी लोग है बियाने वास्ते बहुत जरूरी हुए कि वे भ्रामरी प्राणायाम करे, बियारी जिकी पढ़ाई में एकाग्रता है बा आगे सु आगे बढ़ती जाए। और कहवे की जिका सांसा पर काबू पाले, जिका अपने माथे पर काबू पाले, बे कोई भी हालात माथे विचलित को नहीं रेवे है।
1: बिल्कुल, योग प्राणायाम सिर्फ शरीर तय ही सीमित नहीं है, बल्कि इनसु मधुमेह, उक्त रक्तचाप, मोटापो, तनाव और अनिंद्रा जड़ी समस्या माए भी अपने घड़ो ही फायदो मिलिया करे है। इन रो नियमित अभ्यास करने से आप देखा ला कि आपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनन रहे साथे साथे आपारी छोटी मोटी बीमारी से भी आप कई हद तक राहत महसूस कर सका। हाँ, तो सब एना आज सु ही आप एक साचो संकल्प लेवा कि दिन में घड़ी पखत आपने सारू निकाला, अपने स्वास्थ्य सारू निकाला और योग प्राणायाम करा और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनावा। तो स्वास्थ्य दीठ सु तो बिना आ ही घनी ही अच्छी चर्चा। और अबे हाला फेरू मनोरंजन सामी और सुनाए काचो सो गीत रडलो।

नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के

0: एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।

0: बिना हर साल 28 जुलाई ने पूरी दुनिया में विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनायो जावे है। ओ दिन आपने याद दिलावे है कि आपनी धरती, जल, जंगल, हवा और जीव जंतु रो यानी कि पूरी प्रकृति रो बचाव कितरो जरूरी है। मरुधरा राजस्थान री भी आवा बात करा तो अठेरी संस्कृति में प्रकृति री पूजा री परंपरा सदिया सु व्यती आ रही है। आपारो समाज हमेशा सु ही जीव दया और रूख डाळारी सुरक्षा ने आपरी जिम्मेदारी माने हैं।
1: बिल्कुल, प्रकृति आपा ने जीवन देवे, सांस लेवन खातर हवा, पीवन खातर पानी और खावन खातर अनाज, आ सब कुदरत री ही देन है। अगर प्रकृति सुरक्षित रहेली तो ही मानव समाज, मानव सभ्यता रो भविष्य सुरक्षित रहेलो, पर्यावरण में संतुलन बनियो रहे। एनी खातिर अपने चीजें कि जंगलारी सुरक्षा और जीव जंतुओं रो बचाव घणो जरूरी है। अपने राजस्थान में तो कवि और सियाणा लोग हमेशा सु कहता आया है, सीस कटे पर रूख बचे तो भी सस्तो जान।
0: और आज रो इंसान आगे बढ़न री दौड़ में बिना प्रकृति ने नुकसान कितरो पहुंचारियो बुआपा देखा यहाँ। जंगलारी कटाई, रूख डाणारी कटाई तो इनसु पशु और पंछियां जिका आशा न है उन माथे संकट आवने टूक्यो है। और देखा यहाँ की बेमौसम गर्मी और बरसात अभी आजकल बढ़न लगी है, और साथे साथे प्लास्टिक सू भी अपनी माटी और पानी जिका है बे भी विषैला वहन लग गया है। नदियाँ, जोहर और पानी रे व्यर्थ बहाव सू भी पानी रो संकट और भी गेरो वेतो जा रियो है। सुरभि बेन, जे अपा अबार भी नहीं चेतिया तो आवन वाली पीढ़ी रे खातर सांस लेनो भी औखो वे जावेला।
1: प्रकृति ने बचावन खातर अपन सभा ने सबसे वो पहला नाना नाना कदम जीका हुआ है बे उठावना पड़ेला। हर मानव ने अपने जीवन में कम से कम एक पौधो लगावनो चाहिए और उन्हें बड़ा करण री जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जिया खेजड़ी, रोईडो, नीम और बरगद जिता पेड़ से ज्यादा लगावना। पानी री एक एक बूंद कीमती है। बारिश रे पानी ने टांका और बावड़िया में भेड़ो करनो वह अपनी जिम्मेदारी हुए और पुरानी परंपरा ने वापस अपनावनो पड़ेलो, क्योंकि बेने जल है तो कल है। जल पर ही अपा जी का आगे रो भविष्य है, अपने टाबरा रो जी को भविष्य बो टिक्यो है। मैंने अपारी आदत हुए कि अपा नल ने खुला छोड़ काम करने में लाग जावा, बाजार जावा, कोई भी सामान ले रहा तो प्लास्टिक री थैली रा प्रयोग करा। इसी जगह पर करनो चीजें कि पानी रो उपयोग जी को है वो कम में करा और सागे सागे कपड़ा रा थेला जी का हुए नहीं बियोने प्रयोग में लेवना चीजे। तो बेजुबान जीवा और पक्षियों खातर अपने पानी रा मिट्टी रा बर्तन भी भर रखना चीजे, उनारा संरक्षण करने में मदद करनी चाहिए। पानी री बूंद बूंद बचावला, मरुधरा ने हरी भरी बनावला।
0: बिल्कुल, और बिना विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस सिर्फ एक दिन मनाउडो त्योहार ही कोनी बल्कि ओ रोज री आदत बनाउडो एक संकल्प है। आपनी मरुधरा ने हरू बरो बनावन सारू और पर्यावरण ने बचावन सारू आपा सगनारो ओ पहलो धर्म बने कि आपा प्रकृति ने बचावा, सचेत रेवा और इनमें किणी भांति जी की गंदगी वे बा नहीं फैलावा।
1: बिल्कुल, धरती माता करे पुकार, रूख लगाओ बारंबार, कुदरत री मत करो कटाई, इन सब में है आपरी भलाई। मैंने यारे सागे सागे आज जो एक और दिवस है वो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। मैंने हर साल 28 जुलाई ने पूरी दुनिया में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनायो जावे। आ दिन हेपेटाइटिस रोगारे बारे में लोगों ने जागरूक करण रो और इनसु बचाव खातिर तरीका बतावन खातिर तय करियो गयो है। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से माने जिके लीवर है बीरी बीमारी मानी जावे, जिनसु लीवर माए सूजन आए जावे और सही बखत पर इलाज नहीं होवे तो बीमारी गंभीर रूप ले सके।
0: विश्व हेपेटाइटिस दिवस सगला सु पहला 19 मई 2008 में अंतर्राष्ट्रीय हेपेटाइटिस अलायंस द्वारा मनाई जो हो, पण विश्व स्वास्थ्य संगठन इनने आधिकारिक रूप से मान्यता दी ही और इनकी तारीख बदलने 28 जुलाई कर दी थी ही। अभी 2011 सु हर साल पूरी दुनिया में 28 जुलाई नहीं ओ मनायो जावे है। बिना अमरीकी वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग हेपेटाइटिस बी रे वायरस री खोज करी ही। उवे ना सिर्फ वायरस री खोज करी ही बल्कि इनसु बचाव खातर टीका जांच री तकनीक भी विकसित करी ही। उनारो जन्म 28 जुलाई 1925 ने वे हो और इन खातर 28 जुलाई ने ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस रूप में आपा मनावा हां।
1: हेपेटाइटिस लीवर री गंभीर बीमारी है। आ बीमारी मुख्य रूप से 5 भांतरी हुए, हेपेटाइटिस ए, ई और दूषित पानी और खाने सु फैले, हेपेटाइटिस बी, सी और डी जी की है बा

0: दूषित खून एक ही सुई रो दूजे माथे इस्तेमाल करण सु या बीमारी सु पीड़ित मनक सु फैले, इनमें बी और सी घनी खतरनाक मानी जावे। ई बीमारी सु बचाव रा उपाय खातर थोड़ी सावधानी राखनी घनी जरूरी है। हेपेटाइटिस ए और बी सु बचाव खातर टीका भी उपलब्ध है। टाबरा रा और बड़ा ने अपने इस वक्त निकालनो चीजे और यहाँ टीका जी का है बे अवश्य रूप सु लगानो चीजे।
1: बिल्कुल, और इनके साथे साथे बिना हमेशा साफ और उबलोडो पानी ही आपने पीनो चाहिए और बिना ढकेड़ो या गंदो खाणो खावण सु आपने बचनो चाहिए। डॉक्टर सु सुई लगावता वक्त आपने इन बात रो विशेष ध्यान रखनो चाहिए कि उवे जी की सिरिंज है यानी कि सुई है बा उवे एकदम नई हुए, और खून चढ़ावता वक्त पूरी जांच करावनी जरूरी है। दूजा रो टूथब्रश यानी कोलगेट करण वालो ब्रश, रेजर या सुई कदी भी आपने काम में नहीं लेनी चाहिए। बिना लीवर आपने शरीर एक घणो ही महत्व अंग है। इनने निरोग रखने खातर जागरूकता ही सगला सु बड़ो बचाव है। जे आपनो शरीर में कोई भी इन भातरो लक्षण दिखे तो आपने तुरंत ही आगती पागती सफा खाने जाए और डॉक्टर या आपने सलाह लेनी चाहिए। तो सब बिना स्वास्थ्य दिशसू आ तो ही गणी ही आछी चर्चा, और अबे हालाण सुना एक मीठो सु गीत।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: संतोष बहन, आज अपा बहना ने एडी योजना री जानकारी देनी चीजे जी की उनारी नानी बेटी रे भविष्य सारू अच्छी सिद्ध हुए। जिन योजना सो जुड़े ने अपना माई जी का है वे अपनी बेटी रे भविष्य साथ है बीरी जी की बचत है वे कर सके और एक आत्मविश्वास रो फल अपारे भीतर पनप सके।
3: सुरभि बहन, आपा जरूर बात कराला और मैं थारो जो इशारो किन योजना माते है और भी भली भांति समझ गई हूँ और अब दरकार है इन सारू अपनी बेना ने समझाणो और इन योजना सारू अवगत कराणो। तो बेना, उन योजना रो नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिनसु जुड़ने थे भी थारी लाडली रा सपना ने पूरा कर सकोला और मन में आत्मविश्वास भर सकोला।
2: बिल्कुल, सुकन्या समृद्धि योजना काई है और इंद्रा लाभ काई है ए सगली चर्चा अपन कर सा, पर पहला जी की बेना ने अपने एक बात बतानी मैं चाहूं जी की काल रही है, एक साची बात आपसु मैं करना चाहूं कि अर इन कणे सी जुड़ियोड़ी भी है।
3: अच्छा,
2: काल सिंजिया ने जब मैं बाजार जाऊंती जने पड़ियो साली म्हारी जी की भाभी है प्यांसु भेंट हुई, तो उनारे सागे उनारी 5-6 साल री नानी सी लाडली जी की म्हारी भी लाडली है गौरी ने मैं देखियो और हमारी मेरी हाथा पर नजर गई। नाने नाने हाथा में रंग बिरंगी चूड़ियाँ, लाल घघरी और उछलती कूदती एक हिरणी जैसी चाल बिरी ही, और सविता भाभी रे चेहरे माथे एक प्यारी सी मुस्कान ही और हाथ में एक ही डायरी। मैं सविता भाभी सु पूछियो, आज माँ बेटी घने कोड सु कठे सु आ रही है? तो भाभी कहो कि कोड और हरक तो आज घणो ही है, क्योंकि आज मैं गौरी रो नाम रो एक सुकन्या समृद्धि में खातों खुलवाया है और हर साल महीने में 1,000 बीमे जमा कराना है।
3: सुरभि बहन, देखो कितनी अच्छी बात है और वास्तव में एक हरक और कोड उड़ाने मन में वेणु वास्तव में वाजिब है। देखो कि एक माँ सारू कोड भरण वाली बात है कि हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कराएने वे आपरी लाडली सारू जमा पूंजी कर सके है। तो देखियो बेना, आ सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार का निसुन चलाई जोड़ी एक बचत योजना है, जकी खास के आपरी बालिका रे उज्जवल भविष्य खातर चलाई जोड़ी है। इन योजना माए 10 बरस मायरी बालिका रे नाम आपा खातों खुला सका हाँ। कम सु कम इनमें 250 रुपया तई आपा इनमें खातों खुला वो खातों शुरू कर सका हाँ, और इन सु ज्यादा भी आपारी कोई राशि हुए तो आपानी मर्जी पर है, यानी 250 सु स्टार्ट और आपा इन रे अधिकापा कितनी भी राख सका हाँ। और लाडली बाईसा जदे 18 वर्षारा व्यज आवे या केवा की ओ खातो खुलने तारीख सु लेर 21 वर्ष बाद भी ओ खातो परिपक्व व्यज आवे है तो आपा उवे पिसा उठा सका हाँ। और इन रे साथ ही एक शर्त और है कि जे लाडली बाईसा अपना 18 वर्ष व्यज आवे और आपने पिसा री जरूरत पड़ जावे तो भी आपा ए पिसा उठा सका हाँ। और इनमें एक खास बात और है सुरभि बहन कि इनमें चक्रवर्ती ब्याज मिलिया करे है।
2: बिल्कुल बेना, लाडली रे 18 वर्ष पूर्ण होने रे बाद उच्च शिक्षा सारू नियम अनुसार

अनुसार खाते में उपलब्ध राशि रोक अधिकतम 50% अपन निकाल सका हाँ। इनमें ब्याज दर रो भी प्रावधान है जी की अपनी बहन बताई बात की चक्रवृद्धि ब्याज रो प्रावधान है तो बीरो प्रावधान भी है और भविष्य में सरकार इन रे दर रे माथे बकत बकत पर समीक्षा भी करे और ये बहुत बढ़िया लाभ हुए अगर आगे इनमें बदलाव कर सके है तो सरकार बीरी सूचना जी की है बा पहले ही दे दिया करे तो सुकन्या समृद्धि योजना में केवल 250 रुपये सालाना जमा कराना पड़े आपा शुरुआत कर सका जबकि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये जमा कर सका तो बेना आपा चाहवा कि आपकी लाडली जी की है बा पढ़ लिख रहे आपका सपना पूरा कर सके तो इन सुकन्या समृद्धि योजना में भाग लेवो और लाडली रो खातों भी खुलवाओ और लाभ लेवो तो इन चर्चा रे पचे चाला फेरू अपना मनोरंजन सामी और सुनाला ओ मीठू सु गीत।

बेना आज अपन बातें करा ऐडी छोटी छोटी बातें जिकी आपारी रसोई में बहुत काम आ सके और घनी महताऊ बातें जिकारा प्रयोग अपा कर सका। बेना आटा गूंदते वक्त हल्के गुनगुने पानी या दूध काम में लेवनो। आटो गूंदते समय आको जी आटो जिको है वो ढक कर राखनो चीजे। रोटी एकदम नरम बनेली। अगर ग्रेवी रा या दाल में नमक बढ़ जावे तो अपन ये करना चीजे कि आलू है कच्चा आलू जिका हुए है बे बीमे काटर डाल देना चीजे और आटे री छोटी छोटी गोलियां बना बीमे घाल दो। पछे बिरने उबलन दो और जब जीमन रो टाइम हुए जीमन रो वक्त हुए बे टाइम अपने बियाने निकाल देना चीजे। तो चावल उबालते समय भी अपने ध्यान रखना चीजे कि पानी में कुछ बूंदा जिकी है बे नींबू रे रस री डाल देनी चीजे। चावल आपस में चिपके कोनी और रंग भी बीरो सुथरो आवे। आटो गूंदते वक्त बिनमे अगर अपा एक सूजी और छोटो सो तेल रो चम्मच डाल दा घी रो चम्मच डाल दा तो पूरी और परांठा जिका है पे घना कुरकुरा बनेला। बेना इरे सागे सागे अपा अगर ध्यान देवा तो कि पंचकुटारी जिके अपारे राजस्थान री बहुत अच्छी सब्जी मानी जावे पंचकुटार कैर सांगरी याने सुनने ही आपरे मुंडे में कहीं पानी आवन लग जाए। तो इन्हें याने और अधिक स्वादिष्ट बनावट खातर शाक बनावता समय उनमें थोड़ा

सो अमचूर और थोड़ी सी गुड़ री डली बिने अगर घाल देवा तो शाक रो स्वाद घणो चोखो हो जावे। मिर्च रा डंठल तोड़ने राखा आपा जिका परी आदत हुए कि मिर्ची ने आपा तोड़ना तो बिया ने एयरटाइट डिब्बे में ट्यूशी पेपर लगाने चीजें इरे सगे बेना लेट चला आपने गीत संगीत री दुनिया में सुने लो ओ गीतर लो।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन, प्रस्तुत कर रही थी संतोष चारण और सुरभि बहरा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज। दिन की 2 बजने को है, अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे मिड डे न्यूज और उसके बाद दोपहर समाचार।

0: Center Shimla has identified the next 4 days as highly sensitive. The Meteorological Center has also issued a flash flood warning for the next 24 hours for the districts of Chamba, Kangra, Kullu, Mandi, Shimla, Sirmaur and Solan. A report.
1: The Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall today in 5 districts, Chamba, Kangra, Mandi, Shimla and Sirmaur. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for Una, Bilaspur, Hamirpur, Solan and Kullu districts. In view of the forecast of heavy rainfall, all educational institutions in the Paonta Sahab subdivision of Sirmaur district have been ordered to remain closed today. According to the State Emergency Operations Center, 108 roads across the state remain blocked due to landslides and heavy rain. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: Meanwhile, in Uttarakhand, the Char Dham Yatra routes have been blocked at several locations due to landslides. Keeping the safety of pilgrims in mind, the Char Dham Yatra has been suspended till tomorrow. Continuous rainfall has caused the water level of major rivers in the state to rise. The state government is closely monitoring the situation and disaster response and rescue teams have been kept on alert in vulnerable areas. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court directs the release of student protesters below 18 years and those having no criminal record. Both houses of parliament adjourned soon after assembling amid ruckus. Lok Sabha scheduled to take up anti-paper leak amendment bill today. Air India launches Easy Connect hub and spoke model at Amritsar Airport, connecting Punjab with 27 global destinations. 16 Maoists, including 6 top commanders, surrender before security forces in Jharkhand. Government introduces system of registering E0 FIRs in cybercrime cases across 18 states and union territories. 7.1 magnitude earthquake hits southern Japan, tsunami warning issued. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीच मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित

0: कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: This was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
0: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
3: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
4: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
5: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए

0: के 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
2: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
3: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए 2 महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
4: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण 86 इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसावांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश

0: का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

ये गीत प्रहर फिल्म से था, आवाज थी शोभा गुरुटू की। लीजिए अब सुनिए पूर्ण चंद वंडाली और साथियों की आवाजों में तनु वेड्स मनु का गीत।

तनु वेड्स वनु का गीत। फिल्म संगीत आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से, और आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज़। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है पापा कहते हैं, आवाज उदित नारायण की।

पापा कहते हैं, इस फिल्म का भी आपने ये गीत सुना। आवाज थी उदित नारायण की। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

महेंद्र कपूर और साथियों को आप सुन रहे थे, ये फिल्म थी काला पत्थर। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत।

आशा भोसले महेंद्र कपूर के गाए बगावत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 215.5 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। 3 बजे हैं, हमारी आज की पहली सभा अब संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी। FM बैंड 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करता है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज एफआईआर की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे को छिपाने और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को भी छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे दिखावटी चुनावी प्रक्रिया बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति पद पर 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 वर्षों में समावेशी विकास के साथ साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आत्मगौरव की भावना पुनर्जीवित हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का प्राथमिक उद्देश्य पूरे देश में भारतीयता की भावना को और मजबूत करना है। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। चीन के हांगझोऊ में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026

0: 26 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मेंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युवा वाणी।

0: सपनों को उड़ान देने, नए विचारों को पहचान देने और हर युवा की आवाज को मंच देने वाले कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त सुमन।
1: मैं हूं आपकी दोस्त दिशा।
0: दोस्तों, अगले कुछ मिनटों तक हम बात करेंगे उस अनमोल धरोहर की, जिसके बिना आधुनिक जीवन के बारे में सोचना भी हमें इम्पॉसिबल लगता है। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है, हम उसी का सबसे अधिक अपव्यय भी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सुमन, देखो ना कि हम अक्सर सोचते हैं कि अगर घर की एक दो लाइट चलती रह गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाहियां मिलकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है। ऊर्जा की हर एक इकाई हमारे भविष्य से जुड़ी हुई है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, ऊर्जा केवल बिजली तक ही सीमित नहीं है, इसमें पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा जैसे अनेक सोर्सेज इंक्लूडेड है। इसमें से कई संसाधन सीमित है, यदि हम आज उन्हें सोच समझकर उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।
1: सुमन, क्या तुम जानती हो कि भारत की ये जो बढ़ती जनसंख्या और तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण के कारण ऊर्जा की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर ऊर्जा का संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है।
0: और दोस्तों, सबसे जरूरी ये है कि एनर्जी बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस हमें हमारी आदतों में सुधार लाना होगा। जैसे कि अगर हमें जरूरत नहीं है, हम कमरे से बाहर जा रहे हैं तो लाइट पंखा बंद करके निकले, दिन में हम सौर ऊर्जा का यूज ले, जैसे कि हम नेचुरल लाइट का यूज ले सकते हैं।
1: और आजकल एलईडी बल्ब्स का भी उपयोग बिजली की खपत को काफी कम कर देता है। पुराने बल्ब की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करते हैं और अधिक समय तक चलते हैं। ये छोटी छोटी आदतें बिजली के बिल के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं।
0: सही कहा तुमने, इसी तरह यदि हम एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करें तो बिजली की काफी बचत की जा सकती है। दोस्तों, खरीदारी करते समय हमेशा स्टार रेटिंग वाले डिवाइसेस को प्रायोरिटी दे।
1: और परिवहन की अगर बात करें तो दोस्तों, छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल का उपयोग करना न केवल ऊर्जा बचाता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी तो लाभदायक है। यदि संभव हो तो आप सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कीजिए। और आज पूरी दुनिया नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ रही है और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे स्रोत न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल है
0: बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन है। यदि घरों में, संस्थानों में सोलर पैनल लगाए जाए तो बिजली की बड़ी मात्रा में बचत की जा सकती है।
1: सुमन, कई बार हम सोचते हैं कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, लेकिन परिवर्तन हमेशा एक व्यक्ति से ही तो शुरू होता है।
0: बिल्कुल।
1: जब एक घर ऊर्जा बचाएगा तो एक मोहल्ला प्रेरित होगा, और देखो कि अगर एक मोहल्ला प्रेरित होगा तो पूरा शहर बदल सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, एनर्जी का वेस्ट इकोनॉमिकली वेस्ट तो है ही, उसके साथ साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म पहुंचाता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो फॉसिल फ्यूल्स का वेस्ट होगा और उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होगा तो उससे क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है।
1: और दोस्तों, यही कारण है कि ऊर्जा बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी नागरिकों का कर्तव्य भी है। बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा संरक्षण की आदतें सिखानी चाहिए ताकि वे

0: समझदार नागरिक बन सके।
1: और इसके लिए स्कूल्स में इन टॉपिक्स पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कंपटीशन होने चाहिए पोस्टर के, जिससे बच्चे सीखेंगे और अपने परिवार को भी प्रेरित करेंगे।
0: दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनको पूरी रात चार्जिंग पर छोड़ देना भी ऊर्जा की बर्बादी है। आवश्यकता पूरी होते ही उन्हें चार्जर से अलग कर देना चाहिए।
1: और दोस्तों आज के टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट, हम लगभग एयर कंडीशनर का टेम्परेचर है वो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं रखते, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है और उसके साथ साथ हमारी बॉडी को भी हार्म होता है।
0: बिल्कुल, इसलिए श्रोताओं याद रखिए, ऊर्जा बचाने का अर्थ केवल पैसा बचाना नहीं है बल्कि प्रकृति की रक्षा करना है, प्रदूषण कम करना है और हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको सुरक्षित भविष्य देना भी है।
1: दोस्तों बातों का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत। आप गीत का आनंद लीजिए, हम जल्द ही लौटेंगे।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सुरिक ने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे,
5: RBI कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों, अब वक्त है आपके अपने पसंदीदा सेगमेंट यानी कि क्विज टाइम का।
3: तो दोस्तों, जहां हम आपसे पूछेंगे दो सवाल और कार्यक्रम के अंत में देंगे उन्हीं सवालों के जवाब। जहां हमारा पहला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वोट रूपांतरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है?
2: और हमारा दूसरा सवाल है आपसे, केंद्रीय रिजर्व बल यानी कि CRPF ने 27 जुलाई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है?
3: तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब खोजने का प्रयत्न कीजिए। वैसे आपने एक बात लाइन सुनी होगी, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। लेकिन कई बार कुछ बीमारियां दोस्तों ऐसी होती है जो बिना किसी स्पष्ट संकेत के धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाती रहती है। ऐसी ही एक बीमारी है हेपेटाइटिस।
2: जी हाँ, हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना, समय पर टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट के महत्व को समझाना।
3: सुमन, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हेपेटाइटिस आखिर है क्या?
2: यह हमारे लीवर यानी कि यकृत में होने वाली सूजन को अधिकतर वायरस का कारण बना देता है। यदि समय रहते इसकी पहचान और इलाज न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जागरूकता और सावधानी से इसको काफी हद तक हम कम कर सकते हैं।
3: बिल्कुल दोस्तों, सुरक्षित जीवन शैली अपनाकर, साफ पानी और स्वच्छ भोजन का सेवन करके, केवल सुरक्षित सुई का उपयोग करना तथा समय पर टीकाकरण करवाना इस बीमारी से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: सुमन, तुम पता है कि आज सुबह जब मैं पार्क गई थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे दिमाग का सारा ये जो स्ट्रेस है ना, एक झटके में गायब हो गया है।
2: सही में, पत्तियों की सरसराहट, चिड़ियों की चहचहाट और वो तेज दरार हवा, ताजी फ्रेश। सच बताऊं तो शहर की इस भाग दौड़ में हम भूल ही गए कि प्रकृति के पास बैठने का असली मजा क्या होता है।
1: हम दिन भर स्क्रीन में डूबे रहते हैं।

0: ये ट्रैफिक का शोर सुनते हैं, और जब कभी ऐसे 10 मिनट पेड़ पौधों के बीच बिताते हैं, तब समझ आता है कि हमारी असली रिचार्जिंग तो यही होती है।
1: और जानती हो तुम, आज जब हम यहाँ बैठकर इस प्रकृति को सुबह महसूस कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि आज कौन सा खास दिन है। आज 28 जुलाई विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे।
0: अरे वाह, मतलब आज तो नेचर का ऑफिशियल बर्थडे जैसा है ना।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सच कहूँ सुमन, जब भी कोई संरक्षण या कंजर्वेशन जैसे भारी भरकम शब्द बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे दोस्त बहुत गंभीर हो जाते होंगे। उन्हें ऐसा लगता होगा जैसे कोई क्लास चलने वाली हो।
1: तुमने एकदम सही कहा है। लोगों को लगता है कि प्रकृति बचाने के लिए जंगलों में जाना पड़ेगा या कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, जबकि सच यह है प्रकृति की रक्षा करना उतना ही आसान है जितना रोज सुबह उठकर अपने घर की सफाई करना।
0: अच्छा, वो कैसे, जरा मुझे भी बताओ।
1: सिंपल है, एक बात बताओ, जब हम छोटे थे तो बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में नदी के किनारे या गांव जाते थे दादा दादी के पास, उस वक्त हमें कैसा लगता था हवा, वो पानी।
0: बिल्कुल, तब तो ये जो नदियां है ना, कितनी साफ दिखाई देती थी, और रात को जो आसमान में ढेरों सारे तारे दिखाई देते थे। अब तो देखो ना कि शहर में तारे देखना भी एक टास्क हो गया, प्रदूषण की वजह से कुछ दिखता ही नहीं है।
1: बस यही तो बात है, हमने तरक्की तो बहुत कर ली, बड़ी बड़ी लोगों ने इमारतें बना ली, तेज गाड़ियां आ गई, लेकिन इस चक्कर में हमने उस हवा, पानी, जमीन को नुकसान पहुंचा दिया जो हमें जिंदा रखते हैं। प्रकृति हमें कुछ बड़ा नहीं, हमसे कुछ बड़ा नहीं मांग रही, बस थोड़ा सा सम्मान और उसकी देखभाल।
0: बात तो सच है सुमन, लेकिन एक आम इंसान जो सुबह कॉलेज या ऑफिस जाता है, शाम को थका हारा घर आता है, वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकता है?
1: बहुत कुछ कर सकता है। शुरुआत ऐसे करेंगे हमारी छोटी छोटी आदतों से, जैसे पानी की बर्बादी को रोकना, नल को खुला बेवजह न छोड़ना, और बिजली बचाना। अगर हम मार्केट जा रहे हैं तो सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहना, मार्केट जाते वक्त अपना घर से बैग साथ लेके जाए।
0: लेकिन प्लास्टिक की बात से याद आया कि देखो सुमन, अगर हम सब घर से सिर्फ एक कपड़े का थैला ले जाना शुरू कर दें, तो हर दिन लाखों प्लास्टिक बैग कचरे में जाने से बच सकते हैं।
1: सही कह रही हो तुम, और सिर्फ प्लास्टिक ही क्यों, खाना बर्बाद करना प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। सोचो, जो अनाज हमारी थाली में आता है, उसे उगाने में कितना पानी, कितनी मिट्टी और किसान की मेहनत कैसे लगती है। जब हम खाना फेंकते हैं तो हम वो सारे संसाधन भी बर्बाद कर रहे हैं उसके साथ।
0: ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मतलब संरक्षण का मतलब सिर्फ पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जो चीजें हमारे पास हैं, उनका सही और समझदारी से इस्तेमाल करना भी है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और यही बात पेड़ लगाने की, तो पेड़ लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमारे पास थोड़ा बगीचा नहीं है, तो हम अपने गमलों में, बालकनी में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। तुलसी, एलोवेरा, मनी प्लांट, ये सब हमारी हवा को साफ करते हैं।
0: और जब हम किसी पौधे को रोज पानी देते हैं, उसे बड़ा होते देखते हैं, तो दोस्तों उससे एक अलग ही लगाव हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे घर का कोई नया सदस्य हो।
1: सोचिए दोस्तों एक बार, अगर नदियां साफ होगी, हवा शुद्ध होगी और चारों तरफ हरियाली होगी, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसा स्वस्थ वातावरण देखेगी।
0: बिल्कुल, जहां हर पंछी बिना किसी प्रदूषण के बेफिक्र होकर उड़ सके इस खुले आसमान में।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपसे ऐसे एक संगठन के बारे में जो केवल वर्दी पहनना ही नहीं सिखाता बल्कि जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है।
1: सुमन, क्या तुम जानते हो कि ऐसा एक संगठन है एनसीसी, यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर। दोस्तों, आज के समय में एनसीसी युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, पर इसके अलावा हमारे दोस्तों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर एनसीसी है क्या।
1: दोस्तों, एनसीसी भारत का एक युवा संगठन है जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुई थी। आपको पता है कि इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास, देशभक्ति और सेवा की भावना विकसित करना था।
0: यानी कि एनसीसी केवल परेड करना नहीं सिखाती बल्कि हमारी जीवन में हर चुनौती का सामना करना भी सिखाती है।
1: बिल्कुल सुमन, एनसीसी का आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। यही दो बातें हर कैडेट के जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
0: पर लेकिन एनसीसी अपने छात्रों को क्या सिखाता है?
1: सबसे पहला सुमन, वो सिखाता है अनुशासन। एनसीसी हमें समय का महत्व समझाता है, समय पर पहुंचना, जिम्मेदारी निभाना और नियमों का पालन करना सिखाता है,
0: और आत्मविश्वास भी बढ़ाना।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो ना कि जब कैडेट परेड करते हैं, भाषण देते हैं, कैंप में भाग लेते हैं और अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं तो उनका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है।
0: पर मैंने तो ये भी सुना है अपने बचपन में कि एनसीसी में अलग अलग प्रकार के कैंप भी आयोजित होते हैं।
1: हाँ, बहुत सारे कैंप।

0: बिल्कुल, जैसे कि प्रशिक्षण शिविर हो गया, ट्रेनिंग, एडवेंचर कैंप, राष्ट्रीय एकता शिविर और गणतंत्र दिवस शिविर। देखो, इन कैंपों में देश के अलग अलग राज्यों के छात्र एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना भी मजबूत होती है।
1: यानी कि एनसीसी केवल अपने राज्य को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को जानने और समझने का मौका देता है।
0: बिल्कुल, एनसीसी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है विविधता में भी एकता, एकता की भावना को जागरूक करना या मजबूत करना
1: और समाज की सेवा करना भी।
0: बिल्कुल, इससे सबसे बड़ी विशेषता तो यही है, देखो ना, कि एनसीसी के कैडेट रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, सड़क सुरक्षा जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों की सहायता जैसे अनेक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं।
1: यानी कि इसका मतलब एक सच्चा एनसीसी कैडेट केवल अपने बारे में ही नहीं सोचता बल्कि समाज और देश की सेवा में भी अपना फर्ज निभाता है।
0: बिल्कुल सही कहा, यही भावना एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान होती है।
1: और इसके साथ साथ ही एनसीसी भविष्य में भी योगदान करता है।
0: बिल्कुल, एनसीसी का ABSC प्रमाण पत्र कई सरकारी नौकरियों विशेषकर सेना, नौसेना, वायुसेना और अन्य सुरक्षा बलों में लाभदायक होता है। इसके अलावा इंटरव्यू में भी एनसीसी का अनुभव एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है।
1: मतलब ये पढ़ाई के साथ साथ हमारे फ्यूचर को भी मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल, यह हमें नेतृत्व करना, टीम के साथ काम करना और कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेना सिखाता है।
1: आज के समय में जब युवा कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तब एनसीसी जैसे संस्थान उन्हें सही दिशा में काम करना सिखाते हैं।
0: सही का, एनसीसी हमें शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से आत्मविश्वास और नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाता है।
1: दोस्तों, एनसीसी केवल एक संगठन नहीं बल्कि जीवन की एक पाठशाला है जहां अनुशासन, सम्मान, सेवा और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है।
0: सुमन, देखो, जिस तरह हमारे एनसीसी कैडेट्स में जोश और उत्साह भरा होता है ना, अपने देश के प्रति वैसे ही जोश की आग और तपस्या हमारी सीमा पर खड़े भारतीय सेना के जवानों में दिखती है।
1: दिशा, क्यों न हमारी सेना के इसी जज्बे को सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज में।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: सुमन, तुमने एक चीज नोटिस की? आजकल सब एकदम थके थके और सुस्त से दिखाई देते हैं।
1: हाँ, सुबह सुबह ऐसा लगता है जैसे सबको जबरदस्ती खींच कर लाया गया है, चेहरे पर कोई रंग नहीं।
0: वही तो, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग इतना खुद को परेशान क्यों कर रहे हैं। अब देखो, 24 घंटे बस एक ही धुन समा रहती है सब पे।
1: अक्सर हम देखते हैं कि
0: देखो ना, कि अगर 24 घंटे में से 18 घंटे अगर हम नहीं पढ़ेंगे या काम नहीं करेंगे तो बाकी लोगों से पीछे छोड़ जाएंगे, सब यही सोचते हैं।
1: पर इससे होता क्या है, अंत में आधे से ज्यादा लोग परीक्षा आने तक तो बीमार ही पड़ जाते हैं। हम यह भूल जाते हैं कि दिमाग भी तभी बढ़िया काम करेगा जब हमारे शरीर को अच्छी नींद, अच्छा खाना और थोड़ा आराम मिलेगा।
0: सही बात है। अब देखो कि अगर सेहत ही सही नहीं रहेगी तो इंसान अपनी मेहनत का पूरा रिजल्ट कभी दे ही नहीं पाएगा।
1: बस यही तो सिंपल सा लॉजिक है। थोड़ा टाइम से सो लो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, टाइम से खाना खाओ।
0: बिल्कुल, थोड़ा सा टहल लेने से थोड़ा दिमाग का स्ट्रेस कम हो जाएगा, थोड़ा खुश होने से। क्योंकि देखो, मेहनत तो जरूरी है, पर खुद को थकाकर की गई मेहनत किसी भी काम की नहीं है।
1: 100% सही है।
0: पर सुमन, एक बात बताओ, जब मैं आसपास देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ हमारी क्लास या कुछ दोस्तों की बात तो है नहीं, आजकल तो जैसे पूरे माहौल में ही एक अजीब सी होड़ मच गई है।
1: बिल्कुल सही बोल रही हो तुम। आज के समय में हर व्यक्ति का अदृश्य रेस में एक दौड़ है। अगर कोई इंसान दिन में थोड़ा सा भी खाली बैठ जाए तो आराम कर ले तो उसे खुद ही ऐसा लगने लगता है जैसे उसने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। एक तरह का वो गिल्ट महसूस करने लगता है।
0: अरे हाँ, बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, गिल्ट। कई बार जब मैं भी थोड़ा ब्रेक लेने की सोचती हूँ तो अचानक मन में आता है कि अरे, जितने समय में ये चाय पी रही हूँ उतने में तो 2 सवाल और हल हो जाते, और इसी चक्कर में इंसान ब्रेक लेना ही छोड़ देता है।
1: और तुम जानती हो इसका नतीजा क्या होता है? इंसान ब्रेक तो नहीं लेता लेकिन उस थोड़े थके हुए दिमाग से कुछ काम नहीं करता। जो काम करता है उससे उसकी क्वालिटी और ज्यादा खराब कर देता है। तुम खुद सोचो, जब हमारा फोन हम कंटिन्यू यूज कर रहे हैं तो क्या करता है, गर्म हो जाता है, हैंग होता है।
0: बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर के लिए हम फोन को साइड रख देते हैं ताकि वो ठंडा हो जाए या फिर उसे रिस्टार्ट कर देते हैं।
1: बस यही तो है, अगर हमारा फोन रिस्टार्ट मांग रहा है तो हमारा शरीर और दिमाग क्यों नहीं? हमारा दिमाग भी तो एक मशीन

0: बायोलॉजिकल क्लॉक की तो है, जहाँ जब हम बिना रुके, बिना सोए, बिना सही खाना खाना पान के काम करते रहते हैं तो हमारा दिमाग भी अंदर से हैंग होने लग जाता है।
1: सही बोल रही हो तुम।
0: लेकिन कई बार मैंने ये नोटिस भी किया है कि जब मैं बहुत देर तक लगातार पढ़ती रहती हूँ तो एक वक्त ऐसा आता है जब पन्ने तो पलट रहे होते हैं, आंखें भी लाइनें पढ़ रही होती है, पर दिमाग में एक शब्द भी नहीं आ रहा होता है, सब ऊपर से निकल जाता है।
1: उसी को तो कहते हैं दिमागी थकान। उस हालात में किताब खोलकर बैठने का कोई मतलब नहीं रहता, वो तो बस खुद को और दुनिया को दिखाने वाली बात होती है। देखो कि मैंने 8 घंटे टेबल पर मैं बैठा हूँ, मैं 8 घंटे पढ़ा हूँ।
0: बिल्कुल, यानी घंटों का दोस्तों हिसाब रखने से ज्यादा जरूरी है कि समय समय पर हम ध्यान दें, उसमें हमारा दिमाग कितना तरोताजा और केंद्रित रहता है,
1: बल्कि हम उसकी जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को, मात्रा को, क्वांटिटी को, क्वालिटी को क्वांटिटी के मात्रा में ज्यादा देखें। अगर फ्रेश माइंड में 2 घंटे भी

0: योग का दोस्तों हिसाब रखने से ज्यादा जरूरी है कि समय समय पर हम ध्यान दें, उसमें हमारा दिमाग कितना तरोताजा और केंद्रित रहता है,
1: बल्कि हम उसकी जो काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को, मात्रा को, क्वांटिटी को, क्वालिटी को क्वांटिटी के मात्रा में ज़्यादा देखें। अगर फ्रेश माइंड में दो घंटे भी
0: अगर दोस्तों हम फ्रेश माइंड में दो घंटे भी पूरे ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो थके हुए दिमाग के 6 घंटों पर भारी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों हर किसी का बॉडी क्लॉक अलग हो जाता है, लेकिन नींद का कोटा पूरा होना चाहिए। अगर आप रात में जाग भी रहे हैं तो दिन में अपनी नींद पूरी करें। अब दोस्तों बात तो बहुत सीधी सी है, अगर हमारी गाड़ी या ना हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हमारी मंजिल यानी हमारी पढ़ाई और करियर का सफर भी मजेदार और आसान हो जाएगा। बीमार रहकर खुद को थकाकर हासिल की गई सफलता में वो खुशी कभी नहीं मिलेगी।

0: जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: सुमन, तुम्हें याद है कि कार्यक्रम के शुरुआत में हमने हमारे दोस्तों से दो सवाल पूछे थे?
0: बिल्कुल,
1: अब वक्त है उन्हीं सवालों के जवाब देने का। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वोट रूपांतरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जिसका सही जवाब है वाराणसी।
0: और हमारा दूसरा प्रश्न था आपके लिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF ने 27 जुलाई 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था,
1: जिसका सही जवाब है 87वां स्थापना दिवस।

0: दोस्तों अब बारी है आज की रोजगार सूचना की।
1: दोस्तों यूपीएससी ने एग्रीकल्चर इंजीनियर, असिस्टेंट इंडस्ट्रियल एडवाइजर, सिविलियन मेडिकल ऑफिसर और भी कई सारी पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं।
0: यहाँ पदों की संख्या 40 है और अप्लाई करने की लास्ट डेट 14 अगस्त है और अधिक जान

0: तो दोस्तों आज के इस सफर में हमें यही सीख मिलती है कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी जरूरी है, स्वस्थ शरीर के लिए बीमारियों से बचाव भी जरूरी है।
1: और दोस्तों बात जब सेहत और सुरक्षा की हो तो हमारे एनसीसी के कैडेट्स हमेशा अनुशासन और सेवा का बेहतरीन उदाहरण हमारे सामने पेश करते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपने पर्यावरण के प्रति भी अनुशासित होना चाहिए। आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर आइए वादा करें कि हम ऊर्जा के अपव्यय को रोकेंगे और पानी व बिजली जैसे अनमोल चीज़ों को बचाएंगे।
0: दोस्तों अब हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक सेहतमंद रहिए और सुनते रहिए युवाणी।
1: मैं हूँ दिशा
0: और मैं हूँ सुमन।
1: नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:55 हुए हैं। अब सुनिए हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 8 बजे सुनिएगा संसद समीक्षा कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से जिले की चिट्ठी शाम 6:42 पर।

लोक संगीत का कार्यक्रम रात्रि 8:15 बजे होगा। हमारी सभा में सुगम संगीत के कार्यक्रम शाम 7:45 पर और रात्रि 9:30 पर होंगे।

हमारी सभा की फिल्म संगीत के कार्यक्रम इस प्रकार हैं। शाम 6:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं सलिल चौधरी। रात्रि 8:15 फिल्म संगीत, रात्रि 9:15 फिल्म संगीत और रात्रि 10:00 सुनिएगा फिल्म संगीत का फरमाइशी पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।

ये था हमारी सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम

0: संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हो रही है। राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हाल के राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। भारत में पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
0: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा कि जून महीने में सभी 4 बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 70 अंक गिरकर 76,766 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 11 अंक कम होकर 23,985 पर आ गया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। चीन के हांगझोउ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में यह पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं सलिल चौधरी। सुनिए कार्यक्रम का

पहला गीत, फिल्म का नाम है परख, गायक कलाकार लता मंगेशकर। इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और अब सुनिए एक ही संगीत का कार्यक्रम में सलील चौधरी की तर्ज पर ये योगेश का गीत, फिल्म का नाम आनंद, गए कलाकार मन्ना डे।

जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसा।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और अब सुनिए श्रोताओं, अन्नदाता फिल्म से मुकेश को। गीतकार योगेश और संगीतकार आज के कार्यक्रम के संगीतकार सलिल चौधरी।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं सलील चौधरी। अब सुनिए फिल्म छोटी सी बात से योगेश की ये रचना

फिल्म का नाम रजनीगंधा, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार योगेश और संगीतकार सलिल चौधरी। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार थे सलिल चौधरी। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में, मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। और प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने के आसार, कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए हैं। अदालत ने इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई अंतरिम निर्देश दिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्रथम दृष्टया आरोपों के आधार पर निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच पर विचार किया जाना चाहिए, जिसमें 200 से अधिक घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों की चिंताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी है। इस विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिसमें पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्ती भी शामिल है। साथ ही ऐसे मामलों के जल्द निपटारे के लिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नया विधेयक इस बात की पुष्टि करता है कि युवाओं के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार लाने का इरादा नहीं रखने का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता जताई। उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आउटसोर्सिंग के जरिए अधिकारियों की भर्ती पर भी सवाल उठाए। विधेयक को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपनी बात रख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल की 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रपति भवन में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए बाल परिसर समर्पित किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने बच्चों से बातचीत भी की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से केलकारी प्ले जोन और समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 4 साल में राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने वाली कई पहल की गई है। इससे औपनिवेशिक मानसिकता को दूर करने और जड़ों की ओर लौटने में मदद मिली है।
1: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प और उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विशेष ध्यान दे रही है। श्री शर्मा आज धौलपुर पहुंचे। उन्होंने फूलपुर में स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रही है।
2: प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य

0: का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजा खेड़ा से नागर मीठाबाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का पुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है।
1: मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 177 करोड़ रुपए की लागत के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ये काम शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री डीग के पूंछरी का लोठा पहुंचे, वे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। श्री शर्मा कल भरतपुर के खेडली गोजन में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए राशि डीबीटी करेंगे। मुख्यमंत्री मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का भी शुभारंभ करेंगे। इससे पहले श्री शर्मा ने जयपुर में आज अपने निवास पर युवाओं के साथ संवाद किया। सपनों की उड़ान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, माय भारत वॉलंटियर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह इस बार बीकानेर में आयोजित किया जाएगा। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर बीकानेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा, वहीं एट होम कार्यक्रम जयपुर में होगा। इससे जुड़ी तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर आज जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को बीकानेर जिला प्रशासन के साथ तालमेल रखते हुए समय पर तैयारियां पूरी करने को कहा। बैठक में समारोह को गरिमापूर्ण, भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से आयोजित करने को लेकर चर्चा की गई। बीकानेर संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा और जिला कलेक्टर निशांत जैन भी वीसी के माध्यम से इस बैठक से जुड़े। राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए और यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के बीच अकादमिक सहयोग के लिए एमओयू किया गया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा की मौजूदगी में आज जयपुर में पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की ओर से डॉ विमल कुमार शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। इस मौके पर डीजीपी श्री शर्मा ने कहा कि इससे पुलिसिंग, पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि इस एमओयू के माध्यम से राजस्थान के पुलिसकर्मियों को डिस्टेंस लर्निंग और विभिन्न सर्टिफिकेट कोर्स के अवसर मिल सकेंगे। इससे पीएचडी, इंटर्नशिप और एक्सचेंज प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही पुलिस बल का क्षमता संवर्धन, तनाव प्रबंधन और पेशेवर दक्षता मजबूत होगी। प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने और अधिकतर हिस्सों में बरसात की गतिविधियां तेज होने के आसार हैं। इस दौरान दक्षिण पूर्वी और पूर्वी हिस्से भारी बारिश से तर बतर हो सकते हैं। मौसम विभाग ने कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं तेज रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात हो सकती है। इस बीच आज राजधानी जयपुर में दोपहर में पानी बरसा। सवाईमाधोपुर जिले और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बरसात हुई। तेज गर्मी और उमस के बाद आज चूरू भी अच्छी बरसात से सराबोर रहा। टोंक में हुई झमाझम बारिश से कई जगह पानी भर गया। भरतपुर में दिन भर कभी हल्की तो कभी मध्यम बरसात हुई। उधर सिरोही में दिन भर रिमझिम बारिश का दौर चला। आबूराज में पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है और मौसम सुहाना बना हुआ है। वहीं हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा में उमस और गर्मी से लोग परेशान रहे। और अब लिवर के नाम एक जरूरी संदेश। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हेपेटाइटिस की पहचान, इलाज और रोकथाम के उपायों को लोगों तक पहुंचाना है। इस साल की थीम इसे खत्म करने के लिए बाधाएं मिटाए रखी गई है। साथ ही वर्ष 2030 तक हेपेटाइटिस मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। एसएमएस अस्पताल के उदर रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉ सुधीर महर्षि ने बताया कि हेपेटाइटिस बीमारी में लिवर में सूजन आ जाती है। समय पर इलाज नहीं होने पर मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है।
2: बचाव के लिए अपने को घर का बना हुआ खाना खाएं, ताजा बना हुआ खाना खाएं। जब भी खाना खाएं तो हाथ धो के खाएं। हेपेटाइटिस बी सी और डी जो कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से या जो आईवी ड्रग एब्यूजर्स होते हैं उन लोगों में होता है, तो इस तरह के नशे और इस तरह की आदतों से बचें। और जब भी इस तरह के लक्षण आए,

0: उनके लक्षण कॉमन लक्षण होते हैं जैसे पीलिया होना या बुखार होना या पेट में दर्द होना, उल्टी होना या उल्टी का मन करना, इस तरह के लक्षण जैसे भी आते हैं तो अपने नियर बाई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से तुरंत दिखा के उसका उचित इलाज करें। धन्यवाद।
1: जयपुर नगर निगम की ओर से एक अनूठी पहल शुरू की गई है। इसके तहत सावन के महीने में मंदिरों से बिल्व पत्र और फूल इकट्ठे कर जैविक खाद बनाई जाएगी। इस पर और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जेएमसी की ओर से सावन महीने के हर सोमवार को निगम के इलेक्ट्रिक हुपर मंदिरों से जैविक पूजन सामग्री एकत्र करेंगे। इनसे मशीन और कंपोस्ट किट के जरिए उच्च गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जाएगी। शिवा अर्पणम नाम से तैयार इस खाद को विशेष पैकेट्स में श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत शहर के तारकेश्वर महादेव, झारखंड महादेव, जंगलेश्वर महादेव सहित पांच प्रमुख शिवालयों से की जा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए धार्मिक स्थलों पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ये दिन गुरुओं के आदर सम्मान को समर्पित है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम आयु और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रवेशनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार का लोगों को पानी, बिजली और स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान। स्वतंत्रता दिवस का राज्यस्तरीय समारोह इस बार बीकानेर में। मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। और प्रदेश में 2 अगस्त तक मानसून के सक्रिय रहने के आसार। कल 29 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से 12 जिले की चिट्ठी सुनिए। इसे भेजा है लक्ष्मी चंद नागर ने। हाड़ौती अंचल के 12 जिले में पिछले महीने विकास, कृषि, स्वास्थ्य, खेल, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण और कानून व्यवस्था से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण गतिविधियां रही। सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ युवाओं, किसानों और आमजन के हित में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत 12 जिले से की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से योजना का शुभारंभ करते हुए युवाओं से कौशल विकास और रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। योजना के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और रोजगार से जोड़ने के लिए विभिन्न गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना के तहत माई भारत केंद्र द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान चलाया गया। अभियान के तहत जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से दूर रहने तथा समाज में जन जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। नगरीय विकास और आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने 12 नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर में आमजन को मिल रही सेवाओं का जायजा लेकर अधिकारियों को समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा सहित जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार की बजट घोषणा के तहत श्रीराम स्टेडियम और खेल संकुल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर 300 से अधिक खिलाड़ियों का सम्मान भी किया गया। जन प्रतिनिधियों ने कहा कि इन विकास कार्यों से जिले के खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जिले के कोयला गांव की यशोधरा हाड़ा और एंजल हाड़ा ने राज्य स्तरीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोनों राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई हो गई हैं। दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी का माहौल है और स्थानीय खेल प्रतिभाओं को नई प्रेरणा मिली है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV टीकाकरण अभियान में 12 जिले ने प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एक ही दिन में 247 किशोरियों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य

के अनुसार अब तक निर्धारित लक्ष्य का 36% से अधिक पूरा किया जा चुका है। महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम के तहत कृषि उपज मंडी परिसर में जिला स्तरीय आयोजन किया गया। इसमें लगभग 3000 महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिला सुरक्षा, साइबर अपराध से बचाव, हेल्पलाइन नंबरों तथा आत्मरक्षा के उपायों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षकों ने आत्मरक्षा के व्यवहारिक प्रदर्शन भी किए और विपरीत परिस्थितियों में सतर्क रहने के तरीके बताए। राज्य सरकार ने सोलर क्रॉप ड्रायर पर 40% तक अनुदान देने की योजना शुरू की है। इससे धनिया सहित उद्यानिकी फसलों के किसानों को फसल सुरक्षित ढंग से सुखाने और बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। आधुनिक तकनीक से किसानों की लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने की भी संभावना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना का शुभारंभ जिले में भी किया गया। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में रोजगार

0: आधुनिक तकनीक से किसानों की लागत घटने और उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ने की भी संभावना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना का शुभारंभ जिले में भी किया गया। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रमों में रोजगार, आजीविका संवर्धन और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के तहत जिले में 1,70,658 किसानों के खातों में 34,13,00,000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। अंता के कृषि विज्ञान केंद्र में इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों ने योजना से मिल रही आर्थिक सहायता को खेती के लिए उपयोगी बताया। इसी के साथ 12 जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। सुप्रीम कोर्ट 18 साल कम उम्र रा बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाला प्रदर्शन करने वाला विद्यार्थी ने तुरंत रिहा करने का हुक्म देना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो राज्य सरकार रो जनता ने पानी, बिजली और स्वास्थ्य जुड़िया बुनियादी सुविधा मुहैया करावण माथे खास ध्यान। स्वतंत्रता दिवस रे मौके राज्य स्तर रो जलसो बीकानेर में, मुख्य सचिव तैयारियां रो जायजो लीनो। और प्रदेश में 2 अगस्त तई चौमासा री चोखी बिरखा रा आसार। काल 29 जिला सारू बारिश रो येलो अलर्ट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरबे समाचार विगतवार। सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में प्रदर्शन करण वाला 18 साल कम उम्र और गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाला विद्यार्थियों ने आज रिहा करण रा हुकम दिना। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना री पीठ नीट परीक्षा पेपर लीक मामला में लालना दिना आखा देश में फिया प्रदर्शनों जुड़िया इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूत हिफाजत सागे रखन राई हुकम दिना। अदालत आ प्रदर्शन दौरान पुलिस कानी जोर आजमाइश रा आरोपों जुड़ी अर्जियां री सुनवाई करता थका कई अंतरिम निर्देश दिना। पीठ कहो के शुरुआती आरोपों का आधार निपक्ष और स्वतंत्र जांच माथे विचार करो चाहिए, जिनमें प्रदर्शन के दौरान जख्मी भया 272 पुलिस वाला रा परिवार ने चिंता रोई ध्यान रखो जाऊ चाहिए। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन बिल 2026 माथे चर्चा करी जा रही है। इन बिल में पेपर लीक रा दोषियों ने 10 साल ताई री कैद री सजा देवन सागे वा माथे 10 करोड़ रुपया ताई रो जुर्मानो लगावण और वारी संपत्ति जब्त करण रोई प्रावधान है। इस आगे एड़ा मामले रा बेगा निपटारा सारू हर राज्य और केंद्र रा राज वाला प्रदेशों में फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलन रो प्रावधान है। बिल पेश करता था का कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहो के वो बिल बतावे है के नौजवानों रा भविष्य सागे कोई समझौतो नहीं करियो चावेला। चर्चा रे दौरान कांग्रेस रा गौरव गोगोई सरकार माथे बनाई लिखाई रा हल्का माथे ध्यान नहीं देवे और असली सुधार लावण रो इरादो नहीं रखन रो आरोप मांगियो। समाजवादी पार्टी रा सांसद अखिलेश यादव नेरी नेरी परीक्षा वाला पेपर लीक वेवन पर चिंता जताई। वह राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आउटसोर्सिंग के जरिए अहलकार ने भर्ती माथे सवाल उठायो। नई नई पार्टियां रा नुमाइंदा बिल जुड़िया मुद्दा माथे हमारी बात रख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हमारा कार्यकाल रा 4 साल पूरा फेवन रा मौके आज राष्ट्रपति भवन में नेरी नेरी परियोजना वारी शुरुआत कीनी। वह राष्ट्रपति भवन में बच्चे सारो बाल परिसर समर्पित कीनो। इस दौरान राष्ट्रपति बच्चे सागे बातचीत कीनी। वह वर्चुअल तरीका किलकारी प्ले जोन और समर्थ आंगनबाड़ी सह पालन रोई उद्घाटन कीनो। इस मौके श्रीमती मुर्मू

0: श्रेष्ठ विकास सांस्कृतिक पुनर्जागरण रे बारे में चर्चा की। राष्ट्रपति कहूं कलारला चार साल में राष्ट्रीय भावना ने मजबूत करने वाली कई पहल करी जी जिन्हों गुलामी री सोच आगे करण और जनाओ जुड़बा में मदद मिली है।
1: इन चार वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अवशोष को खत्म करने की ओर ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहे।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहे है कि राज्य सरकार जनता ने पानी बिजली और स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी सुविधा मुहैया करावन माथे खास ध्यान दे रही है। वे आज धौलपुर के फूलपुर राष्ट्रीय स्टेडियम में राखी जी जनसभा में बोल रहा है। श्री शर्मा कहे कि सरकार सबका साथ सबका विकास री सोच सागे हर तबका रा भला सारू काम कर रही है।
2: प्रदेश के किसान को समृद्ध और खुशहाली बनाने के लिए पिछले 2.5 साल में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। इस दृष्टि से 13.5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के राम सागर के मध्य सिंचाई परियोजना के पुनर्निर्माण का कार्य का लोकार्पण भी किया गया है। इसी तरह राजाखेड़ा से नागर मीठावाली में 8.5 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट बनाकर आज क्षेत्रवासियों को समर्पित किया गया है। सोने का पुर्जा में पुलिस थाना और बिजौली सेवर एवं झिरी में पुलिस चौकी बनाकर उनका लोकार्पण भी किया गया है।
0: मुख्यमंत्री डीग जिला पुंछरी का लौठा माई राख्या जावन वाला कार्यक्रम माई शिरकत करण सारू रवाना भिया। श्री शर्मा रो भरतपुर जिला रा खेड़ ले गुजर माई गुरु पूर्णिमा रे मौके राज्य स्तर रा कार्यक्रम माई शामिल भे वन रो ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री विद्यार्थियों रा खाता माई स्कूल ड्रेस सारू रकम ये भेजेला और मिशन पढ़ो राजस्थान रा तहत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन री शुरुआत रो ये कार्यक्रम है। इन्हों पहले श्री शर्मा जयपुर में आज माना रिवास माथे नौजवानों सागे बातचीत की। सपनों की उड़ान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिक्षा खेल स्टार्टअप माई भारत वॉलेंटियर सर प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे नौजवानों बातचीत की। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। स्वतंत्रता दिवस रे मौके 15 अगस्त में राज्य स्तर रो जलसो ई दफा बीकानेर में राख्यो जावेला। इनो पहली री संज्ञा बीकानेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भेला। राजधानी जयपुर में एट होम कार्यक्रम राख्यो जावेला। इनो जुड़ी तैयारियां और व्यवस्थाओं रो जायजो लेवन सारो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर में संबंधित महकमा रा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। वे बीकानेर जिला प्रशासन सागे तालमेल रखकर टीम से तैयारियां पूरी करन बाबत कहो। राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए और यूके री यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर बीच अकादमिक सहयोग सारू करार करी चियो है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा री मौजूदगी में आज जयपुर रा पुलिस मुख्यालय में रखी जा जलसा में ई करार माथे सही करी ची। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर री ओरो डॉक्टर विमल कुमार शर्मा री अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहो। ई मौके पुलिस महानिदेशक कहो के ईरा जरिए पुलिसिंग पुलिस कल्याण मानसिक स्वास्थ्य और सिखावन रा हल्का में नुआ काम करया जावेला। वो कहो के ई करार रे मार्फत प्रदेश रा पुलिस कर्मचारियों ने दूरस्थ शिक्षा रे जरिए सर्टिफिकेट कोर्स रा मौका मिल सकेला। इस आगे पीएचडी इंटर्नशिप और एक दूजा अठा दौरा में ही बधावो मिलेला। रब मौसम प्रदेश में 2 अगस्त तक चौमासारी चौखी बिरखा रा आसार है। मौसम विभाग काल 29 जिला में बारिश रो येलो अलर्ट जारी कीनो है। इस दौरान कठे कठे जोरदार बायरो बाजन राई आसार है। जोधपुर संभाग रे अलावा दूजी सगली टोणा मझनाऊ तेज दर्जा री बरसात री संभावना है। इन बीच आज राजधानी जयपुर रा न्यारी नारा हल्का में दोपहर पाछे पानी बरसियो। सवाई माधोपुर जिला और आरा सारा रा हल्का में हल्की मझला दर्जा री बरसात हुई। तेज गर्मी और उमस पाछे आज चूरू में चोखो में बरसियो। टोंक में झमाझम में

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: जगत कार्यक्रम स्वर्ण वाला जी का भी किसान भाई बहन है आप सगला ने आप लोग साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य
1: और संदीप पारिकरा घना घना राम राम।
0: संदीप भाई आपने भी घना घना राम राम
1: राम राम
0: सा मेरा दिन सु देखा हो बड़ा विराजन लग गया
1: भैया ठीक विराजन और तो देखो गांव छोड़ के तो कट जाऊं।
0: हाँ लेकिन एक बात है कि अभी तो बरखा भी शुरू हो रही है और ठौर ठौर बरखा हो रही है ठीक है नी। तो आज का दिन है वो दिन है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस रो। आज विश्व जी की प्रकृति है मेरे संरक्षण करना अपारो धर्म है। जहाँ दरखत लगाया यहाँ पर सरकार है बाकी एक पेड़ मारे ना अब दरखत लगाए दो पछे अड़गा हो जाओ तो अभी चालक हो रहे।
1: बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखो प्रकृति जी की है नी बा बिंग बिना पर है कौन सका
0: एकदम।
1: तो प्रकृति के सागे चालनो आप फर्ज भी बने और इन प्रकृति ने बचा रखनो वो भी आपनो दायित्व है।
0: तो चाहे वो पानी है चाहे वे दरखत है चाहे वे पहाड़ है कि आप भी देख रहे हैं कि पहाड़ है लोग आप रहे लाभ रहे वास्ते पहाड़ काटता जा रहे है तो बिना भी बचाना जरूरी है दरखत है बाने बचाना जरूरी है तो सागे सागे पानी है भी तो सदुपयोग करो बिना बचाना भी जरूरी है।
1: और बिल्कुल ऐसे की बात आप आज क्यों कर रहे हैं क्योंकि आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई ने विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस चुको है वो मनाया हो जावे और इन मनाने के पीछे उद्देश्य चुको है वो है कि लोग जका है वे प्रकृति ने और पर्यावरण के संरक्षण न बचाने खातिर जागरूक होए और इन धरती पर जीवन को आधार यह पानी है हवा है जंगल है वन्य जीव है और जिकी बाकी की जिकी भी जड़ी बूटियां है आज की विविधता जिकी है नहीं भांत भांतपन जिको है इन्हें आपा हमेशा बचा रखा और प्राकृतिक साधन जिता है बांगो अंधाधुंध दोहन जो है नी बान काटनो करनो ऐसे ही नहीं होना चाहिए नहीं तो फिर आने वाली जिकी पीढ़ी है नी बस साफ और सुरक्षित वातावरण मैं ढूंढना मांग लिए मुश्किल बहुत हो जाएगा।
0: आप एक जो शब्द बार में सुनी हो दोहन अंधाधुंध दोहन वो बहुत सटीक बात कही है आप जहाँ पानी है भी उपयोग करो जरूर जो बहुत जरूरी है करना ही पड़े सी पर दोहन करना जो खेत रहे मायने आप कुआ खुदाई रहे तो भी पानी निकाल रही खेत में दे रही बड़े तक ठीक है पर जरूरत को नहीं तो भी निकालता जा रही वो आप प्रकृति वास्ते बहुत खोटो काम हो।
1: बिल्कुल और इनके अलावा देखो जिद आप प्रकृति रो दोहन करानी तो बीसू प्रदूषण जो को है और सागे सागे जलवायु परिवर्तन जो को है अब आप देख रहे हैं कि लाल कई वर्षा में गांव में जिका आप खेती करनी हाँ या जिका बुजुर्ग किसान है वे चीज ने महसूस कर रहा है कि खेती बाड़ी को या आप जलवायु को जो पैटर्न है वो बदल रहे जगह वगत बिरखा होनी चाहिए बीज वगत बिरखा को नहीं हुए कभी पहली हो जाएगी पच्छ हो जाएगी और एक सार को नहीं हुए। दूसरी बात कि बुआ जा रहे वगत जो को है वो आगे ला रहे हों तो जा रहे हैं तो वो पर्यावरण परिवर्तन जो को जलवायु परिवर्तन जो को हो रहे है इनके पीछे भी बहुत बड़ो कारण है वो है कि आप प्रकृति सु एक नए जो को है वो कम कर लियो बीसु दूरी बढ़ा ली और बिंग प्रति एक समर्पण आरो जो को भाव होना चाहिए नी वो भाव अब कम हो तो जा रहे जिके सु कई बार यहाँ लागे गांव में बात भी करे बड़ा बुजुर्ग कि प्रकृति जिकी है बा आप सु नाराज हो रही है।
0: देखो पहला भी जिका बडेरा था पारा वह प्रकृति पूजा करता अब जहाँ सावन आ गया सावन बाद में भादवो है तो सावन में मायने आप देखा तो प्रकृति जो चक्र है भी चक्र ने बनाए रखने वास्ते दरखती पूजा आवे जब बड़ी तीज आवे तो बड़ी तीज एक पाड़ बनाई जाए पाड़ बना भी मैंने पानी गाली जाए वो प्रतीक है पानी ने परोटन रहो बिरे सागे एक डाली लगाई जे खेजड़ी री वो प्रतीक है कि खेजड़ी जिकी है बा राजस्थान रो कल्प वृक्ष है बिने बसावण रो बिने परोटनो बिने आगे बढ़ाने रो ठीक है नी। और सागे सागे जब नागड़ा पंचम आवे तो बिरे माने नागरा चित्र बनाया करे बिरे पूजन हुए तो वो भी प्रतीक है कि जीव जगत जिको है अठे रो बिने परोटनो बिने संभालनो क्योंकि और जीवन चक्र जिको है नी वो जीवन चक्र प्रकृति ने आगे बढ़ाने में प्रकृति ने सहजन में सहायक हुए।
1: बिल्कुल सही बात है क्योंकि सामूहिक प्रयास जिक्का है नहीं वे जब तक नहीं कराया जाएगा जब तक आपा अपनी प्रकृति ने बचा कौन सका और भारत सरकार का नहीं भी और कई जबकि दूसरी सामाजिक संस्थावा है वे भी पर्यावरण संरक्षण के

0: कई योजनावां और अभियान जखिए वह चला रही है, जहाँ वृक्षारोपण अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन है, जल संरक्षण कार्यक्रम है, तो ए जिका भी अभियान है आंगी सफलता जदि संभव है, जद हरेक नागरिक जो है आपकी जिम्मेदारी न समझे, आपकी जगह भागीदारी है बिना निभावे, और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो आप आज मना रहे हैं, आप प्रकृति केवल आपने आवश्यकता को नहीं बल्कि आपनो जीवन है। यदि आज आप अपा आज प्रकृति की रक्षा करांगा तो आपनो भविष्य सुरक्षित रहेगो, स्वस्थ और समृद्ध होगा। इन वास्ते अपन संकल्प लेना चाहिए कि आप पर्यावरण संरक्षण के लिए हमेशा जागरूक रहवांगा और दूसरे भाई बहनों ने भी इनके लिए प्रेरित करांगा।
1: अब आप जहां बात करी थी कि आप सामूहिक रूप से काम करा या संरक्षण वास्ते काम करा, तो मैंने ध्यान में आवे कि गांव रे मायने जहां पर तालाब है, तो भी तालाब ने क्या आवे सगला गांव वाला मिलने साफ करे। अब महीना हुए जेठ रो महीना हुए या आषाढ़ महीना हुए, तो भी आषाढ़ महीने मायने पूरे खेत ने साफ करे। और भी पारंपरिक जो को काम है बिना बोले लाश, और भाई लाश रमाने सगला गांव वाला मिलने एक दिन जहाँ पा कहाँ गोठ करनी, तो भाई गोठ करे का गोठ करे काम रे कि भाई पूरे तालाब ने साफ सुथरो करे। पचे सामूहिक रूप से बड़े जिम्मे भी है, तो वो जो को प्रेम है बिहारो जो को कर्म है वो भी साथ चले और साथ भी प्रेम भी निभाई जाए। और दूसरी बात अभी है कि प्रकृति रो जो पानी रो तो बड़े पानी ने सहेजनो भेड़ो करना। अपन मुंडरा में देखा मुंडरा ने मायने भी क्या आवे कि जो कुंड हुए तो कुंड रे वास्ते पहले सो तय कर लेवे कि आषाढ़ो महीनो आ गयो है तो चरचर कति सड़क लिया करे रित स्नान तू तंबूस अब तानियो बादल या आसमान, तो बादल आसमान में आ जावे तो बे आ सोचन लाग जाए कि अब बरखारो बखत हो गए तो डागड़ा साफ कर लेवे। बड़ा बड़ा जिका जितनी भी जिकी संस्थाएं हैं या फिर बड़ा बड़ा जिसका डागड़ा है घरारे भी उन्हें भाई साफ करे, साफ कर और बीरो क्या है साफ करने का कारण हो ये कि बैठे गंदगी नहीं रहे और बिखारो पानी जद आवे तो वो बैर परो सीधो सीधो कुंड रे मायने भरी जाए बावड़ी रे मायने भरी जाए। इनसे कही हुए कि पानी जिसकी कमी है भी कमी ने पूरा करियो जा सके। और आपने मालूम है कि पहला तो लोग क्या है कि गाँव रो जो तालाब हो तो भी तालाब ने क्या मानता है गाँव रो पैंडो, अगर वो पैंडो शुद्ध है तो जीवन शुद्ध है। ठीक है आज बखत माने हर घर नल व्यवस्था पूगी है, पर इन बावजूद भी आप देखा लोग तालाब रे माथे निर्भर है, जोहड़ माथे भी निर्भर है, जोहड़ो पानी है तालाब रो पानी भी ने काम में लेवे, खेती में चाहो या फिर नावण दौड़ में लेवो या फिर पीण में भी लेवे या फिर पशु जिका है बाने पाण में भी लेवे। कहने मतलब है कि पानी ने सहेजनो, प्रकृति ने सहेजनो, दरखता ने सहेजनो या फिर आज की जितनी भी स्थिति आप देख रहे हैं जगह सो बदलाव हो रही है, ये बदलाव नहीं हुए गलत प्रभाव नहीं हुए, इन वास्ते प्रकृति का संरक्षण करना जरूरी है। और आज वो दिन आप ये खाते मना विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस
0: शानी बात। और अब कार्यक्रम सुना एक मिठो सो लोकगीत।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर

0: 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: तो साहे तो हाँ संदेश और संदेशों पहले आप गीत सुनो, पारंपरिक गीत हो और उम्मीद कर रहा कि आप लोग गीत रो आनंद जो को है वो लियो हो सी। और अब देखो कार्यक्रम में आगे जकी बातचीत है बा है। देखो एक आपने गांव में कह रहे कि पहला सुख निरोगी काया, और जो को डील है आज की काया है इन्हें सावल रखने के लिए। बुजुर्ग तो आपने देखो पहले भी प्रयत्न करता आज भी प्रयास करे कि वो डील जो को है कि सावल रहे चाल बोक रहे गुड़ बोक रहे जिनकी गाड़ी जकी है। पर आजकल का जगह जो जवान भाई है बांध देखा कि वे स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक लागे को नहीं, क्योंकि बातचीत है खान पीन की। तो खान पीन की जब आप बातचीत करा तो बन यह लगे कि भाई महंगी चीजा खानी जकी है बाई स्वास्थ्य के लिए सो बड़ी खुराक है। तो इसी बात तो मैं ख्याल को नहीं
2: एकदम सही बात है कि आपने अठे जकी मरुभूमि है भी मरुभूमि रे मायने जका बडेरा है बे हमेशा एक बात कहता है कि मोटो खावो मोटो सोचो और ऊंडो सोचो और सागे ऊंडो पानी पीवो, क्योंकि बो जिको जीवन जिको है वो जीवन स्वस्थ रहे। और स्वस्थता री जड़े तई बात करी तो बे हमेशा प्रकृति री जकी चीजा थी बिना हमेशा आपरे वास्ते काम में लेवता और विश्व जीवन ने स्वस्थ बनाए रखता। जे बात करा आप आज नीम री तुलसी री, तो तुलसी है तो वो तुलसी दल जी को है वो भी जीवन ने क्या है सार्थक करे और जीवन ने स्वच्छ रखने रो बहुत मड़ो कारण बने। लेकिन नीम जी को है वो सबसे मोटो है दस देव रे मायने राजस्थान राज्य का दरखत है दस देव भी माने नीम नीम ने भी मान्या करे। नीम तो एक है पर लाभ जी का है घने देखने मिले अपन।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखो नीम में जो है इन यहाँ कह रहे कि भाई सर्व रोग निवारणी है, मतलब हर एक रोग जो है वो नीम को सेवन आप जे नियमित रूप से करता रहा तो बिना मिटाया जा सके। नीम की चाहे पत्तियां की बात कर लें चाहे छाल की बात कर लें निमोड़ की बात कर लें फूल और इनकी टहनी है कोई ना कोई रूप में आपने मानव जीवन के लिए लाभकारी हुए। तो इन वास्ते कह रहे भी नीम एक है लेकिन इरा लाभ जका है बे अलग अलग है। अब छोटी मोटी जी आप बात करा तो गांव में तो आपने नीम हुए कटी बाखड़ में आपने घर में लगाए डो हुए तो इनकी जी की पत्तियां बम गुण है जीवाणु रोधन रो, मतलब जीवाणु आना खत्म कर दे और फफूंद रोधी गुण जो है वो भी नीम की पत्तियां में मिला करे। और आयुर्वेद में तो कह करे कि त्वचा रोग है या मधुमेह है या ताव चढ़ जाए कोई घाव हो जाए या दांतों की कोई समस्या हो नहीं और जे आपने खून जो को साफ करना है तो भी नीम रो उपयोग जो है राम बाण औषधि की तरह काम करे करे। और देखो आप गांव में देखा है कि नीम की दांतन जो की है आपने मसूड़ा ने भी बहुत स्वस्थ रखे और इनको जो को तेल है वो कोई भी त्वचा रोग हो और या बाढ़ांगी कोई समस्या हो तो बिंग उपचार में भी बहुत ही लाभकारी माना जावे। और इनके अलावा एक चीज और भी है कि पर्यावरण संरक्षण में भी नीम रो महत्वपूर्ण योगदान है। नीम को पेड़ जो को है हवा ने साफ करे कार्बन डाइऑक्साइड जिके बिना अवशोषित कर ले और ऑक्सीजन जिके बा दिया करे। और गर्मियों में तो देखो नीम के पेड़ के नीचे आप जब बैठा नहीं तो बिंगी छाया जिकी है और बहुत ही ठंडी लागे और इनकी जिकी जड़ियां है वे गहराई तक जावे माटी में जिके सु माटी को कटाव जो है वो भी रुके। और नीम को पेड़ जो को है वे कई छोटे पक्षियां ने छोटे छोटे जीवन है एक तरह से सारो जो को है वो देख रहे आसरो जो को है वो दिया करे। अब ए बात तो होगी एक लेकिन नीम की जो बाता करानी तो देखो बहुत टाइम भी मिला गया। नीम का उपयोग जो कि नाजनर बचा के रखने में आप कर सका कीड़ा मकोड़ा से बचाने के लिए मच्छर माखी है बान दूर रखने के लिए भी घरेलू उपचार के रूप में आप नीम का उपयोग जो कि वो कर सका। अब ए तो बात होगी घर परिवार की लेकिन आप बसा गाँव में और गांव में बसा तो जुड़ेड़ा रवा खेती बाड़ी सु तो खेती बाड़ी में भी नीम रो बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो होया करे। अब जिया नीम को तेल जो है वो कई तरह रे जगह आपने फसल में कीड़ा मकोड़ा हो जाए तो बांग में एक अवयव के रूप में एक असरकारी दवाई के रूप में नीम को तेल जो है वो छिड़काव के रूप में आप काम में ले सका। नीम की खड़ जकी है पशुओं ने खुआने का काम आवे इन्हीं प्रकार नीम की खाद जिकी है वह भी खेती बाड़ी में राम बाण की औषधि मानी चाहिए।
2: आप चैत्र महीनों लागे चैत्र महीनों लागते आप

0: है, परंपरा है कि पेड़ो जी को दिन है बेदिन नीम री पत्ती और सागे मिश्री आ जरूर दिया करे। तो बडेरा री एक परंपरा थी, पर बिल्ला रे मूल कारण क्या था कि शरीर मायने अगर कोई तरह रा जो थे बता रहा कि खून रे मायने अगर कोई तरह री व्याधि है, खून में गड़बड़ी है, तो वो बिसु साफ सुथरा हो जावे। बिना अगर त्वचा रे माथे अगर कोई फोड़ा फुंसी है तो बे नीम रज की बिना घोट और बीज की लेप है वो करा तो वो बहुत असरदार करे। बिरला वापा जो खेती बाड़ी जड़े तई बात करी तो बीज जी का है नीम लेपित जी का बीज करा आपा नीम रज का तेल है बिसु एकदम लपेट बिने और बिन रखा तो बिना माने कही हुए कि बाज की लगाए उदई लागे बा लागने संभावना कम हो। ए तो सागे सागे नीम रे कारण सु वो बीज है वो खराब होवे कोनी। और खेत रे मायने अगर आप अनाज भेड़ो करियो रहे तो भी अनाज रे मायने नीमरी पत्तियां राखता तो बिरे मायने कीड़ो लागने संभावना रहे कोनी, कोई चीज सुड़े भी बिरे मायने कोनी। तो जरूरी है कि नीम रो दरखत जिको है, अच्छा एक बात दोनों के उठा जा थे बताया कि दांतून करा तो बा दांतून भी नीमरी जी की डाली है बिरी कर रहे हैं तो बहुत जीवन ने बहुत सार्थक देवे, दांता ने मजबूत बनावे। और सागे सागे माथे रे मायने कोई तरह रा फोड़ा फुंसी हुए तो पहला जमाने रे मायने होतो कि नीम ने एकदम पीस अभी ने लगाया करता, मच्छर माखी हुए तो नीम धुओं करे अब धुओं कर पर भी मच्छर माखिया ने भी हटाण में काम आवे। फिर अलावा कई बार आप भी देखने मिले के सियाड़े रे मायने ओस पड़े डावो पड़े तो डावे से बचने वास्ते वे कहे कि धुओं करो तो नीम बठे बहुत सार्थक हुए कि नीम रो धुओं तेज हुए और वो ओस ने क्या है हेठे आउन दे कोने। तो ई वास्ते बात आई है संदीप भाई कि नीम तो एक है पर उन्हें लाभ जी का है अनेक है।
1: बिल्कुल। और अब सुना एक मीठो सो लोकगीत।

यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। SIDS और जलवायु परिवर्तन, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। छोटे द्वीप वाले विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पैदा हुई एक्स्ट्रा गर्मी का 90% हिस्सा महासागरों में सोख लिया है। इस गर्मी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जिन द्वीप देशों में ज्यादा लोग रहते हैं और जो कम विकसित हैं, वे सबसे बड़े खतरे में हैं। उनकी इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम सीधा प्रभावित हो रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने और तेज ट्रॉपिकल तूफानों से तटीय इलाकों में लहरों का तूफान, तटीय कटाव, खरे पानी का घुसना, फसल खराब होना और पानी की कमी हो जाती है। कुछ द्वीप तो निर्जन भी हो सकते हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है। किरीबा, मालदीव्स और वानुआतू जैसे एशिया पैसिफिक के द्वीप देश दुनिया के सबसे ज्यादा जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों में गिने जाते हैं।

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
0: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
3: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
0: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
3: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर का।

0: जिले में।
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: तो सा अबार आप गीतल्लो सुनियो हो पुष्पा सैनी रो गायडो और अब आप बात करा हाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना री। तो सा प्रधानमंत्री जी का है आपने विकास रे वास्ते हर एक आदमी विकास रे वास्ते निरंतर लाग जुड़ा रहे बे आचावे के मिनख आप रो काम खुद करे, आप रो रोजगार खुद तलाशे और काम रे मायने आगे बढ़े, क्योंकि सरकार जी की है माने ऋण दे सहयोग कर सके, सहयोग कर लेकिन काम खुद ने करना पड़े और भी ऋण ने भी थोड़ा थोड़ा कर बिना चुकतो करे, चुकतो कर सी जन बिना ऋण है जिसको और भी बेसी मिल सी और भी कौशल है बिना आगे बढ़ता रह सी। इस वास्ते सरकार खाली ऋण ही कौन देवे बल्कि योजना रहते तहत जिसको लाभार्थी है भी लाभार्थी ने कोई न कोई स्किल है यानी कोई न कोई कार्य है वो कार्य जरूर सिखावे, प्रशिक्षण देवे और तय सीमा में प्रशिक्षण देने बाद बिना सर्टिफिकेट देवे और भी सर्टिफिकेट के माध्यम से माने ऋण भी मिले और ऋण सुबह आप व्यवसाय ने शुरू कर सके।
3: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो भारत जो को है विश्व के सगड़ा सबसे युवा देश में इरी गिनती हो है और जे ए जगह भी जोत जवान भाई है माने उचित प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी ज्ञान मिल जावे नी तो बे देश की आर्थिक प्रगति में आपरो महत्वपूर्ण योगदान जो के बे दे सके और इन उद्देश्य ने देखता तक ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें जी है बे शामिल करी जी है, जिया कंप्यूटर है, सूचना तकनीकी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात है, स्वास्थ्य सेवाएं है, पर्यटन की बात है, निर्माण कार्य है, सिलाई और ऑटोमोबाइल जो क्षेत्र है, बीसु संबंधित जगह काम है और खेती बाड़ी का जगह काम है, वह तो है इनके सागे सागे दूसरा और जगह व्यवसाय है बारो प्रशिक्षण भी इन योजना के अंतर्गत दियो जावे और सब बड़ी जगह विशेषता है कि प्रशिक्षण पूरे होने पर जिसका भी अभ्यर्थी है मांगो मूल्यांकन करो जाए और सफल उम्मीदवार जिसका है माने मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र जो है वो दियो जावे और वो जो प्रमाण पत्र है पूरे देश में रोजगार प्राप्त करने में सहायक हो और इनके सागे कई प्रशिक्षण केंद्र जिसका है रोजगार का अवसर उपलब्ध करावे और स्वरोजगार के लिए मार्गदर्शन जो है नी वो भी प्रदान कराया करे।
2: संदीप भाई आप आज की बात करी थी कि युवा व्यक्ति ने रोजगार देना तो बिना माने डेयरी भी एक रोजगार और साधन है, बिना मछली पालन भी एक रोजगार और साधन है, मधुमक्खी पालन भी रोजगार और साधन है, पर जब डेयरी करा और आप पशु रखा तो पशु रो स्वास्थ्य जिको है वो खराब हुआ विशेषकर सो बदलते मौसम रे मायने, तो बी वास्ते सरकार जी की शिविर भी लगावे और शिविर लगा भी माने पशुओं जी को स्वास्थ्य है भी स्वास्थ्य की जांच भी बड़े करिया करे। तो आपा लोगों ने चिंता करने जरूरत को नहीं, आपने तो ध्यान रखना है कि शिविर है मायने पूगा और पूग और बड़े क्या है कि आपा जी का पशु है बीरी बीमारी जी को भी कोई भी तरह बीमारी होगी है तो बीरे वास्ते बीरी जानकारी लेवो और आने हुए कई बार घर वाला यहाँ हुए कि गाय रे मान लो कोई सी बीमारी होगी है तो भी आपका घर इलाज शुरू कर देवे और बिशु कर कहीं हुए और ऐसा इलाज जिसका अंधविश्वास इलाज है तो बिशु कहीं हुए पशु ने नुकसान हुए और खुद भी गरीब जिकी है आंडी हेठे आ जावे तो आज इसमें होने चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पशु स्वास्थ्य जांच शिविर जो है आपने ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं की देखभाल को सस्तो और उपलब्ध एक कह सका जरियो है जिके सु आप पशु पाल भाइया ने जागरूक कर गए और वो जो उद्देश्य है कि अपना दुधारू पशु है या खेती बाड़ी में काम आन आ रहा जगह पशु है वे स्वस्थ रहे, क्योंकि देखो आपने देख चुके है वो एक कृषि प्रधान देश है जिथे हर एक किसान कने गाय भी मिलेगी, भैंस भी है, बकरी, भेड़, ऊंट और दूसरा पालतू पशु जगह है वे भी मेरी आमदनी को मुख्य स्रोत के रूप में मान्य जावे। अगर पशु स्वस्थ रहेगा तो दूध उत्पादन, खेती बाड़ी को काम और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति भी जिकी है।

0: भी मजबूत होगी। ई वास्ते इन उद्देश्य ने ध्यान में रखते थकाई भगत भगत पर पशु स्वास्थ्य जांच शिविर जका है वह लगाया जावे और आ शिविरा में पशु चिकित्सक की जी की टीम है बा पशुओं को निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करे, बीमार पशुओं को उपचार करे, आवश्यक जिक्की भी जरूरत आ रही दवाइयां है वह बांटी जावे और कई संक्रामक रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण जो है वो भी करो जावे और इनके अलावा पशुओं में होने आ रही रोगों की पहचान बारो पोषण बारी स्वच्छता संतुलित आहार और उचित देखभाल के बारे में पशुपालक भाई जका है बान पूरी बढ़िया जानकारी जी की है बाबा ने दी जावे और जगह पशु स्वास्थ्य जांच शिविर है इरो सब मोटो फायदो ही ओ है कि गंभीर बीमारियों को समय रहते पतो चाल जावे क्योंकि वहां बताई चर्चा करेडी हुए नी तो पशुपालक ने कोई भी अनहोनी सी दिखती हुए आपके पशु में तो फिर भी न बात चीज ध्यान में आ जावे कि कोई ना कोई गड़बड़ हो सके जागरूक रहे पशु भी बीमारी से दूर रहे और पशुपालक जो को है वो भी निश्चिंत रहे कि पशु जो का है वह रोग मुक्त है और स्वस्थ है।
1: तो अब सिंचाई बेला हो रही है और चालता चालता पा एक भजन सुना लाडू नाथ छोड़ बंसालिया सोनू देवी रो गायोड़ा
2: लाडू नाथ छोड़ बन चाला गाय बनी के सिल में खाए लाडू नाथ छोड़ बन चाला गाय बनी के सिल में खाए बिल्लारी बोई

हांडी ने जगे घर वे धनी ने जिम्मेदान। अरे चूलो जल रे हांडी रे सीजे घर वे धनी ने जिम्मेदान। वो बरसे

सुलेमान घर सुर मारियो हिंदू के घर मारी गाय। सुलेमान घर सुर मारियो हिंदू के घर मारी गाय। पापी रा नर गया धर्म पापी ला नर गया।

नाथ भाई ज्ञान बताए, लाडू नाथ बोलिया जोगी कृष्णा नाथ भाई ज्ञान बताए। लाडू नाथ जोन बन चाला गाया बनी के सिंह खाए, लाडू नाथ जोन बन चाला गाया बनी के सिंह खाए। गिल्लारी कोई रहने की

0: संदीप भाई, देखो कल गुरु पूर्णिमा है और श्रावण भी शुरू हो जैसे, तो गुरु पूर्णिमा रो जो त्यौहार है वो गुरु शिष्य परंपरा ने आगे बढ़ाना रहे। और आप गाँव रे मायने आ परंपरा निरंतर चल रही है, चाहे वो खेती बाड़ी रे मायने हो या फिर आप जो पशुपालन मायने हो कि बडेरा जिका है वह गुरु परंपरा आप राज की पीढ़ी है, अगली पीढ़ी मैंने क्या है कि ज्ञान देवता लुगाया है, तो वे गीता रो ज्ञान जिकी है नवड़ी पीढ़ी ने दिया करती थी, ताकि विश्व कहीं हुए कि जिको संस्कार है या कर्म है वे बने उड़ा रेवे।
1: बिल्कुल सही बात है, और इनके पीछे सोच भी आ है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कार जका है बह जावे, क्योंकि देखो संस्कार देने के लिए कोई बहानो चाहिए। तो इन प्रकार का जो पर्व है जिया गुरु पूर्णिमा पर्व जो है, इनके पीछे मनाने की सोच जिकी है बा आई है कि अपनी जी आने वाली पीढ़ी है बा सुसंस्कारित होवे, बा अपनी जी सभ्यता है विशु जुड़ेड़ी रहे, ताकि वे न केवल आप रो कल्याण कर सके बल्कि पूरे समाज के लिए भी कल्याणकारी होवे। तो सोच तो देखो विचार तो छोटो सो है, लेकिन बिंग पीछे जिकी सोच है वह बहुत बड़ी है, पूरे विश्व कल्याण की भावना जिकी है वह जुड़ी है, लेकिन बिंग शुरुआत जिकी है वह आपने छोटे से घर से हो है।
0: देखो सबसे पहला जिकी गुरु हो बा माँ हो, माँ अपने टाबन में क्या है कि अच्छा संस्कार देवे, परिवार ने आगे बढ़ाने की सीख देवे। बेटी पनी से अगर सास जावे तो बिना सीख देवे माँ के कि सास जिके ने है परोटनो है, किया सासू ससुराल की सेवा करनी है, किया घरबार ने संभालना है। तो आज की परंपरा है आ बहुत ही शांत परंपरा है, विशेष तौर से राजस्थान की, और ये परंपरा ने निभाने वास्ते ही लोग है आज भी क्या है गुरु शिष्य परंपरा जिकी है बिर पूजन है, गुरु पूजन काल होवेला, और बिर मायने भी सब लोग निस्वार्थ भाव से आप गुरु रो पूजन अर्चन कर सी, गुरु जी को है बाप शिष्य ने अच्छो मार्ग दिखा सी, बिने जीवन में सही राह दिखा सी कि जीवन जी को है बहुत लंबो है और इन्हें क्यों परोटना है, क्यों आगे बढ़ना है।
1: बिल्कुल, और आप उम्मीद करा कि गुरु पूर्णिमा को पर्व जो को है वो आप अपने गांव में बहुत ही खुशी से मनावा, और जिका भी संस्कार है वे आप आने वाली पीढ़ी ने सौंप के जावा। और अब देखो सा बात करना को मनड़ो तो घणो करे, पर घड़ी कह रही है कि बहना और भाइयों सो अब सीख लेंडो वक्त हो गया है। तो आप हेतालु संदीप पारिकर
0: और आप रोहितालु साथी डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य ने सीख दिवस घणा घणा
1: राम राम।

ये था ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन के गाए इस भक्ति गीत के साथ। इस भक्ति गीत की रचनाकार हैं मीरा बाईसा।

श्रोताओं, अभी आपने सुना बालकृष्ण वैष्णव की आवाज में कबीरदास जी का लिखा भक्ति गीत, और अब सुनिए। बद्रू खान को, और इस भक्ति गीत के रचनाकार हैं गुरु नानक देव।

इस वक्त गीत के साथ ही सुगम संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का यह ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 8 बज रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम संसद समीक्षा।

संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध समाप्त होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल ये विधेयक सदन में पेश किया था। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले इस विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि ये विधेयक सरकार की छात्रों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय संसद के इतिहास में मील का पत्थर कहा जा सकता है। कांग्रेस नीत पूर्ववर्ती सरकारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ियों और प्रश्न पत्र लीक आदि की घटनाएं पहले भी होती रही हैं और विभिन्न राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारों के दौरान भी ऐसे

सामने आते रहे हैं। श्री सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा, 2011 में अखिल भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा, इसी साल पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा, 2010 में उत्तर प्रदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी और 2012 में एम्स नई दिल्ली की प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सूची लंबी है। उन्होंने कहा कि सरकार को लगा कि इस संबंध में एक व्यापक कानून की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कहा कि देश में उच्च शिक्षा में परीक्षाओं का प्रबंधन करने के लिए एनटीए जैसी एजेंसी की सिफारिश 1992 और 2010 में भी की गई थी, लेकिन पता नहीं इस पर विचार क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए का गठन 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने ही किया था। श्री सिंह ने कांग्रेस सदस्यों की ओर इंगित करते हुए कहा कि आपका अधूरा काम मोदी सरकार ने पूरा किया। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ सरकार 2024 में ही विधेयक लाई थी, जिसे जून 24 में लागू भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में आज के संशोधन विधेयक के माध्यम से कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं। उन्होंने इस तरह के मामलों की जल्द सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का भी जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले की थी। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये फास्ट ट्रैक अदालतें घटना की रिपोर्ट दर्ज होने के 5 महीने के भीतर आखिरी निर्णय देंगी, जो इस संशोधन विधेयक का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि सदस्य सरकार की प्रतिबद्धता का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस विधेयक के साथ ही कानून मंत्री ने ये प्रस्ताव भी रखा है कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने की प्रक्रिया साथ ही शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें पहले ही गठित की जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में बाकी जगहों पर भी इनकी स्थापना होगी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने लोकसभा में परीक्षा प्रश्न पत्र निरोधक कानून को मोदी सरकार की विफलता का स्मारक करार दिया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को सदन में इसका जवाब देना चाहिए कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया था। श्री गोगोई ने दावा किया कि 2024 में लाया गया मूल कानून पेपर लीक रोकने में नाकाम रहा था और नया प्रस्तावित कानून भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं होगा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि 2024 में जब इसी तरह का विधेयक लाया गया था, तब सरकार ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए दावा किया था कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन उसी वर्ष नीट यूजी पेपर लीक मामले में 45 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें से अधिकतर को जमानत मिल चुकी है। उनका कहना था कि मामले के कथित मास्टरमाइंड को भी जमानत मिल गई। श्री गोगोई ने आरोप लगाया कि जब 2024 में पेपर लीक का मामला सामने आया था, तब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इससे इंकार किया था और इस बार भी उनका रवैया वैसा ही रहा। कांग्रेस सांसद ने संसद परिसर में भाजपा के कुछ सदस्यों द्वारा श्री प्रधान का स्वागत किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि संसद में पूर्व मंत्री का ऐसे स्वागत किया गया मानो वो पाकिस्तान से जंग लड़कर आए हों। श्री गोगोई ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 लोगों को हटाए जाने की बात कही गई, जबकि संस्था में स्वीकृत पदों की संख्या 34 है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में स्पष्टीकरण देने की मांग की। उन्होंने यह भी सवाल किया कि जब एनटीए के महानिदेशक को बदल दिया गया तो चेयरमैन को क्यों बरकरार रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा से संबंधित एक वैचारिक संगठन के लिए शिक्षा विभाग महत्वपूर्ण है और विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां इसी सोच के तहत की जा रही हैं। श्री गोगोई ने संशोधन विधेयक के प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि केवल जुर्माने की राशि बढ़ाने से शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। उन्होंने जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य की चिंता है और इसी कारण वे सड़कों पर उतरे। कांग्रेस सांसद ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर इसका जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चलाने, लाठियां भांजने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किसने दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस संशोधन विधेयक को लाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशीलता और उनकी सरकार की जिम्मेदारी का प्रमाण है। सुश्री स्वराज ने प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं पर दुख जताते हुए कहा कि जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता होती है तो उसका असर केवल अभ्यर्थी पर ही नहीं बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पेपर लीक एक घोर अपराध है, इसलिए इस सदन को आश्वासन देना चाहूंगी कि मोदी जी के लिए पेपर लीक को घोर पाप कहना केवल एक बयान नहीं उनकी सरकार की नीयत है, इसलिए ये संशोधन विधेयक लाया गया है। भाजपा सांसद ने कहा कि वर्तमान में परीक्षा माफिया संगठित होकर अंतर्राज्यीय आपराधिक नेटवर्क बन गया है, ऐसे में ये विधेयक क्षेत्राधिकार की उलझन को सुलझाता है। उन्होंने कहा कि

कांग्रेस के साथ ही और विपक्ष के लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र लीक की समस्या केवल 2014 के बाद पैदा हुई है। सुश्री स्वराज ने कहा कि मीडिया की रिपोर्ट को सच माने तो विपक्षी दल शासित राज्यों और 2014 से पहले कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान 22 बार पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि जो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं रोक पाए वो पेपर लीक भला कैसे रोक पाएंगे। श्री यादव ने जंतर मंतर पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन का हवाला देते हुए कहा कि सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व शिक्षा मंत्री जब लोकसभा में लौटे तो सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया, इससे हमें कोई शिकायत नहीं है। माननीय सदस्यों को कितनी राहत मिली होगी, एक प्रधान जी को हटाकर अपने भाजपा ने प्रधानमंत्री बचा लिया। सपा नेता ने कहा कि नई पीढ़ी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भाजपा को झुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार घबरा जाती है और डर जाती है तब मांगों को स्वीकार कर लेती है। श्री यादव ने कहा कि यह ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें बच्चों के साथ उनके माता पिता भी जुड़ गए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए में कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखने का उल्लेख करते हुए कहा कि डर लगता है कि कहीं पूरी सरकार को आउटसोर्स न कर दिया जाए। श्री यादव ने कहा कि सरकार ने शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाओं को एक रंग में रंगने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर रही है ताकि पिछड़े, दलित और गरीबों के बच्चे न पढ़ पाए। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 26,386 प्राथमिक विद्यालय बंद किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने सलाहकार बदल लेने चाहिए और यदि सरकार जेन जेड पर भरोसा वापस जीतना चाहती है तो प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं बल्कि दिल का एंगल भी बदलना पड़ेगा। उन्होंने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देना चाहिए कि किसके आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। केरल के वायनाड से लोकसभा सदस्य ने कहा कि यह देश सांसदों की जागीर नहीं बल्कि जनता की अमानत है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जनता के सवालों का जवाब दे। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि आज युवाओं को लगने लगा है कि मेहनत से ज्यादा बेईमानी मायने रखती है। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि इसमें गंभीर खामियां हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और परिवार कर्ज लेकर पढ़ाई करा रहे हैं। विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वो इस विधेयक का समर्थन करते हैं और कड़ा कानून जरूरी है, लेकिन अगर व्यवस्थागत विफलताओं से परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही तो ये पर्याप्त उपाय नहीं है। श्री बनर्जी ने 2024 के लोक परीक्षा कानून में लाए गए संशोधनों के संदर्भ में कहा कि सजा बढ़ाने से सरकार की 12 वर्ष की अक्षमता खत्म नहीं हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार नए भारत की बात करती है। आज का युवा पूछता है कि अगर ये नया भारत है तो प्रश्न पत्र लीक क्यों हो रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता ने दावा किया कि मोदी सरकार के पिछले 12 साल के कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक के एक भी मामले में कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है। द्रविड़ मुनेत्र कशगम के सांसद दयानिधि मारन ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा की शुरुआत से लेकर अब तक उनके राज्य तमिलनाडु समेत पूरे देश में अनेक छात्र आत्महत्या कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस बात को दर्शाता है कि नीट परीक्षा से क्या हालात हो गए हैं। मारन ने कहा कि सरकार मुख्य मुद्दे का समाधान नहीं कर रही है, मुद्दा कानून का नहीं बल्कि नीट का है जिसकी आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस ने नीट लाकर गलती की तो आप इसे थोप कर दूसरी गलती कर रहे हैं। नीट हमारे बच्चों पर मत थोपिए, इसे रोकिए। उन्होंने कहा कि द्रमुक ने तमिलनाडु में नीट का शुरू से विरोध किया है और लगातार इस बात को कहती रही है कि नीट नहीं चाहिए। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज भी शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की 2 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखवाने के बाद सभापति ने शून्यकाल शुरू किया। उन्होंने असम से यूपीपीएल

0: दबंग द्वारा नारजारी को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री नारजारी ने बोडो भाषा में बोलना शुरू किया। इसी दौरान विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए। उन्होंने पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित बल प्रयोग का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण नारजारी की बात सुनी नहीं जा सकी। विपक्षी सांसदों खासकर वाम दलों के सदस्यों ने मांग की कि छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जहां इस मांग का विरोध किया, वहीं विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने मांग की कि अमित शाह गृहमंत्री हैं और उन्हें सदन में आकर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। कुछ विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते थे, लेकिन शोर शराबे के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दे उठाने को कहा, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने करीब 11:07 पर ही सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक दोबारा शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतनराम मांझी से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के लिए कहा। हंगामे के बीच ही श्री मांझी ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। श्री मांझी ने कहा कि मूल विधेयक 2006 में बना था और इसमें समय तथा बदलती परिस्थितियों के अनुरूप सुधार करने की जरूरत है। उनके अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य उद्योग जगत के बदलते हुए परिदृश्य के अनुसार इस क्षेत्र की इकाइयों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। श्री मांझी द्वारा विधेयक पेश करने के बाद उपसभापति हरिवंश ने एक और विधेयक सदन में पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए उन्होंने उनसे कहा कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते। उपसभापति ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। उच्च सदन की बैठक अब कल सुबह 11 बजे होगी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए मोहम्मद रफी को फिल्म का नाम है तकदीर। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1800 420 2233 पर कॉल करें। जब सुन

0: माह के पहले और तीसरे रविवार को सुबह 8:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हेल्दी बीकाना, आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति।
1: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम, और अब सुनिए तन्हाई फिल्म से किशोर कुमार को। गीतकार हैं अमन और संगीतकार उषा खन्ना।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम और अब

और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं गायत्री सोलंकी के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2000

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: और अब सुनिए गणपत लाल डांगी और साथियों के गए इस लोक भजन को।

अभी श्रोता सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी बीकानेर का। ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।

0: सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण

नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले दो दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोक

0: मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
1: You must compliment Prime Minister Modi and this government.
2: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
1: To ensure speedy justice.
0: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
3: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
4: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
5: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध

0: प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
1: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
1: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
2: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार,
0: भुवनेश्वर। केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
4: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा।

0: बैठाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on NEET paper leak issue. Maharashtra, Bihar and Assam orders withdrawal of cases against students. 20 people killed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir in firing on protesters. India terms so-called assembly polls in POJK a cosmetic exercise to camouflage illegal occupation. Industrial output growth hits 23-month high of 7.3% in June. Odisha faces flood fury as heavy rains swell major rivers. Red alert for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Vidarbh region for next 2 days. And at ISSF Shooting World Cup, Indian pair of Sonam Uttam Mascar and Himanshu Dhillon clinch bronze medal in 10-meter air rifle mixed team event. And now the news in detail. The Lok Sabha is holding discussion on the bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances,

इसे सुखविंदर सिंह और साथी फिल्म का नाम ताल, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार एआर रहमान। अब सुनिए शान और सुनिधि चौहान को, फिल्म का नाम है तारा रम पम, बोल जावेद अख्तर की और संगीत विशाल शेखर का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गजलें। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए इकबाल बानो को।

0: तरह।
1: गुलाम अली की गई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए सुनिए फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सफर की धूप हो या छांव, हम साथ निभाएंगे। हर मुश्किल राह में भी हम हाथ में हाथ थाम जाएंगे। तेरी हंसी में छुपा है मेरी जिंदगी का सुकून, तेरे गम में भी हम दिल से मुस्कुराएंगे। वक्त चाहे बदल दे अपनी सारी तस्वीरें, हम जिंदगी की किताब में साथ साथ नाम सजाएंगे। दुनिया की भीड़ में कोई हो न हो तेरा, हम हैं तेरे सहारे, साथ बनकर साथ निभाएंगे।

श्रोताओं, इस गीत को हमने लिया फिल्म आशिकी 2 से। गए कलाकार अजीत सिंह और पलक मुच्छाल। इस गीत को लिखा इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया जीत गांगुली ने। इस गाने को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं लालगढ़ बीकानेर से असगर अली, पंजाब गिरन और अली, मुमताज, सोनू, टीना, वहीदा, साहिदा, ताहिरा, एम ए पंवार, खातून बेगम, शीतलागेट बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, शुजैन आजम खींची, अकमल हुसैन, अमजद अली। गंगा शहर बीकानेर से अरुण और प्रिंस राजपुरोहित। अमर सिंहपुरा बीकानेर से मोहम्मद अफजल, मुमताज अली, सिकंदर अली, शबनम बानो इनके साथ ही। मोमा सरबास श्री डूंगरगढ़ से मोहम्मद असगर पंवार, अकबर, राबिया, मुन्नी और इनके साथी। जेएनवी कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राष्ट्रीय और गौरव शाही। पवनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा, प्रेमी गीता रानी, राज मनोहर लाल, बी एल सोनगरा, डॉक्टर सोनू दायमा, सरोज सत्यनारायण दायमा, अखिल मूलचंद सोनगरा, सुनीता प्रथम, राज हंसराज, कृष्णा, मुकेश सोनगरा, सावित्री, सीताराम पंवार, दीफू पंवार।

आशीष जतिन सोनगरा, वल्लभ गार्डन बीकानेर से एलसी शहजादा कमला देवी पंवार, राजकुमार गीता रानी मयंक अनन्या सत्यनारायण पंवार लालचंद पंवार, नागौर से खुशबू और गौरव, ये सभी श्रोता इस गीत को सुनना चाहते थे। और अब कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं: ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे, इनके परिवारजन। चौतीना कुआं बीकानेर से राजेंद्र कुमार पांडे और इनके परिवारजन। रानी बाजार बीकानेर से रानी झाम, बिट्टू झाम। कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री और इनके परिवारजन। बीकानेर से ही रमजान अली लखारा और इनके साथी। कोहरियान मोहल्ला बीकानेर से इकरामुद्दीन कोहरी और इनके साथी। विनोबा बस्ती बीकानेर से हरीश कुमार सियोता, इनके परिवारजन और साथी। चुनगरों का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली, जीतू शबनम बामो, अख्तर बानो, महनाज बानो, साजिद मुगल और इनके परिवारजन। इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, असलम जावेद, रुबैल, चांदनी सुल्ताना भिश्ती, विनोद डारा। गंगाशहर बीकानेर से मंजुल मुकुल वर्मा और इनके परिवारजन और साथी। लीजिए आपकी पसंद का ये गीत, सुनिए श्रोताओं।

ये थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म का नाम सिलसिला। पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं देशनोक बीकानेर से गोपाल दान, प्रकाश दान भोमदान, शिकोलैत से फूसरा सोनी, सूरज प्रकाश, धर्मेंद्र, लाला चंदू और इनके परिवारजन, दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शिवलाल, शांति, मंजू, मोहित, हेमंत बानीवाल, सादुल शहर से ओम प्रकाश, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, कोलपोल उदयपुर से गोपाल, कांता ने नवाया, गोपाल तिलक सक्षम, तंबोली, गिरिराज सोनी, घनश्याम और जगदीश मोदी, गोविंदगढ़ श्रीकरणपुर से राजू, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत, शिव सेठी, स्माइल टुटेजा, अरैया वाला हनुमानगढ़ से कालू खां दमामी और इनके परिवारजन, बाड़मेर से बबलेश टैनी, मनीष पंवार, बाड़मेर से ही खुदा बख्श बच्चू खां और मोमिन खलीफा। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं ये श्रोता जिन्होंने हमें पत्र लिखे हैं, चौमेला राजस्थान से कैलाश चंद्र गर्ग और इनके परिवारजन, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां, तापू जोधपुर से विश्नाराम बालियान और इनके परिवारजन, रटलाई झालावाड़ से प्रभुलाल मनोहर बाई और बागरी परिवार, फ्रांसी से राजकुमार, सरजीत सिंह, प्रमोद डूडी, डबवाली से राजेंद्र, अंजू और मोहित नारंग, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल, अंकित, साहिल कांगड़ा, हांसी शहर से राजू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, आमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति, रयांश और गुड़िया, बाबा कुटी उफरा से प्रेम, यमुना, तुलसी, हेमलता, साहू, पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंशपट्टा। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बाजार से लता मंगेशकर और तलत अजीज के स्वरों में। इस गीत को लिखा मखदूम मोहिनुद्दीन ने और संगीत खयाम का है।

साहिर लुधियानवी के गीत रचना को गाया आशा भोंसले और महेंद्र कपूर ने, संगीतकार रविंद्र जैन। फिल्म का नाम इंसाफ का तराजू। इस गीत को सुनना चाहते थे बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जे एस नायक, शोभा और डागला परिवार।

लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही महाराज जहां, बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक, चेतन दीक्षा कुश मुनत, रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश नूर मोहम्मद, इरफान कासिफ, हासिम मीना, डब्बाली से राजेंद्र, अंजू और मोहित नारंग, डब्बाली से बसंत सिंह चन, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म दर्द से, इसे गाया है लता मंगेशकर ने। बोल नक्श लियालपुरी के हैं और संगीत खय्याम का। इसे सुनने के लिए फरमाइश करने वाले श्रोताओं के नाम इस प्रकार हैं, डब्बाली मंडी से जेके बाकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू बाकोलिया, प्रमिला गंजालोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल प्रियांश, ऋषि वर्मा, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरव शर्मा, मलोट पंजाब से ही छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस पेगाना, मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू, जाजोरिया, इसी शहर से राजीव रजनी, आरती और तनिष सेतिया, सतीश, सीमा, शाइना, विशाल, सुपरिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी, जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक, आराध्या, भिलाई से मुकेश, सरिता, गौरव और गरिमा शर्मा, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित आर्य। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये गीत सुनिए।

उस्तादों के उस्ताद, इस फिल्म से अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में असद भोपाली का ये गीत, जिसके संगीतकार थे रवि। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं शिवाजी नगर, वड़ाली देशमुख से राजेश, शिवसागर, इंदिराबाई, सुनैना, खोबरखेड़े, जलगांव से राम, दीपाली और स्वराज धाड़े, अमरावती से सुनैना, पावन भोड़े, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, फाजिलका पंजाब से भूषण, विशु, विशाल, टिवांशी, शालिनी, आरवी, लाडी, जीवन सिंह, बुक और खेड़ा परिवार, भड़भूंजी मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय और इनके परिवारजन, रोपड़ पंजाब से मीका, बलविंद्र, जयतेग, विरक, हरदेव, मीका, लुधियाना से विनोदपुरी और इनके परिवारजन, बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, भिवानी से कृष्ण मेहरा, इनके परिवारजन और साथी। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म उमराव जान से, जिसकी गायिका हैं आशा भोंसले, बोल शहरयार के हैं और संगीत खयाम का। पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमरदीप, अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्ठल बजाज, शाहिल, करनाल से जग्गी दुआ, इंदौर से जगदीश चौहान और इनके साथी, मुरादाबाद से अयूब खां, इरम गुड़िया, शोएब, नावेद खां, मोहम्मद फरीद, अंसारी, परिवारजन, जफर हुसैन और इनके परिवारजन और साथी, नाहन हिमाचल प्रदेश से रजाक मोहम्मद, इनके परिवारजन, हरिपुरा झज्जर से प्रदीप वधवा, इनके साथी, अहमदाबाद से भाल चंद्र वड़के और इनके साथी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर, इनके परिवारजन और साथी, मधुबनी विहार से हेमलता सज्जन, इनके परिवारजन और साथी।

फिल्म का नाम लव स्टोरी, गायक कलाकार लता मंगेशकर और अमित कुमार, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं: भाटापारा से प्रमोद साहू इनके परिवारजन, जलालाबाद से सुरेश गगनेजा और इनके परिवारजन, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी इनके साथी और परिवारजन, मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत गंवहाकर इनके परिवारजन और साथी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गंवहाकर इनके परिवारजन और साथी, भिलाई से प्रताप पांडे इनके परिवारजन, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रजन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, पंचू सोनी, पावन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, लालू सोना इनके परिवारजन। नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी इनके परिवारजन और साथी, भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक झावेंद्र वर्मा। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसे सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के हैं नाम: राम सिंहपुर गंगानगर से अशोक बब्बर इनके परिवारजन और साथी, श्री गंगानगर से सर्वजीत सिंह जोशन इनके साथी और परिवारजन, मांगरोल बारा से श्रवणलाल योगी और योगी परिवार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा और इनके साथी, जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान और इनके साथी, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक इनके परिवारजन और साथी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं सूरज फिल्म से मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को। संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: जाते हैं। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आपकी पसंद अभी ही संपन्न होता है।
1: हम दिल का सांस बजाते हैं, दुनिया के होश उड़ाते हैं, हम सात सुरों के सागर हैं।
0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त करने होंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। इस वर्ष जून माह में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों में उच्चतम 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने के विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि दर्ज हुई।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले दो दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्र टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम बस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और दो कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।